0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।

जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।

नमस्कार, आकाशवाणी पर प्रस्तुत है आज की ताजा खबर नैंसी कुकरेती के साथ। हिमाचल से खबर आई है कि रामपुर से रिकांगपिओ जाने वाली एक बस निगुलसरी में भूस्खलन की वजह से दुर्घटना की शिकार हुई। इसमें 22 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई और अनुमान है कि ये संख्या बढ़ सकती है।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अपने लहू में बसा लिया जिसने मेरे श्री राम को, ऐसी भक्ति ना देखी कहीं। नमन भक्त हनुमान को, नमन भक्त हनुमान को।
2: भक्ति

0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए ईकेसीसी पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत केसीसी पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।

0: प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक 28 जुलाई को हुई थी, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के अलग हुए गुट, नवगठित नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसदों ने भी गठबंधन की बैठक में भाग लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें जंतर मंतर और देश में अन्य जगहों पर हाल ही के प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों और प्रदर्शनकारियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई को न्यायालय के आदेश में पहले आपराधिक मामलों से जुड़े प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जारी रखने की अनुमति का तात्पर्य केवल गंभीर और जघन्य अपराधों से जुड़े लोगों से था। एक रिपोर्ट।
1: अदालत नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर 20 जुलाई को और अन्य जगहों पर प्रदर्शन में विद्यार्थियों पर पुलिस की अत्यधिक सख्त कार्रवाई के आरोप से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। प्रदर्शन में घायल पुलिस अधिकारियों के परिवारों ने भी यह आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। पीठ ने कहा कि वह पुलिस अधिकारियों की विशेष जांच टीम गठित करने या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है, ताकि पुलिस की अत्यधिक कड़ी कार्रवाई के आरोपों की जांच की जा सके। अब इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से मैं चाहत।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और उज्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों, खनन, व्यापार, ऊर्जा, अवसंरचना, रक्षा और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान ये बैठक हुई। विदेश नीति के मुद्दों पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान का आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने पर समान दृष्टिकोण है।
2: हम इस बात की सराहना करते हैं कि उज्बेकिस्तान की सरकार और वहाँ के लोगों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ रुख अपनाया है। आपकी अपनी चुनौतियाँ और आपके अपने अनुभव हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम दोनों ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाई है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और असैन्य विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। कल नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय असैन्य सेवा दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि सैन्य और असैन्य दोनों सेवाएं राष्ट्र सर्वोपरि के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध हैं।
3: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
4: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह इस बैठक का उद्घाटन करेंगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि भागीदारी करेंगे। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। हैदराबाद में होने वाली ये बैठक जून में वर्चुअली रूप से आयोजित पहले ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक के परिणामों पर आधारित। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीति आग्रह करने के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने होर्मोज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण बताया। वहीं दूसरे चरण में ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमरीका के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बातचीत की खबरों का भी खंडन किया है। श्री बगाई ने कहा कि ईरान और ओमान के बीच हाल ही में हुआ समुद्री समझौता केवल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही तक सीमित है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और

0: खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: प्राधिकरण ने बताया कि प्रतिबंधित किए गए उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। प्राधिकरण ने कहा कि कंपनी की वेबसाइट पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों पर 100% प्राकृतिक, 100% शुद्ध, 100% शुद्धता की गारंटी, 100% जैविक और 100% नारियल पानी जैसे भ्रामक दावे पाए गए हैं। प्राधिकरण के अनुसार 100% के दावे FSS विज्ञापन और दावे विनियम 2018 का उल्लंघन है। डाबर इंडिया ने आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो नोटिस में उल्लिखित बातों की जाँच कर रहा है। ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: और अब मौसम का रुख कर लेते हैं। उड़ीसा में प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों में जलस्तर घटने के कारण बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हीराकुंड बांध के 4 और द्वार बंद कर दिए गए हैं।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है क्योंकि मुख्य नदियों में पानी का स्तर कम हो रहा है। हीराकुंड बांध अधिकारियों ने 4 और स्लुइस गेट बंद कर दिए हैं और अब बाढ़ का पानी 13 गेटों से नियंत्रित तरीके से छोड़ा जा रहा है। राहत बचाव और पुनर्वास का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, खासकर बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जिलों में जहां लोग बहुत मुश्किल हालात में है। राज्य सरकार का कहना है कि प्रभावित परिवारों को भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, पशु चिकित्सा सेवाएं, पॉलीथिन सीट और अन्य जरूरी मदद दी जा रही है। जैसे जैसे बाढ़ का पानी कम हो रहा है, कई जिलों में स्कूल फिर से खुल गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने 4 और 5 अगस्त को मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग ने असम से सटे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन मौसमीय परिस्थितियों का प्रभाव असम के कछार, डिमा हसाव, पश्चिम कार्बी आंगलोंग, विश्वनाथ, लखीमपुर, धेमाजी और तिनसुकिया जिलों पर पड़ सकता है। विभाग ने असम से सटे नागालैंड के अधिकांश जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका प्रभाव सराइदेव, शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट जिलों पर पड़ सकता है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने संबंधित जिलों के लोगों से सभी आवश्यक सावधानियां बरतने और सतर्क रहने की अपील की है। कल बाढ़ से संबंधित 2 और मौतें दर्ज होने के साथ ही राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना है। विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरलम, माहे, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन के समय तेज वर्षा होने की उम्मीद है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ तूफान की संभावना व्यक्त की गई है। और अब बात खेलों की कर लेते हैं। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी आज से दक्षिण कोरिया में शुरू हो रहे BWF सुपर 300 टूर्नामेंट कोरिया मास्टर्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। ये टूर्नामेंट 9 अगस्त तक चलेगा। सभी की निगाहें 17 वर्षीय तन्वी शर्मा पर होंगी, जिन्होंने ताइपे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतकर इस टूर्नामेंट में प्रवेश किया है। तन्वी भारत की महिला एकल टीम का नेतृत्व करेंगी। पुरुष एकल में किदांबी श्रीकांत अमरीका ओपन में उपविजेता रहने और पूरी तरह फिट कर वापसी कर रहे हैं। पुरुष एकल टीम में श्रीकांत के साथ किरण जॉर्ज, मिथुन मंजुनाथ, थारून मन्नपल्ली, रौनक चौहान और सनेथ दयानंद शामिल हैं। वहीं महिला युगल में सोनाली सिंह और रितिका ठाकुर के साथ प्रिया कोंजिंग बाम और श्रुति मिश्रा प्रतिस्पर्धा करेंगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद फरहत। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज आने की खबरें आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, नवीन के गढ़ में पीके का चमत्कार। जनसत्ता लिखता है, जीते प्रशांत, विरोधी अशांत। भाजपा के राष्ट्राध्यक्ष का किला ढहा, उपचुनाव में करारी हार। हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का विधेयक पारित। गृहमंत्री अमित शाह के सदन में नहीं आने पर विपक्ष का हंगामा जारी, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट के शब्द को प्रकाशित किए हैं। छात्रों के प्रदर्शन की आड़ में अपराधी रियायत के हकदार नहीं। ग्लासगो के बाद नजरें अहमदाबाद पर। भारत 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों को सिर्फ एक आयोजन के तौर पर नहीं बल्कि 2036 के अहमदाबाद ओलंपिक दावेदारी के लिए मेगा ड्रेस रिहर्सल के रूप में देख रहा है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, अलविदा ग्लासगो, अहमदाबाद को 2030 के गेम्स की मशाल मिली। ईरान से बातचीत शुरू। डोनाल्ड ट्रंप ने टाला संभावित बड़ा सैन्य हमला, लोक सत्य की सुर्खी है। पत्र ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द भी प्रकाशित किए हैं, कूटनीति की राह बातचीत से बचेगी हजारों जिंदगियां। हिंदुस्तान ने इस विषय पर अपने संपादकीय पन्ने पर एक लेख भी प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, क्या ईरान पर काम करेगी नई अमरीकी रणनीति। विश्लेषण में कहा गया है कि अमरीका और ईरान के बीच जब तक बुनियादी सवालों के जवाब नहीं तलाशे जाते, युद्ध विराम का कोई फैसला अंतिम नहीं माना जाएगा। नवभारत टाइम्स ने देश में अंगदान को लेकर बढ़ रही जागरूकता का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, अंगदान बढ़ा, रिकॉर्ड 20,000 से अधिक ट्रांसप्लांट। डिजिटल पोर्टल शुरू होने के बाद 5,00,000 से ज्यादा लोगों ने अंगदान की शपथ ली।
0: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से माफी की मांग की। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका। ईरान ने बातचीत की खबरों का खंडन किया। और खेलों में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम साइरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। Parliamentary Committee criticizes Meta over removal of Prime Minister Narendra Modi's video from Facebook, seeks apology from CEO Mark Zuckerberg. NDA Parliamentary Party to hold its weekly Mangal Milan meeting in New Delhi this morning. Supreme Court says state governments can close or withdraw FIRs against students involved in recent protests. US President Donald Trump warns Iran of last chance to reach an agreement with Washington. Tehran denies reports of negotiations. And Indian shuttlers to begin their campaign at Korea Masters 2026 badminton tournament today. And now the news in detail. The Parliamentary Standing Committee on Communication and Information Technology met Meta officials in New Delhi regarding the temporary removal of Prime Minister Narendra Modi's video from Facebook. BJP MP and chairperson of the committee, Nishikant Dubey, criticized Meta India for removing the social media post of the Prime Minister. Talking to reporters after the meeting, Mr. Dubey said that the committee has demanded Meta CEO Mark Zuckerberg to apologize for this, and if he does not do so, then the safe harbor protection under Section 79 should be withdrawn from him.
6: ये माफी नामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए, और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस लेना चाहिए।
5: प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज अंडरलाइंड दैट टैलेंट्स आर होन्ड एंड रिफाइंड थ्रू कंटीन्यूअस एफर्ट एंड डेडिकेशन। शेयरिंग अ संस्कृत कोट, मिस्टर मोदी नोटेड दैट टुडे द यूथ ऑफ द कंट्री आर इम्बाइबिंग दीज वेरी क्वालिटीज and illuminating India's name across the world. The National Democratic Alliance or NDA Parliamentary Party's weekly strategy meeting known as Mangal Milan will be held in the Parliament House this morning. The meetings are traditionally held on Tuesdays during Parliament sessions with an aim to demonstrate complete alliance unity. The meeting last took place on the 28th of July. MPs from Trinamool's breakaway faction, the newly formed Nationalist Citizens Party of India, NCPI, had also participated in the alliance meeting. The second meeting of the BRICS Anti-Corruption Working Group and the BRICS Expert Network on Asset Recovery will begin in Hyderabad, Telangana, today. Secretary of Department of Personnel and Training, Rachna Shah, will inaugurate the meeting. This meeting builds upon the outcomes of the first BRICS Anti-Corruption Working Group meeting, held virtually in June. More from our correspondent.
7: The two-day meeting is being organized in line with the theme of India's BRICS presidency, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. The event is expected to witness participation from BRICS member countries along with senior policymakers, experts, practitioners and representatives of anti-corruption and law enforcement agencies. During the meeting, BRICS members will deliberate on strengthening international cooperation for asset recovery, combating cross-border corruption, enhancing transparency and accountability in governance. With Rishu Jaiswal, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
5: The government has revised the special additional excise duty on exports of petrol, diesel and aviation turbine fuel or ATF. The government has notified the new rates for the next fortnight, saying that the export duty on diesel will now be 25.5 rupees per litre, including 1.5 rupees road and infrastructure cess, while the exports duty on ATF has been raised to 22 rupees per litre. Meanwhile, the export duty on petrol has been increased to 3.5 rupees per litre. The revised rates notified by the Finance Ministry came into effect yesterday. However, there is no change in the existing excise duty.

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय।
3: बिंदास मॉर्निंग।
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
5: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
6: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

स्वागत अभिनंदन, वेलकम बैक जी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कारम। एक प्यारी सी सुबह है और एक प्यारा सा ये खूबसूरत सा मौसम जिसमें मजा ही मजा आ रहा है। मतलब जैसे ही आंख खुली इतना प्यारा मौसम था यार, सच में। हाँ, आई नो गर्मी थोड़ी ज्यादा है आज भी, मतलब धूप नहीं है लेकिन गर्मी का एहसास पूरा पूरा हो रहा है। हेलो जी, हेलो, कैसे हाल चाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। आप जुड़ चुके हैं आरजी आनंद के साथ ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 8:24। दिन आज मंगलवार का है, ट्यूजडे की सुबह, वेरी वेरी स्पेशल वाली गुड मॉर्निंग। आई होप सब बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और एकदम फैंटास्टिक होंगे जी। आज की सुबह ढेर सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी पॉजिटिविटी और सुपर डुपर लाउडनेस के साथ आपके रेडियो पे मैं आ गया हूँ, आपका प्यारा सा दोस्त आनंद। अब से लेके 10 बजे तक आपके साथ रहेंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहाँ बातें होंगी ढेर सारी दिल से दिल तक। दोस्तों, कहते हैं ना, जब इंसान की जिंदगी में कुछ बड़ा करने का उसका एक सपना बन जाता है, जब उसका एक गोल डिसाइड हो जाता है, जब उसका एक एम फिक्स हो जाता है ना, तो फिर वो अपने दाएं बाएं कुछ नहीं देखता, फिर वो अपनी मंजिल की तरफ लग जाता है पूरी कंसिस्टेंसी के साथ, पूरे 100% एफर्ट्स के साथ वो लग जाता है कि मुझे अब इसको हासिल करना है, राइट। लेकिन उसे हासिल करने के लिए आपके पास वो वजह भी तो होनी चाहिए। जिनके पास वो वजह होती है ना, वो डेफिनेटली अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाते हैं। जिनके पास वजह नहीं होती है, वो सिर्फ भटकते रह जाते हैं। तो अपने गोल को डिसाइड करो, अपने एम को फिक्स करो, आपको जाना कहाँ है। आप बड़ा गोल नहीं बना सकते तो आप छोटे छोटे गोल्स बनाएं, उन पे काम करना शुरू करें, आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसी मोटिवेशन टूल्स के साथ करते हैं आज के सफर की शुरुआत, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल। आज का दिन अपने आप में बहुत खास है। क्यों है आज का दिन खास? 4 अगस्त की सुबह, बताऊंगा अभी आपको जब लौट कर आऊंगा। तो फिलहाल आप ऐसे ही ट्यून इन रहिएगा आनंद के साथ, डोंट गो एनीवेयर, कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, आज आनंद को ऐसे ही सुनते जाइए। बिकॉज आज का दिन क्यों स्पेशल है ये तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा बस थोड़ी सी देर के बाद। तब तक आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली मुझे मैसेज करके अपने हाल चाल बता सकते हो मेरे व्हाट्सएप पर 9837896896 पे, ठीक है जी। जब तक आप मुझे मैसेज करो तब तक मैं यहाँ पे कुछ गाने प्ले करता हूँ। आज की सुबह की शुरुआत कुछ अच्छे गानों से करते हैं एंड उसके बाद लौट कर आएंगे तो आपसे और भी बातचीत करेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, क्योंकि ये है आपके शहर का मॉर्निंग मैगजीन शो, दिस इज बिंदास मॉर्निंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक प्यारा सा ट्रैक आज की सुबह जो आपकी मॉर्निंग को बनाएगा थोड़ा सा सुपर डुपर लाउड, बहुत प्यारा गाना है, इसी गाने के साथ करेंगे आज की सुबह की किक स्टार्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा था यार, बहुत ही अच्छी चीज है बट अभी नहीं बताना, चलो थोड़ी देर में लौट के आऊंगा फिर बताऊंगा। सब कुछ अभी जान लोगे यार, अभी तो शुरुआत हुई है, बहुत कुछ है अभी जो मुझे आपको बताना है। आपको कहीं नहीं जाना है, ये गाना मैंने लास्ट टाइम कब सुना था मुझे भी नहीं पता, लेकिन गाना बहुत अच्छा है। चलो इसी को सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। और अब कुछ नहीं कह रहा यार, बस अब सीधा गाने की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर साहब, जरा गाना लगा दो यार, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा यार। ब्यूटीफुल ट्रैक आपके रेडियो सेट पे निकल गया है, लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी को सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं और कहते हैं दिल से जियो बिंदास।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट

0: प्रॉब्लम किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

करो। बहुत ही प्यारा गाना भी आपने एंजॉय कर लिया लेडीज एंड जेंटलमैन। आप सुन रहे हैं आरजी आनंद को, ये है ट्यूजडे की सुबह, वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छे गानों के साथ होती है अच्छी शुरुआत। आठ बज के 40 मिनट का समय हो रहा है हमारे स्टेशन क्लॉक में।

0: और तमाम सारे श्रोता साथी मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह में। आप सभी का इस्तकबाल करते हैं पूरी आपकी भैया यहाँ पर। हमारी तो कोशिश रहती है और आपकी पूरी कोशिश होती है कि आप अपनी प्यारे प्यारे बातें, अपने प्यारे प्यारे संदेश हम तक पहुँचाएं, और पहुँच रहे हैं मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया इन खूबसूरत मैसेजेस के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज की सुबह एक बहुत ही कमाल के लेजेंडरी का हम बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, तो उनके बारे में डेफिनेटली बात करेंगे अभी थोड़ी सी देर में। इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे आपको कहीं नहीं जाना है, रेडियो की सुई बिल्कुल नहीं घुमाना है। एंड आप जहां भी हैं, आप चाहे गाड़ी में बैठे हैं, आप चाहे घर में हैं, आप ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, आप जहां भी जा रहे हैं, आप रेडियो सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 विद आनंद के साथ। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि जब आपका साथ मेरे साथ होता है और मेरा आपके साथ होता है तो माहौल और भी स्पेशल हो जाता है। Yes, of course, यार, अच्छी बातें तो होती रहनी चाहिए। फिलहाल मेरे पास आज की सुबह क्या कुछ स्पेशल है, मेरे पास ये है कि भैया आज का दिन क्यों स्पेशल है, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है आपको बताने की। आज की मॉर्निंग 8:42 हो रहे हैं स्टेशन क्लॉक में, 4 अगस्त की सुबह, आनंद विद यू लेडीज एंड जेंटलमैन। एक बहुत ही कमाल की लेजेंडरी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, एक और बहुत ही कमाल के बॉलीवुड एक्टर का बर्थडे होता है। एंड इसके अलावा आज और क्या स्पेशल है आज की तारीख में, ये मैं आपको डेफिनेटली बताने वाला हूँ। 8:42 हो रहे हैं, कुछ एड ब्रेक का टाइम भी आ रहा है धीरे धीरे, सो जैसे ही ये टाइम होगा हम आपको टाइम के साथ थोड़ी थोड़ी चीजें बताते रहेंगे। लेकिन अभी जरा ये अपडेट आपको देने का टाइम है।
1: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: इंडिपेंडेंस डे आने वाला है और इंडिपेंडेंस डे को लेकर ढेर सारी तैयारियां चल रही हैं चारों तरफ और खूब अच्छे तरीके से जो है प्रिपरेशन हो रही है इंडिपेंडेंस डे की। फिलहाल अभी इंडिपेंडेंस डे की बात करूं ना करूं, लेकिन यहां पर मैं बात करने वाला हूं मुरादाबाद में क्या कुछ स्पेशल चल रहा है तो आपको पता लगेगा क्योंकि आप अपने लोकल रेडियो को सुन रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये सारी लोकल इन्फॉर्मेशन तो आपको देने की जिम्मेदारी बनती ही है मेरी। लेकिन बात करते हैं आज 4 अगस्त की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में श्रोताओं। तो आपको बता दें सन 1914 में इंग्लैंड द्वारा जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा हुई थी आज ही के दिन श्रोताओं। एंड मोहम्मद आज ही के दिन खातिमा द्वारा ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण हुई थी 1997 में। एंड आपको बताते चलें आज के दिन एक और बहुत ही स्पेशल चीज रही जो आज के दिन को और भी स्पेशल बना रही थी। हाँ जी आपको बता दें सरकार ने भारतीय जहाज रानी निगम SI को जो है मतलब नवरत्न का दर्जा जो है वो प्रदान किया था आज ही के दिन। हाँ जी एक बार फिर से मैं आपको ये स्पेशल चीज बताता हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि हर दिन का इतिहास बहुत खास होता है, हर दिन कुछ ना कुछ स्पेशल रहता है और हर दिन की तारीख हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है और हमें ये मोटिवेट करने के लिए मजबूर करती है कि हमें भी अपनी जिंदगी में अपने कर्मों की किताब पे कुछ बेहतर लिखना है। और जैसे आज इन लोगों का नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो चुका है, शायद आने वाले समय में आपका नाम भी हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए। हाँ जी आपको बता दें सन 2008 में सरकार ने भारतीय जहाज रानी निगम SCI को नवरत्न का दर्जा जो है वो प्रदान किया था आज ही के दिन। और आज ही के दिन जो है एक बहुत ही खूबसूरत कलाकार का जन्म हुआ था। यस कौन है वो कमाल के कलाकार, उनके बारे में जरूर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें आज ही के दिन नरेना जी का जो जन्म हुआ था 1931 में, जो भारतीय क्रिकेटर हैं इनका जन्म हुआ श्रोता हूँ आज ही के दिन। और एक बहुत ही खूबसूरत लेजेंडरी का बर्थडे हम आज सेलिब्रेट करते हैं, उनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, जिनके बारे में मैं थोड़ी देर पहले भी जिक्र कर रहा था और अभी उनके बारे में और हम विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम लौट कर आएंगे। तो फिलहाल 8:46 हो रहे हैं, कुछ एड ब्रेक का और टाइम है, उसके बाद कुछ अच्छे गाने होंगे और मेरी एंट्री होगी तो हम बताएंगे आज कौन से लेजेंडरी को हम याद करते हैं। और उनके गाने और उनका म्यूजिक माइंड ब्लोइंग था यार, सच अ माइंड ब्लोइंग। और उन्होंने असली म्यूजिक का मतलब भी समझाया, कौन है वो किन की बात कर रहा हूँ आज 4 अगस्त की सुबह, लौट कर आता हूँ फिर बताता हूँ।
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
2: मॉर्निंग। मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना, पुराना सोना लाओ नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद, कॉल करें 7055070552।
5: कोई मिल गया,
6: कोई मिल गया।
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने, बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।

क्या बात है यार, क्या बात है। दिल दीवाना कहता है प्यार कर, मतलब इतना प्यारा गाना सुन के तो सच में किसी को ही मजा आ जाएगा। इतने खूबसूरत गाने आप कहाँ सुनते हैं, सिर्फ और सिर्फ एफएम मुरादाबाद पे आनंद के साथ सुनते हैं, जहाँ बातें होती हैं दिल से दिल तक। एक बहुत ही कमाल की लेजेंडरी का आज हम बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, एंड ऑफ कोर्स उनके बारे में बात करना तो डेफिनेटली बनता है आज की सुबह। एंड इतने कमाल के लेजेंडरी सिंगर की बात अगर ना करें हम आज की सुबह, तो कुछ तो ऐसा लगेगा कि हम पीछे छोड़ रहे हैं आज की तारीख में। और कौन नहीं है जो उनके बारे में आज बात करना चाहता है, हर कोई बात करना चाहता है। इतने कमाल के ब्यूटीफुल सिंगर हैं, आवाज़ इतनी प्यारी है।

0: सिंगर ही नहीं, मैं कह सकता हूँ ये एक्टर भी हैं यार, इतने प्यारे इन्होंने गाने दिए हैं। इनके बारे में जितनी बातें करूंगा वो कम होंगी, एंड आई थिंक मुझे लगता है कि अब इनके कुछ गानों के मुखड़े प्ले करता हूँ।
1: हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले।
0: आपको पता है कौन से सिंगर है ये?
1: हाय हाय, दिल के
0: ये गाना सुनो आप,
1: कोई भर।
0: अगला गाना प्ले कर रहा हूँ, ये ध्यान से सुनो।
1: हाय
0: हाय, एक और एक और।

ये कमाल की लेजेंडरी सिंगर। जल्दी चलो मुझे मैसेज करके बताना अभी जो आप ये गाने सुन रहे हो कौन से सिंगर के ऊपर जो है आज की सुबह मैं गाने लगा रहा हूँ। यहाँ पर आज इनकी बर्थ एनिवर्सरी है, आज इनको याद करते हैं। आज ही के दिन 4 अगस्त को इनका जन्म हुआ था और एक ऐसी आवाज का जन्म हुआ जिसके बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ। कौन है ये कमाल के सिंगर? यस, आप मुझे बताओ हु आई एम टॉकिंग अबाउट, कौन से सिंगर है ये? अगर आपको पता है तो आप मुझे मैसेज करो कौन है कमाल के लेजेंडरी, गेस करके बताओ मुझे। एक बार फिर से मैं इनकी आवाज में कुछ मुखड़े यहाँ पर प्ले कर रहा हूँ, शायद आप समझ जाएं कि मैं आज कौन से सिंगर की बात कर रहा हूँ।

0: हाय हाय, दिल के बड़ा करीब है यार ये गाना।
1: तुम्हारे सामने वाली खिड़की में
0: अगला गाना सुनो, बहुत प्यारा है यार।
1: उड़ा रहता है जिंदगी एक सफर है सुहाना।
0: हाय हाय, क्या सॉन्ग है। तोड़ेंगे, चलो हम भी आपसे दोस्ती बिल्कुल नहीं तोड़ने वाले हैं। आप मुझे मैसेज करके बताना अभी जो आप आवाज़ सुन रहे थे वो कौन से अमेजिंग सिंगर की आवाज़ में गाने जो है यहाँ पर चल रहे हैं। अगर आपको पता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं आज की सुबह। एंड अभी फिलहाल एक अच्छा गाना प्ले कर रहा हूँ मैं आज की मॉर्निंग आपके लिए। 8:57 हो रहे हैं, आप लोगों ने बहुत सारे मैसेज किए हैं, मैं डेफिनेटली उनको शामिल करूँगा अभी थोड़ी सी देर में। लेकिन उससे पहले ब्यूटीफुल ट्रैक जो आपको थोड़ा सा याद दिला देगा पुरानी वाली मूवी का स्टाइल। Think about माधुरी दीक्षित, गोविंदा एंड बच्चन साहब। ये मुझे याद है हम छोटे छोटे थे जब हमने ये मूवी दूरदर्शन पे देखी थी, वही पड़ोसों के घर में जाके देखी थी, वो भी पता है 5-5 रुपए की कॉन्ट्री करके ये मूवी देखी थी हम लोगों ने। वो पहले बैटरी वाले टेलीविजन आते थे ना, टेलीविजन ब्लैक एंड व्हाइट वाले टेलीविजन, ब्लैक एंड व्हाइट वाले टेलीविजन को ऐसे चुटकियां लगा करके बैटरी में तब उसको चलाते थे। आई थिंक हमसे बहुत लोग जानते होंगे यार। वो बैटरी मंगाने के लिए ना अपन 5-5 रुपए की कॉन्ट्री करते थे यार, सारे लोग जितने मोहल्ले के फ्रेंड्स होते थे कि चलो यार 5-5 रुपए डालो, आज ये टीवी पे ये फिल्म आने वाली है, लेकर आएंगे बैटरी उठा करके ना। फिर भैया जाते थे बैटरी लाते थे, फिर किसी पड़ोसी घर में टेलीविजन पे देखते थे, आए हाय बड़ा मजा आता था। क्या करो, सुबह सुबह मेरी भी कुछ ऐसी यादें ताजे कर दी आनंद तूने, यही तो काम है आप उनका। चलो इसको सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग.
2: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386
3: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या
4: था मेरी कसम
3: मिस कर दिया तो रीलोड
5: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10

वेलकम बैक है वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज माय लास्ट आवर। हो गई है शुरुआत तीसरे घंटे की, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद। ट्यूजडे की सुबह है, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, 9:03 हो गए हैं 4 अगस्त की सुबह। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप जहाँ भी जा रहे हैं ऑल द वे बेस्ट। आज की सुबह हम बहुत ही कमाल की लेजेंड्री का बर्थडे मनाते हैं, जिनके बारे में अभी हम बात भी कर रहे थे यहाँ पर। एंड बहुत सारे मेरे पास मैसेज आ गए हैं, मतलब माइंड ब्लोइंग। सारे लोगों को पता लग गया कि आज कौन से लेजेंड्री का हम बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, कौन है कमाल के आर्टिस्ट जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। डेफिनेटली अभी मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। इसके अलावा आज और कुछ स्पेशल डेज मनाए जाते हैं। एंड आपको बताया ना, सावन चल रहा है, वैसे में जो है बोल बम के नारे लगातार गूंज रहे हैं और बहुत सारी कड़क लेटेस्ट अपडेट जो है मुझ तक पहुंच रही है। तो वो सारी कड़क अपडेट जो है मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं। सो अभी बहुत सारी चीजें जो आपके साथ मुझे शेयर करनी है इस घंटे, तो आप कहीं नहीं जाएंगे, रेडियो की सुई बिल्कुल नहीं घुमाएंगे। आने वाले गाने ब्यूटीफुल ट्रैक आपके रेडियो सेट पे निकल गया है, बहुत ही अमेजिंग ट्रैक, दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। आज की सुबह इस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे, क्या सॉन्ग है यार।

मुझे पता है, बलमा घोड़े पे इसलिए सवार है क्योंकि मंगलवार की सुबह उसको जल्दी ऑफिस जाना है। हाय हाय, हृदय के तार है, जाने क्या सॉन्ग है यार। घोड़े पे क्यों सवार है, ट्रिपी डुबी पर पिक्चराइजेशन, ये गाना जरा सी देर में आप तक पहुंचेगा इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। एंड अगर अभी तक आपने ये नहीं पकड़ा है कौन से सिंगर की सॉन्ग है, तो फिर क्या कर रहे हो आप?

0: ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ बैक टू बैक ताकि आप समझ जाएं। बहुत सारे लोग ना सही दे नहीं पाते हैं जवाब, तो अभी भी आपके पास मौका है।
1: तो ये सिलसिले
0: कौन से सिंगर ने गाए हैं ये गाने? अच्छा अगला वाला बहुत प्यारा गाना है। चलो मैसेज करके अभी आपने मेरे को बताना है ये जो अभी गाने सुन रहे हैं कौन से लीजेंड ने गाए हैं। अगर आपको पता है इनका नाम तो आपने क्या करना है पाजी, उठाना है अपना फोन, टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब, सेंड करना है उसको मेरे व्हाट्सएप पर 9837896896।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा, बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
0: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती। सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
3: आइए सुनते हैं बिना रैप वाला रीमिक्स।

0: वेलकम बैक है वंस अगेन। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। 9:15 का समय हो गया है। ट्यूजडे की सुबह आनंद के साथ जुड़े हुए हैं आप इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। आपको फटाफट से कुछ लेटेस्ट खबरें बता देते हैं देश दुनिया में क्या चल रहा है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यूपी में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से बरसेंगे फूल। 2 दिन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। हां जी, आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार इस साल भी सावन कांवड़ यात्रा की जो है भव्य, सुरक्षित और श्रद्धामय बनाने की पूरी तरीके से तैयारी में जुट गई है। अपने उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में एक बार फिर से 9 और 10 अगस्त को जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रमुख कांवड़ मार्गों पर जो है हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जाएगी, और इसके लिए विशेष कार्यक्रम जो है वो भी जारी कर दिए गए हैं। और सरकार का उद्देश्य है कि शिव भक्तों का सम्मान करना, यात्रा को और भी ज्यादा मेमोरेबल और वंडरफुल बनाना। तो 9 और 10 अगस्त को जो है अपने उत्तर प्रदेश में सभी कांवड़ियों पर जो भाई हैं, कांवड़ती भाई हैं, श्रद्धालु हैं, उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जाएगी हेलीकॉप्टर से। दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन। आपको बता दें एक बार फिर से यूपीआई पेमेंट का जो है वो थोड़ा सा बदला तरीका और क्या कुछ चेंज हुआ है, मैं डेफिनेटली अभी आपको ये बताने वाला हूँ। एंड हमारे सीएम साहब ने कांवड़ यात्रियों को लेकर क्या स्पेशल बात कही है, ये अभी मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आपको पता है एक बंदा है जिसने अंग्रेजी के 26 अक्षर को 9 सेकंड में लिखकर जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। आरा जिला के रवि कुमार हैं, इन्होंने इतिहास रच दिया है। इनके बारे में थोड़ी सी बात तो डेफिनेटली मैं करने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी कुछ एड ब्रेक पहले फटाफट से सुनते हैं, उसके बाद में जब अभी लौट कर आऊंगा तो आपको कुछ और खास चीजें हैं जो रूबरू कराना है मुझे आपने, उन चीजों से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। आई मीन टू से मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, प्लीज यार ऐसे ना इधर उधर को बात मत रखा करो यार। आप लोग इतने प्यारे मैसेज करते हो, कितने प्यारे हो यार आप लोग, सच में मजा आ जाता है आपके मैसेज चेक करके।
1: तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिला।
2: अरे तो भाई गुस्सा क्यों होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, जो कहता है रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास।
3: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
6: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
7: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
8: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
7: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
9: अब क्या तोड़ दिया नालायक, सॉरी मां।
10: हाँ जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, क्या हाल चाल?
11: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

आप लोगों ने बहुत सारे मैसेज कर दिए हैं व्हाट्सएप पे, और ये मैसेज मैं डेफिनेटली शामिल करने वाला हूँ, अभी लौट कर आ रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको शामिल करूंगा। आपने वॉइस नोट भी भेजे हैं, अपने व्हाट्सएप मैसेज किए हैं, सारे के सारे मैं शामिल करूंगा इसे स्टेशन ऑफ द नेशन पर। फिलहाल के लिए एक बहुत ही प्यारा ट्रैक रेस मूवी से निकल गया है आपके रेडियो सेट पर।

0: मुरादाबाद जो है ना बहुत ही अच्छा और बढ़िया तो है ही, अपनी चीजों को लेके बहुत पॉपुलर है, नो डाउट मुरादाबाद जो है। लेकिन मुरादाबाद की कुछ चीजें और भी बहुत अच्छी हैं, जैसे मुरादाबाद में जब भी कोई अच्छी चीज होती है ना, तो मुरादाबाद का चाहे प्रशासन हो या फिर मुरादाबाद की पुलिस प्रशासन हो या मुरादाबाद का नगर निगम हो, सारी मुरादाबाद की जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं वो बहुत अच्छे से चीजों को मैनेज करते हैं और हर एक चीज में ना अपना 100% लगा देते हैं। मुझे ये चीज बहुत अच्छा लगता है कि चलो यार कोई भी चीज अगर हो रही है तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो उसमें अच्छा, और सबसे अच्छी बात कि मुरादाबाद के लोग जो हैं वो भी बढ़ चढ़ के अपनी सहभागिता निभाते हैं, इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सो ये जोरदार ताली, और अभी आगे बढ़ते हैं आपके लिए, आप सुन रहे हैं भैया क्या। अच्छा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए जरा ये सुनिए।
1: माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश हैं और हमारे जिलाधिकारी महोदय साहब इस पे बहुत ही गंभीरता से इस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं कि श्रावण मास में जो कांवड़ लेके लोग श्रद्धालु आते हैं, जिन्हें हम साधारण भाषा में भोला कहते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। बीच बीच में रुकते हैं, चाय नाश्ता के लिए कोई सामान लाते हैं, इसलिए हमारा विभाग भी पूरी तरीके से प्रतिबंधित है कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही ना हो। कोई भी विक्रेता उनसे किसी भी स्थितियों में कीमत जो जन साधारण दिनों में रहती है उससे अधिक ना ले पाए, और कहीं पर भी किसी प्रकार की मिलावट, अपमिश्रण या कोई ऐसा शब्द जिससे लगे कि ये हमारी आस्था को भंग कर रहा है, आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है या आस्था में कहीं बाधित हो सकता है, उसके लिए हमारी पूरी टीम लगी हुई है पूरे जनपद में, और सब अपने अपने क्षेत्र में जितने भी अधिकारी हैं सब लगे हुए हैं रेट लिस्ट को लेकर के, सफाई को लेकर के, और किसी भी प्रकार की श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो उन्हें सुविधा प्रदान करने की।
0: बहुत ही खूबसूरत बात जो है कही है साहब, ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा सुनकर के। और अभी हमारे सीएम साहब ने क्या कहा है जरा ये भी सुन लेते हैं फटाफट से, ठीक है, ये जानना भी तो बहुत जरूरी है ना, उनका संदेश क्या है।
2: कब दिन भी है, अभी से करोड़ों की संख्या में शिव भक्त कांवड़ यात्री के रूप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरिद्वार के पावन धाम में हर जी की पेड़ी में गंगा जल लेने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। उनके स्वागत के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उन्हें कहीं कोई दिक्कत न हो कि परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन ने, स्थानीय प्रशासन ने, स्वयंसेवी संगठनों ने, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों ने, धार्मिक संगठनों ने अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। हमारे माननीय सदस्यगण भी इस कार्यक्रम में भाग लेने के उत्सुक हैं, और इसीलिए 7 अगस्त से उन्हें उन कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। मैं सभी कांवड़ यात्रियों का भी हृदय से स्वागत करता हूं, उनके प्रति भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं।
0: क्या बात है, देखिए हमारे सीएम साहब ने भी जो है कांवड़ियों का स्वागत कर दिया है, और बहुत अच्छे से जो है वो एक प्रोग्राम भी जो है अब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो 7 अगस्त से शुरू होने वाला है, कुछ तो स्पेशल होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ऐसी ही लेटेस्ट चीजें आपको पता लगती रहेंगी हमारे साथ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। फिलहाल अब एक अच्छा गाना, बहुत देर से इंतजार कर रहा था यार इस गाने को, सुनते हैं आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा सवाल लेकर आता हूँ, 9:27 हो गए स्टेशन क्लॉक में, यानी कि 9:27, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, ये है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे बिंदास मॉर्निंग, आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो आप सुन रहे हैं, और दिल से जहां और आप कहते हैं जियो बिंदास। कुछ कहना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं आप 9837896896 पे, लौट कर आ रहे हैं उसके बाद आपके मैसेज को जल्दी से शामिल करेंगे।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
2: हाँ मेरी कसम.
1: मिस कर दिया तो रीलोड.
3: चाय चाय चाय.
4: बिंदास मॉर्निंग.
1: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10.

0: Bindaas Morning.
1: Bindaas Morning.
2: चार अगस्त की सुबह आप सुन रहे हैं फिर मुरादब 89.6। ये ट्यूजडे मॉर्निंग है लेडीज एंड जेंटलमैन, आनंद के साथ अच्छे गानों की वाइब आपको मिलती है स्टेशन ऑफ द नेशन पे एवरी मॉर्निंग। यार किक स्टार्ट तो अच्छे तरीके से हो, जहाँ पर फुल ऑन स्वैग हो, एनर्जी हो, पॉजिटिविटी हो, हैप्पीनेस हो, और थोड़ी लाउडनेस होना बहुत जरूरी है, मेरा ऐसा मानना है। फिलहाल आने वाला गाना एंजॉय करते हैं साथ में मिलके। दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग सॉन्ग, वेरी वेरी फैंटास्टिक नंबर। चलो वॉल्यूम बढ़ाओ और अपने कानों को जो है रेडियो पे लगाओ, अपने ध्यान को सड़क पे लगाते हुए ड्राइव करो आप जहां भी जा रहे हैं। ऑल द वे बेस्ट, कहीं ट्रैफिक है तो आप मुझे अपडेट कर सकते हैं 9837896896 पर। एंजॉय करते हैं 3 2 1 गो। एंड क्या कह रही है मैडम, जरा सुनते हैं इनके दिल का हाल। हाँ जी क्या बात है। I'll be right back।

0: वेरी वेरी अमेजिंग। और ऐसे गाने सुन के सच में यार बड़ा मजा आता है मुझे, मैं सच बता रहा हूँ। इतना अच्छा म्यूजिक है ना हमारी बॉलीवुड में यार, फैबुलस। 9:37 हो गया, आनंद के साथ सुन रहे हैं आप आपके शहर का मॉर्निंग मैगजीन शो, जहां पर हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं आपके साथ। और आज मैं आपसे डिस्कस भी कर रहा था यहां पर अपने रेडियो स्टेशन पे कि आप मुझे जरा बताओ आज हम कौन से लेजेंड सिंगर का बर्थडे जो है सेलिब्रेट करते हैं। बहुत ही कमाल के लेजेंडरी सिंगर हैं, जो सिंगर के साथ साथ एक एक्टर भी हैं, बहुत ही कमाल के हैं यार ये, और इनके गाने सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं यार। उन्हीं की आवाज में ट्रैक शायद अब आप पकड़ लें, किन की बात कर रहा हूं? अगर आपको समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैंने आपके लिए कुछ गाने प्ले करे ही थे, बहुत सारे लोगों ने से जवाब बता भी दिए हैं। तो यार थैंक यू सो मच, सबसे पहले आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं, आपके मैसेज को फटाफट शामिल करेंगे। हाय गुड मॉर्निंग आनंद, हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे हैं? आई एम डूइंग गुड यार, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। थैंक यू सो मच मेरे हालचाल लेने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और मेरे पास मैसेज आया है, हाय गुड मॉर्निंग, ये विजय ब्यूटी सेंटर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ भरत नागपाल जी, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। गुड मॉर्निंग सर, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आई होप आप भी अच्छे होंगे। एक मैसेज मेरे पास पहुंचा है, हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है, माय नेम इज श्रुति, गुड मॉर्निंग श्रुति। एक मैसेज और मेरे पास पहुंचा है आज की सुबह, हाय गुड मॉर्निंग आनंद, क्या हाल चाल है, आपकी आवाज और आपका अंदाज दोनों ही बड़े डिफरेंट होते हैं मेरे भाई, थैंक यू सो मच। ये विजय मेरे पास मैसेज कर रहे हैं। एक व्हाट्सएप मेरे पास पहुंचा है, हाय माय नेम इज प्रीतम, गुड मॉर्निंग प्रीतम जी, मुझे कांच रूट से मैसेज कर रहे हैं, लिखते हैं गुड मॉर्निंग सर आप कैसे हैं। यार मैं बहुत बढ़िया हूँ। एक और व्हाट्सएप मेरे पास आ गया है, हाय हेलो हेलो आनंद, कैसे हालचाल यार, आज की सुबह मौसम बहुत प्यारा हो रहा है और गाने तो बहुत अच्छे लगा रहे हैं, थैंक यू सो मच यार।
1: यार मिला दे।
0: ये थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया गाना फ्लैशबैक में ले जाएगा।

0: कुछ लोगों को लग रहा होगा ये आनंद है कौन से जमाने का यार, क्या बजाता रहता है, मतलब थोड़े नए शे गाने बजाने के क्या भाई। देखो जो गानों में मजा है ना वो पुराने गानों में, मैं सच बता रहा हूँ, बिगेस्ट फैन, ओल्ड इज गोल्ड है। ऐसा नहीं है मुझे नए वाले पसंद नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो नए भी मुझे पसंद है,
1: जो मिले हो
0: आने वाला गाना
1: ओ मेरे सनम,
0: हाय हाय हाय,
1: दो प्यार वाली बातें करेंगे हम।
0: विक्की विद्या का वो वाला वीडियो से ही गाना अभी आपके रेडियो पे पहुंचेगा। अभी काम करते हैं, ढेर सारी बातें हो रही हैं, आपके मैसेज को भी जरा जल्दी जल्दी प्ले करते हैं। ये कौन कहां से वॉइस नोट पहुंचा रहे हैं?
2: ईदगाह गेट मुरादाबाद से शफी।
0: जी शफी जी, स्वागत है आपका। हाँ जी,
2: गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, हैव इट्स लवली डे, मंडे टू सैटरडे, आरजे आनंद के साथ बिंदास मॉर्निंग सुनते रहो, एफएम 89.6 के कुन गाते रहो, रेडियो बजाते रहो, सुनते रहो, कुछ लाइनें सुना रहा हूँ, दिल में आपकी हर एक बात रहेगी, जगह छोटी है पर आबाद रहेगी, चाहे हम भुला दें इस जमाने को, ये प्यारी सी दोस्ती हमेशा याद रहेगी, मेरी हर दुआ तुम्हारे साथ है, थैंक यू।
0: वेरी नाइस, थैंक यू सो मच साहब अपने मैसेज को पहुंचाने के लिए। हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है आनंद भाई? अमित वर्मा जी, मैं मेरे हालचाल बहुत बढ़िया है, थैंक यू फॉर आस्किंग मी। हाय गुड मॉर्निंग जी, कैसे हालचाल है? सुनीता मेरे साथ जुड़ गई है, हाय गुड मॉर्निंग। ये लक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़ी है, साथ में संतोष जी एंड बबली जी गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। रिजवान खान साहब भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ और इन्होंने बता दिया है कि आपने जो आज सिंगर के सॉन्ग प्ले किए हैं उनका नाम ये है। ऑफकोर्स यार, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो कमाल के लेजेंडरी हैं एंड उनके बारे में बात करना तो आज की सुबह बनता ही है। देखो
1: एक
0: कला खूबसूरत बात जो मुझे हमेशा लगती है कि वो ना होकर भी ना हमारे दिलों में हमारे जहन में हमेशा जिंदा रहते हैं। यस दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 और आज का दिन भारतीय संगीत के इतिहास के लिए बेहद ही खास है क्योंकि आज हम जन्मदिन उस जादुई आवाज के शहंशाह का मनाते हैं, उस जादुई आवाज के कह सकते हैं उस खूबसूरत लेजेंड का बर्थडे मनाते हैं जिनकी आवाज सुनकर हर दिल मुस्कुरा उठता है। यस आई एम टॉकिंग अबाउट किशोर कुमार जी। किशोर कुमार सिर्फ एक गायक नहीं थे बल्कि एक शानदार अभिनेता, संगीतकार, गीतकार और निर्माता भी थे। उनकी आवाज में एक ऐसी मिठास और एक ऐसी ऊर्जा थी जो रोमांस हो या दर्द या हो मस्ती या हो जिंदगी का जज्बा, हर एहसास को उन्होंने अपनी गायकी से अमर बना दिया। आज के दिन हम उनके कुछ बेहतरीन ट्रैक आपके लिए प्ले कर रहे हैं यहाँ पर। कहते ना कुछ आवाजें कभी बूढ़ी नहीं होती हैं, किशोर कुमार की आवाज भी उन्हीं में से एक है। उनके गीत आज भी उतने ही ताजा तरीन कर देते हैं, जब हम सुनते हैं लगता है वापस से हम उस जमाने में चले गए हैं।
1: जिंदगी सफर है सुहाना,
0: वाओ व्हाट अ वंडरफुल सॉन्ग यार। कितने फ्रेश लग रहे हैं ना उनके गीत आज भी सुनने में।
1: मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुक मस्त।
0: उनकी जयंती पर हमारा शत शत नमन और हम उन लेजेंड को आज के दिन की भैया जो उनके फैंस हैं उनको बधाई देते हैं और उनके गीत, उनकी जो एक खूबसूरत जो एक जज्बा है उनके गीतों का, जो एक कहीं ना कहीं उन्होंने तरीका डिलीवर किया है, चीजों को हम तक पहुँचाया है, मतलब आउटस्टैंडिंग, अनबिलीवेबल, इनक्रेडिबल यार। एक और बहुत ही कमाल के एक्टर हैं जिनका हम बर्थडे मनाते हैं आज की सुबह, उनके बारे में भी हम बात करेंगे जब लौट कर आएंगे। तो वैसे बहुत सारे लोगों ने मुझे सही जवाब दिए थे, मैं किशोर दा की बात कर रहा था। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग एवरीबडी। अभी लौट कर आते हैं जरा सी देर में, फिर उसके बाद हम आपसे बातचीत करेंगे। अभी कुछ और खास चीज़ों को मुझे आप तक पहुँचाना है। फिलहाल पहुंच रहा है ये ब्यूटीफुल ट्रैक, इसको एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं और आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप भी मुझे कुछ अपडेट देना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। 9837896896 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये ट्यूजडे की सुबह आप सुन रहे हैं आनंद।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
2: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
3: बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग। बिंदास।

क्या बात है यार, सुनिधि चौहान की आवाज में भी आप एंजॉय कर रहे हैं दिल डिंग डोंग डोले। आपका दिल डोले या आप डोले कोई फर्क नहीं पैदा पाजी, बस आप डोलते जाओ और अच्छे से ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ। हर दिन की सुबह हम आपको एनर्जेटिक बनाने के लिए आते हैं। आज की सुबह भी एक बिग शाउट आउट आप सभी के नाम। 9:52 हो गए, आप सुन रहे आनंद को। ये ट्यूजडे की सुबह है ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पे। कुछ कड़क अपडेट आपको बता दें भैया, क्या स्पेशल इंटरनेट स्पीड के लिए हमसे कुछ अलग चार्ज वसूले तो नहीं जाएंगे? आपको बता दें क्या भविष्य में गेमिंग, हेल्थ केयर या स्मार्ट फैसिलिटीज जैसी सेवाओं के लिए क्या हमें अलग अलग इंटरनेट पैक लेना पड़ सकता है? तो देखिए भाई, कुछ भी हो सकता है। अब जो है 5G नेटवर्क आ गया है, इसको भी जो है अब और ज़्यादा एडवांस बनाने की तैयारी की जा रही है। और बताया ये भी जा रहा है कि ऐसा हो भी सकता है इन फ्यूचर कि अगर आप अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए आपको अलग अलग पैक्स लेने पड़ सकते हैं। मुश्किल में नहीं, नहीं मुश्किलें दूर करने आता हूँ यार मैं। व्हाट्सएप का एक बड़ा एक्शन आया है भारत में। कई अकाउंट्स 24 घंटे के लिए ब्लॉक जो है वो हो सकते हैं, कई यूजर्स टेंशन में आ गए हैं। हाँ जी, भारत में कई व्हाट्सएप यूजर्स परेशान हैं अभी, और कुछ परेशान अभी हो सकते हैं बिकॉज व्हाट्सएप नहीं चला पा रहे बहुत सारे लोग। ऐसा मंडे से जो है ये फीचर गड़बड़ हुआ है। हाँ जी, आपको बता दें व्हाट्सएप यूजर्स के लिए जो अकाउंट्स हैं वो कुछ लोगों का जो है अभी फिलहाल ब्लॉक हो गया है। मिसिंग प्लेटफॉर्म जो है ऑन नहीं हो रहा है। 24/7 जो है जो व्हाट्सएप चालू रहता था जिसमें हमारी हैबिट बन गई, बट अभी वो बहुत सारे यूजर्स का जो है बंद हो गया है 24 घंटे के लिए, आवर्स के लिए जो है वो ब्लॉक हो गया है, और मतलब ब्लॉक कर दिया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि और ज्यादा अभी इसको बढ़ाया जा सकता है, मतलब और भी लोगों का हो सकता है बंद व्हाट्सएप, सिर्फ 24 घंटे के लिए हो सकता है। आई डोंट नो, कुछ चल रहा है शायद इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन पता नहीं यार, व्हाट्सएप बंद तो नहीं होना चाहिए वैसे, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, कभी कभी जब आप डीपी नहीं लगाते ना तो मेरी स्क्रीन पर ना सिर्फ ब्लैक आता है व्हाट्सएप वाली जहाँ पे हम डीपी लगाते हैं। पता नहीं आपके में कैसा आता होगा, आई डोंट नो, मेरे भी कभी कभी ब्लैक स्क्रीन आ जाती है, मेरे को कभी समझ ही नहीं आता ये हो क्या रहा है। एक रिसेंटली रिसर्च आई है जिसमें पता लगा है कि अगर आप भी बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और बहुत सारा हेल्दी स्नैक्स इसलिए खा लेते हैं कि भैया आपका वजन नहीं बढ़ेगा, लेकिन एक रिसर्च में पता लगा है अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी चीज़ों को भी अगर ओवर करते हैं तो ये भी आपका मोटापे का कारण बन सकता है। हाँ जी, मखाने, ड्राई फ्रूट्स, भुने हुए चने या जो भी आप ये हेल्दी चीज़ें खाते हैं, इससे वजन तो नहीं बढ़ता, आई नो कंट्रोल में रहता है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर करते हैं और बार बार इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी लेते हैं तो इससे आपका वेट डेफिनेटली बढ़ सकता है, यानी कि आप मोटापे के शिकार हो सकते हैं। चीनी, नमक का जितना कम इस्तेमाल करेंगे उतने लंबे समय तक फिट एंड फाइन रहेंगे।

भी मैं निकला कांठरोड पे, मैंने एक्सपीरियंस किया कि भैया नगर निगम की तरफ से जो जल की व्यवस्था बड़ी खूबसूरत की गई है, पुलिस प्रशासन लगातार अपनी जो है सहभागिता निभा रहा है, चारों तरफ जो है आप देखेंगे माहौल बहुत ही भक्तिमय है और सारी चीजों को बहुत अच्छे से मेंटेन किया जा रहा है। बाकी जो ऑटो चला रहे हैं भैया उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, ऑटो ड्राइवर हो या आप गाड़ी चला रहे हैं तो जो आपके आसपास कावड़ भाई है ना, जो कावड़ती भाई हैं, जो श्रद्धालु हैं, कोशिश करें कि उनको आप निकलने दें और आप ही अपनी चीज़ों को ज़रा ध्यान में रख के ही ड्राइव करें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। कभी कभी जल्दबाजी में जो है बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं।

12 अगस्त को एक रिसेंटली अपडेट आई है कि एक बड़ा ग्रहण पड़ सकता है जिससे बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। अब इसके लिए तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और सही इन्फॉर्मेशन जो है, डिटेल जो है सही वाली, वो कलेक्ट करनी पड़ेगी। 9:56 हो गए, आगे बढ़ते हैं अभी। और आपके लिए एक मेरे पास एक सवाल है, अगर आप इसका जवाब देंगे आज की सुबह तो हो सकता है आप मेरे शो के आज लकी विनर बन जाएं। ट्यूसडे की मॉर्निंग आप मेरे शो पे लाइव बातचीत मुझसे करें और मेरे शो पे जीते एक सुपरस्टार का टैग। अगर आप बनना चाहते हैं सुपरस्टार आज मेरे शो के, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? कुछ भी नहीं करना है यार, बस रेडियो को जैसे आप सुन रहे हैं वैसे ही सुनते रहना। मैं एक सवाल करूंगा, उसका जवाब आप मुझे देंगे तो विनर बन जाएंगे।

0: मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको एक ऐसे बंदे के बारे में बता रहा था जिसने अंग्रेजी के 26 अक्षर 9 सेकंड में लिखकर जीता वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब। यस, आरा जिला के रवि कुमार ने इतिहास रच दिया। कहते हैं ना, जहां चाहा है वहीं रहा है। जब इंसान के अंदर जज्बा होता है ना कुछ बड़ा करने का, कुछ बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करने का, तो वो फिर कर ही जाता है यार। वो कहते हैं ना, मैनिफेस्टेशन में बड़ी पावर होती है। जो आप चाहते हैं वो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, बस आपको उस चीज पे जो है कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना है। अगर आपने कुछ सपना देखा है तो उसके लिए आपको सही दिशा में मेहनत भी करनी पड़ेगी, और वैसे ही की है रवि कुमार जी ने। इन्होंने भी भाई साहब अंग्रेजी के 26 अक्षरों को 9 सेकंड में लिख दिया है। आई कांट बिलीव दिस। और उसके बाद इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। आज पूरी दुनिया इनके बारे में बात कर रही है यार। मैं तो आपसे भी कहना चाहता हूँ, मुरादाबादी, आपके अंदर भी कोई ना कोई हुनर तो डेफिनेटली होगा। वो कहते हैं ना, हर इंसान के अंदर एक खास यूएसपी छुपी होती है, हर इंसान की अपनी एक क्रिएटिविटी होती है, अपना एक टैलेंट होता है। हर किसी में कुछ ना कुछ स्पेशल तो डेफिनेटली होता है ना। तो अगर आपके अंदर भी कुछ स्पेशल है, मैं क्या कह रहा हूँ, उसे बाहर निकालो यार, जरूरी है। सही समय पे जब तक आप सही चीज नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी यार। इससे पहले देर हो जाए, अपने टैलेंट को बाहर निकालो और जो आप करना चाहते हो वो आप डेफिनेटली करो। बड़ा अजीबोगरीब किस्सा सामने निकल के आया है। एक वीडियो सोशल मीडिया पे आजकल बहुत वायरल हो रहा है। एक शख्स है, एक जनाब है, उन्हें अंडा खाने को नहीं मिला तो वो सीधा टावर पर चढ़ गए हैं। और टावर पर चढ़ने के बाद उन्होंने जो है वहाँ पे एक अलग ही ड्रामा शुरू कर दिया, जिसके बाद जो है काफी लोग परेशान हो गए, जिसे तेज उस बंदे को उतारा गया। लेकिन उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। सोचिए, बड़ी अजीबोगरीब चीजें होती है। मतलब अगर भाई साहब आपको अंडा खाने को नहीं मिला तो आप टावर पर चढ़ के कर क्या रहे थे? वहां थोड़ी आपको अंडा मिलेगा यार। मतलब कुछ भी होता है यार। आजकल जो है ना, लोग पॉपुलैरिटी पाने के लिए क्या क्या करते हैं यार, आप सोच भी नहीं सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम ज्यादा नहीं सोचेंगे, हम अभी काम की बात करेंगे। आई मीन, आपसे एक सवाल पूछेंगे, अगर आप इसका जवाब देंगे तो आज की सुबह आप बन सकते हैं हमारे शो के लकी विनर, है ना। कैसे बनेंगे लकी विनर, जानना है आपको? चलिए अभी बताता हूँ, मैं फटाफट बताता हूँ।
1: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं। नामुमकिन, नामुमकिन, नामुमकिन।
2: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
0: लेजेंडरी किशोर दा का तो आज हम सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ एक और बॉलीवुड के बहुत ही कमाल के भाईजान का बर्थडे होता है।
3: एक धड़कन तुझको पहचान।
0: कौन सा गाना है ये, अब आपको आइडेंटिफाई करना है। बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है और इस गाने में ये हीरो भी नजर आए हैं। मैं किन की बात कर रहा हूँ, अगर आप पहचान रहे हैं कौन है कमाल के एक्टर तो उनका नाम आप मुझे बताएंगे, और ये कौन सा गाना है ये भी आप मुझे बताएंगे। बीच का पार्ट प्ले कर रहा हूँ गाने।

0: चलो जी, मैसेज करो आप मुझे 9837896896 पे, व्हाट्सएप करके आप मुझे बताओ अभी जो आप गाना सुन रहे हो वो कौन सा गाना है, हर एक कौन से एक्टर के ऊपर फिल्म आया है,
1: को पहचानती है मेरी चाहत है अब क्या तू नहीं जानती है।
0: बहुत ही प्यारा ट्रैक है, अगर आप पहचान चुके हैं इस गाने को तो आपको क्या करना है, सिंपल से काम करना है, उठाना है अपना फोन, टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना राइट आंसर सेंड करना है मेरे व्हाट्सएप पर 9837896896 पे। अगेन रिपीट कर रहा हूँ आज की मॉर्निंग सवाल,
1: हर एक धड़कन तुझको पहचानती है मेरी चाहत है अब क्या तू नहीं जानती है।
0: कौन सा गाना है ये आपने मेरे को जल्दी से बताना है, और आज ये कमाल के जो इसमें एक्टर हैं इनका बर्थडे होता है, अगर आप पहचान गए हैं इनको तो बस कुछ मत करो, अब जल्दी से मुझे मैसेज कर दो, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके बढ़िया बढ़िया मैसेजेस का। फिलहाल एक बढ़िया सा गाना आपके रेडियो पर निकाल रहा हूँ आज की सुबह, इस गाने को सुनते हैं और इसी गाने के साथ जो है आगे बढ़ते हैं सुनते हुए, और आपको कहते हैं वेरी गुड मॉर्निंग। यार एक चीज बतानी भूल, फल एक चीज बता आया हूँ कि सुबह के 10 बज चुके हैं, अपनी घड़ियां मिला लो भाई साहब, ये बताना भी बहुत जरूरी है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और ऐसे में जो है आपको सही अपडेट ना मिले ऐसे कैसे हो सकता है। तो भैया टाइम चेक में मैं आपको टाइम बता रहा हूँ, सुबह के 10:01 हो गए हैं।
2: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग,
3: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
4: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
5: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना, आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
4: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
6: आवश्यक सूचना 400 KV बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास UP कॉरपोरेशन के मझोला 400 KV उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
7: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
8: अब क्या तोड़ दिया नालायक, सॉरी
9: का नालायक बेटा।
10: हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, क्या हाल चाल।
2: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

गिप्पी गरेवाल बीप राग की आवाज। एक बढ़िया गाना भी आपने सुन लिया ट्यूजडे की सुबह में आनंद के साथ। सुन रहे हैं आपका मॉर्निंग मैगजीन शो, जहां बातें होती हैं ढेर सारी मेरी आपकी दिल से दिल तक, एंड ढेर सारे लिसनर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज के मॉर्निंग मैगजीन शो पे। थैंक यू वेरी मच। सच में यार बहुत प्यारे प्यारे, एक तो आप लोग मैसेज इतने अच्छे करते हो कि सुनकर जो है दिल झूम उठता है। इतने अच्छे अच्छे मैसेज आप लोग पहुंचाते हो तो मुझे यकीन हो जाता है कि भैया हमारे मुरादाबादी सच में मतलब दिल से यू नो करते हैं यार हमें प्यार। ऐसी बात नहीं है, इतने प्यारे प्यारे मैसेज हर कोई तो नहीं पहुंचाता यार। आप लोग इतने प्यारे मैसेज करते हैं, इतने सारे आप लोगों ने अभी भी मैसेज कर दिए हैं यार, अनबिलीवेबल। इतने सुंदर सुंदर व्हाट्सएप करने के लिए मैं आपका दिल से थैंक यू करना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। 10:07 हो रहे हैं, आज बहुत ही कमाल के एक्टर का बर्थडे होता है। कौन सा

0: होती है।
1: ये गाना कौन सा था और इस गाने में एक्टर कौन थे ये आपको बताना था। बहुत ही अच्छे मैसेज किए हैं आपने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। यार सच में आप लोग ना मजा कर देते हो। आने वाले एक और गाना इसी गाने के साथ मिलूंगा, अब आपसे जाने की इजाजत। निकिता गांधी साथ में दीव नेगी, जरा सी दिल में सुनेंगे इसे आप, एक ब्रांड न्यू ट्रैक है। जो भी बोलो यार, पुराने गानों की तो बात ही अलग होती है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आप लोगों ने जो मैसेज किए हैं उसमें से कोई एक लकी विनर को शॉर्टलिस्ट करेंगे। 10:08 हो गए हैं। थैंक यू सो मच यार मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत सारे मैसेज आए हैं, अनबिलीवेबल है। किसको शॉर्टलिस्ट करूं ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, एवरी मॉर्निंग इतने सारे मैसेज। चलो आपके मैसेज को शॉर्टलिस्ट करने से पहले ना एक काम करते हैं, ये तो हम रैंडमाइजर पे छोड़ते हैं कौन आज सिलेक्ट होगा। उससे पहले मैं आपको अजय देवगन के बारे में बता देता हूँ। जो अजय देवगन फैंस हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। जी हाँ, टीवी की दुनिया में छाने को तैयार हैं अपने अजय साहब, क्राइम शो के होस्ट बनने वाले हैं। एग्जैक्टली एक बॉलीवुड से अपडेट आ रही है बहुत ही कड़क। अजय देवगन साहब बॉलीवुड एक्टर टेलीविजन पर एक क्राइम शो जो है होस्ट करते हुए नजर आएंगे, जिसकी शूटिंग जल्दी शुरू होने वाली है, एंड उम्मीद की जा रही है कि इसमें अजय पाजी कुछ अलग लेवल पे नजर आने वाले। इन दिनों अजय देवगन वैसे भी सुर्खियों में है, धमाल फोर को लेकर काफी यू नो चर्चा में है। आपको पता है कॉमेडी एंड थ्रिल जैसी एक्शन रोमांस सारी फिल्में जो अजय ने की हैं यार, एंड अजय भाई माइंड ब्लोइंग एक्टर यार। अब वो जो है एक नए क्राइम शो होस्ट जो है करते हुए नजर आएंगे, तो मैं ये देखने के लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ यार। रिसेंटली मैंने अक्षय कुमार का भी एक शो देखा है जिसमें वो होस्ट बने हैं, एंड ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं जिनको अब हम एज अ होस्ट देखते हैं और बहुत अच्छा लगता है यार। चलो कभी कभी लगता है कि भैया मेरा काम भी जो है अब एक्टर भी ले रहे हैं यार, हम भी तो होस्ट हैं आपके। 10:10 चलो अभी बात कर लेते हैं आज के विनर की। तो बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिए हैं और आपने से कोई एक विनर है जिसको शॉर्टलिस्ट करना तो बनता है आज की सुबह, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। ये मेरे पास सबसे पहले किसका मैसेज आया है बता दें आपको हम बता देते हैं जी बिल्कुल बता देते हैं, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है और ये गाना बहुत बढ़िया है और इन्होंने जवाब भी सही दिया है। ये मेरे पास मैसेज पहुंचा है, गुड मॉर्निंग अनुज शर्मा नवीन नगर से बात कर रहा हूं। गुड मॉर्निंग सर, थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी, ये गाने के बोल हैं और इस गाने में जो है अरबाज खान साहब नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, थैंक यू सो मच ये बताने के लिए, लेकिन इन्होंने अरबाज खान लिखा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है बॉस। एक मैसेज और मेरे पास पहुंचा है, हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है आपके। वेरी गुड मॉर्निंग जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हाल चाल है। मैं मेरे तो हाल चाल अच्छे हैं और इन्होंने मुझे जवाब दिया है, हाय गुड मॉर्निंग कैसे हाल चाल है आनंद जी। वेरी गुड मॉर्निंग, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, एंड इन्होंने भी जवाब मेरे को सही सही दिया है। अच्छा जरा इनका वॉइस नोट भी सुन लेते हैं, ये क्या कह रहे हैं इनसे भी जरा जान लेते हैं सही जवाब।
2: अरे भाई गुड मॉर्निंग, मूवी का नाम है मैंने दिल तुझको दिया और सॉन्ग है थोड़ा सा प्यार हुआ थोड़ा सा प्यार है बाकी, एक्टर हैं सोहेल खान एंड समीरा रेड्डी।
1: हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, चलिए जोरदार तालियां हो जाएं भाई साहब आप लोगों के लिए। अनुज जी आपको भी कांग्रेचुलेशन, वैसे आपने ही पहले जवाब दिया है, नवीन नगर से आप जुड़े थे, बहुत बहुत बधाइयां आपको, थैंक यू सो मच हमारे साथ आप जुड़े आज की सुबह।
3: राधे राधे आनंद जी, आनंद जी जो म्यूजिक चला रहे हैं उस गाने के बोल है, हमने दिल दे ही दिया अब बस तेरी हाँ है बाकी, और ये गाना सोहेल खान जी के ऊपर फिल्माया गया है।
1: क्या बात है,
3: बहुत और बहुत आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चल रहा है, सुबह सुबह सुनकर आनंद जी के साथ सुनकर आनंद आ जाता है, धन्यवाद।
1: क्या बात है, आपको भी धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और वैसे आज सुहेल खान का तो नहीं, आज अरबाज खान जी का बर्थडे होता है, ये मैं आपको फटाफट क्लियर कर देता हूँ। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।
4: सुहेल खान भाई, सुहेल खान ही बोला है मैंने भी, क्या हो गया।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपने सुहेल खान ही बोला है भाई, बिल्कुल आपने सुहेल खान ही बोला है, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहा था क्योंकि आज बर्थडे अरबाज खान का है, वो इसीलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। एनीवे आपने बिल्कुल सही बोला है यार, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं यार, आप नवीन नगर से मेरे साथ जुड़े हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पाजी खुश हो जाओ, ताली आपके लिए। ये वॉइस नोट जब आपने भेजा ना थोड़ी देर पहले भेज देते तो और मजा आ जाता, यही तो बात होती है ना, आप लोग देखो वॉइस नोट तो भेजना चाहते हो लेकिन आप भेजते नहीं हो। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। हाय गुड मॉर्निंग आनंद, कैसे हाल चाल है। ललिता कश्यप नवीन नगर से जुड़ गई हैं, कैसे हाल चाल है, आज मौसम बहुत औसम है, गाने बहुत अच्छे प्ले कर रहे हैं आप, थैंक यू सो मच इतने अच्छे गाने बजाने के लिए। थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मुझे मैसेज आ रहा है, ये अनुज जी लिख रहे हैं हमारे साथ में गाड़ी में हम घूम रहे हैं, कुणाल शर्मा और साथ में नेहा शर्मा, पंकज शर्मा, इन्होंने नाम शामिल किए हैं और साथ में लिखते हैं लव यू भाई। थैंक यू सो मच, आपने जिसको भी लव यू बोला है आई होप वहां तक पहुंच गए हो। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। डॉक्टर सुरेश मेरे साथ जुड़े थे सही जवाब के साथ। ये मेरे पास मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से अर्शाद हुसैन अंसारी जी का मैसेज आ रहा है, साथ में डॉक्टर शहीद शारिक अली लिखते हैं, आनंद जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और आपका शो अच्छा लगता है जी, शुक्रिया साहब। हाय हेलो मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, आदाब, कैसे हालचाल है? गुड मॉर्निंग, बहुत ही बढ़िया हालचाल है हमारे यार। नमस्ते आनंद जी, कैसे हालचाल हैं? बहुत ही बढ़िया, आई एम वेरी ग्रेट, आई एम वेरी गुड, थैंक यू सो मच। रवि चौहान जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं आज की सुबह राइट आंसर के साथ, एंड रवि जी आपने फर्स्ट टाइम मैसेज किया है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी आज की सुबह। नंबर की 4 डिजिट है 6920, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हेलो हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल हैं? थोड़ा सा प्यार हुआ है बस तेरी हाँ है बाकी, वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? लक्ष्मी जी मैं बढ़िया हूँ। गुड मॉर्निंग आनंद, कैसे हालचाल हैं? कंग्रेचुलेशन जी, ये अवार्ड के लिए कंग्रेचुलेशन बोल रही हूँ, थैंक यू सो मच। भूपी जी मेरे साथ जुड़े हैं सही जवाब के साथ। गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल हैं? इनका नाम तो नहीं लिखा, इन्होंने जो भेजा था वो भी डिलीट कर दिया, भाई मुझे मारो। हर हर महादेव, क्या हालचाल है? बबलू मुंबई महाराष्ट्र से जुड़े हैं मेरे साथ, सही जवाब पहुंचा रहे हैं मेरे पास रिजवान खान साहब ग्राम बीजना से। यशपाल जी मेरे साथ यमुनानगर हरियाणा से जुड़े हैं आज की सुबह, इनके शहर में बारिश हो रही है झमाझम। राधे राधे जिला मुरादाबाद बस्तूर से आकांक्षा सैनी हमारे साथ जुड़ी हैं, गुड मॉर्निंग पहुंचाती हैं। ये चमनलाल साहब जुड़ चुके हैं पुतलीघर रोड से, मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल जुड़े थे, एंड इसके अलावा सहारनपुर से जून रोजी पलविलीज मेरे साथ जुड़े थे आज की सुबह, हमारे रेगुलर लिसनर। राजा कर्षप मेरे साथ जुड़े थे, विजय ब्यूटी सेंटर से भरत नागपाल जुड़े थे, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग। इतने मैसेज अभी भी आ रहे हैं कि मैं शायद पढ़ने बैठूंगा तो मेरा टाइम सच में चला जाएगा यार, बाकी कोई नाराज नहीं होने का, ठीक है जी। जोरदार तालियां आप सभी के लिए बजा के जा रहा हूं यार, यहां पे आप टेंशन मत लो। 10:15 हो गए हैं, थैंक यू सो मच, ऑल द

बेस्ट जो लोग मेरे साथ जुड़े, गौरव टेलर जी नवीन नगर से जुड़ गए हैं, जल्दी जल्दी भागते दौड़ते इन्होंने भी मैसेज पहुंचा ही दिया है कि कहीं छूट ना जाए। हाँ, आजकल नवीन नगर वाले तो बहुत लेट मैसेज कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मोहसिन जी, मैं आपका मैसेज भी पढ़ चुका हूँ, आप बनारस से जुड़े थे, शायद कुछ मिस हुआ होगा। गुड मॉर्निंग आनंद भाई, एफएम मुरादाबाद पे जुड़ गया हूँ। आपके दोस्तों को धन्यवाद कहना चाहूंगा, और आप जो अवार्ड जीत रहे हैं, ऐसी अवार्ड जीतते रहें, आगे बढ़ते रहें, हमारी यही मंगल कामनाएं आपके साथ हैं। मोहसिन अंसारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बनारस से जी, शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू सो मच। चलिए गाइस, लवली टॉकिंग टू यू, कल मिलते हैं सुबह वेंसडे मॉर्निंग में। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, आप जहां भी जा रहे हैं विश यू ऑल द बेस्ट, आप चाहे दोस्तों के साथ हो या फिर आप अपने फैमिली के साथ हो, ऐसे एंजॉय करते रहिए। और मंगलवार का दिन था, जय श्री राम बोलते हुए आपको बोलेंगे अभी यहां से हम साइनिंग ऑफ, बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड वंडरफुल मॉर्निंग, बाय।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
2: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
3: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
3: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
1: मुरादाबाद
2: से संपर्क कीजिए।
3: नियम और शर्तें लागू।
4: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं। नामुमकिन, नामुमकिन, नामुमकिन।
1: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

0: गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या बात है। सुबह सुबह लहंगे की डिमांड हो रही है मैडम जी। हाँ जी, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और शो शुरू हो चुका है आप सभी का फेवरेट मॉर्निंग मसाला। और दोस्तों, अभी आपने ये अमेजिंग ट्रैक एंजॉय किया फ्रॉम द मूवी सत्यमेव जयते 2 से, एंड अब खुशी भी आ गई है आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर। एवरीवन, टाइम हुआ है अभी 10:23 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में। गुड मॉर्निंग माय डियर लिसनर्स, कहते हैं ना कि सूरज की हर किरण अपने साथ एक न्यू होप लेकर आती है। बीता हुआ कल चाहे जैसा भी हो रहा हो, लेकिन टुडे इज ए न्यू डे, एक नई शुरुआत करने का मौका है। इसीलिए अपने चेहरे पर ब्यूटीफुल स्माइल रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए और खुद पर बिलीव कीजिए, क्योंकि आपकी मेहनत और पॉजिटिविटी, पॉजिटिव सोच एक दिन आपकी सक्सेस स्टोरी जरूर लिखेगी। तो आज का दिन हो हैप्पी, पॉजिटिव और फुल ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने दिन को बेस्ट डे बनाने की कोशिश कीजिए। हैव अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ आपके साथ आपकी खुशी। और आज क्या कुछ स्पेशल है सब आपको पता लगेगा ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा है, एंड जब मैं आ रही थी तो बादलों, काले काले बादल मुझे नजर आ रहे हैं आसमान में। और देखिए दोस्तों, वक्त 10:25 हो गए हैं, लेकिन बाहर का जो मौसम है ना, उसको देख के लग नहीं रहा है कि 10 बज चुके हैं, 10:25 हो गए हैं। ऐसा लग रहा है अभी कि अरे अभी तो 8 ही बजे हैं। मतलब धूप नहीं है ना आज, और हल्की हवाएं भी चल रही हैं। बाकी दोस्तों, आप मुझे कहाँ से सुन रहे हैं, कौन से सिटी से सुन रहे हैं, एंड आपके शहर का मौसम कैसा है, फटाफट से मुझे मैसेज करके बताइएगा। मैं इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि मुरादाबाद के हमारे लिसनर तो सुन ही रहे हैं, लेकिन मुरादाबाद से बाहर भी बहुत सारे हमारे लिसनर्स हैं जो हमें सुन रहे हैं अलग अलग स्टेट में। तो बताइएगा अपनी सिटी का हाल कैसा है, आपके यहाँ का मौसम। तो एक शानदार सा ट्रैक सुनवाते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ एड ब्रेक का भी टाइम हो गया। एड ब्रेक के बाद म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद खुशी आने वाली है, करने वाली है आपसे बहुत सारी गपशप, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आई हूँ। तो बस आप यूं ही चिपके रहिए ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। गुड मॉर्निंग माय डियर लिसनर्स।
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना, आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

वादे दोस्तों, सुबह सुबह देखिए इतना खूबसूरत गाना हमने आप सभी के लिए प्ले किया फ्रॉम द मूवी अंदाज जो 1971 में आई थी और किशोर कुमार जी की खूबसूरत सी आवाज में प्यारा से गाना सुना। और वाकई दोस्तों क्या खूबसूरत गीत है ना कि जिंदगी एक सफर है सुहाना। और सच कहें दोस्तों, जिंदगी वाकई में एक सफर ही होता है। यहाँ अगले पल क्या होने वाला है किसी को नहीं पता होता है, तो क्यों ना जो पल आज हमारे पास है उसे खुलकर जिया जाए, अपने अपनों के साथ मुस्कुराया जाए, छोटी छोटी खुशियों को महसूस किया जाए और हर पल के लिए शुक्रिया कहा जाए। कल की चिंता में आज की खुशी मत खोइए, क्योंकि जिंदगी की खूबसूरती इसी आज में छिपी है। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने हर पल को खूबसूरती से खूबसूरत बनाते रहिए एंड खूबसूरती के साथ जीते रहिए। और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। शो का नाम तो आपको मालूम ही है, मॉर्निंग मसाला, और मेरा नाम भी आपको पता है ना। ओहो, भूल जाते हो आप। अरे, आपके चेहरे पर तो रहती है वो खुशी, वही मेरा नाम है और जो हर किसी की जुबान पे होता है कि क्या बात है यार, कोई मुस्कुराता हुआ नजर आ जाए। ओहो, आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हो, कोई तो बात है, हमें भी बता दीजिएगा। तो चीजें होती हैं और खुशी का काम है आपको खुशियाँ बांटना, आप सबके साथ खुशियाँ शेयर करना। एंड एवरीवन, यहाँ पर वक्त हुआ है 10:37 और आपके खूबसूरत मैसेज भी आ गए हैं, मैं उनको भी शामिल करूंगी। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले मैसेज आया है नवीन नगर मुरादाबाद से गौरव टेलर जी का। कहते हैं, नमस्कार खुशी जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ सर, कार्यक्रम आपका बहुत ही अच्छा होता है एंड इन्फॉर्मेशन भी अमेजिंग होती है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये भी एक प्यारा सा गाना सुनना चाहते हैं किशोर दास जी की आवाज में, हंसते हंसते रोना सीखो, रोते रोते हंसना सीखो, बहुत प्यारा गाना है। और इन्होंने बड़ी खूबसूरत सा थॉट आज की मॉर्निंग शेयर किया है हमारे साथ कि किसी के लिए कुछ शब्द बोलने से अच्छा है निशब्द होना चाहिए। मतलब अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो अन्यथा उनको गलत भी ना बोलें। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट मैसेज आया है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का। साथ में ये मैसेज उनके फ्रेंड्स भी हैं, शहीद शारिक अली जी, महराज अंसारी जी, बाबू अंसारी जी। कहते हैं, गुड मॉर्निंग खुशी जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर, आपका शो मॉर्निंग मसाला सुनते हैं, बहुत ही पसंद आता है। उसके साथ साथ आपके शो के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां भी मिलती हैं। एंड मैम, एक गीत हमें सुनवा दीजिएगा, चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर के देखो ना। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, कहते हैं, आरजे जी आपको हमारा आदाब, आपको भी आदाब सर। ये मैसेज पहुँचाते हैं राशिद हुसैन अंसारी जी, कुरावली से ये मैसेज हमारे पास आया है। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है बबली अंजान जी का, गीता कश्यप जी का, लक्ष्मी कश्यप जी का, संतोष कश्यप जी का, हेलो गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। एंड एक मैसेज और हमारे पास यहाँ पर पहुंचा है मुंबई महाराष्ट्र से, हर हर महादेव खुशी जी, हर हर महादेव आपको भी, जय श्री राम, क्या हाल है आपके? बहुत अच्छे हैं, हम तो एवरी डे की तरह अच्छे होते हैं। ट्यूसडे की मॉर्निंग है आज और 4 अगस्त है आज। देखिए दोस्तों, अगस्त का चौथा दिन भी आज हो गया है और साल का 8वां महीना मतलब लग चुका है आज, 4 डे है, पता नहीं चल रहा है ना कितने मतलब कितनी जल्दी 8वां महीना आ गया है साल का। वक्त गुजरता रहता है, इसीलिए एवरीवन जो आपको करना है, जो भी आप लाइफ में चाहते हैं कि मेरा ये ड्रीम है, मुझे ये अचीव करना है, तो उसके लिए अभी से मेहनत करो, कल पर मत टालिएगा, क्योंकि सच बताएं ना कल कभी आता ही नहीं है। तो शुरुआत आज से ही करनी है आपको, अभी से ही करनी है। उसके अलावा ये कहते हैं हमें कि बबलू जी ने क्या लिखा है, जरा इनके बातें हम आप तक पहुंचा देते हैं।
एंड ये कहते हैं आज अरबाज खान जी का बर्थडे है तो हमें उन्हीं का एक सॉन्ग सुनवा दीजिएगा। ओके ठीक है सर, बिल्कुल सुनवाएंगे। आज अरबाज खान जी का बर्थडे है, सलमान जी के भाई हैं और खान साहब की तो बात ही अलग है क्यों दोस्तों। तो चलो सुनते हैं कुछ खूबसूरत गीत और लौट कर आते हैं, फिर करेंगे आपसे बहुत सारी बातें और किशोरदास जी की कुछ खास बातें हैं जो आप तक पहुंचानी है, क्योंकि ऐसा होता है ना दोस्तों कि कुछ बातें होती हैं जो हमें नहीं पता होता है, लेकिन हमें जब हम उनके बारे में जानते हैं तो बहुत सी चीज़ें हमें पता चलती है उनके बारे में। तो आज कुछ ऐसी ही चुनिंदा बातें हैं, कुछ खूबसूरत बातें हैं किशोरदास जी की, तो मैं आप तक साझा करूंगी। लेकिन उससे पहले कुछ खूबसूरत गीत आप सुनिएगा ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और मुझे पता है कि हमारे श्रोता थोड़ा सा काम में व्यस्त है, कुछ आराम से बैठकर रेडियो सुन रहे हैं, तो कुछ जल्दी जल्दी से चलिए काम फिनिश कर लेते हैं। पर आराम से हम क्या करेंगे, क्या करने वाले हो आप? हाँ, फिर नेक्स्ट लंच की तैयारी भी करनी पड़ती है कि आज खाने में क्या बनेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन आपको मुस्कुराकर उन जिम्मेदारियों को कंप्लीट करना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, चलो सुनो ये शानदार से गाना किशोरदास की आवाज़ में।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

कुछ फुर्सत का स्वाद भी चख लो, अब सिर्फ 50 रुपए में। वाह। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी का, वंस अगेन वेलकम बैक। आरजे खुशी करती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों, वक्त हुआ है 10:52 और अभी आपने ये शानदार सा गाना सुना। इस ब्यूटीफुल ट्रैक की रिक्वेस्ट हमें भेजी थी इरशाद हुसैन अंसारी जी ने मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से। और दोस्तों, हम आपको बता देते हैं किशोर दास जी के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों, आज 4 अगस्त है और आज हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के उस महान फनकार को जिनकी आवाज़ में मस्ती भी थी, शरारत भी थी, रोमांस भी था और दर्द भी था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे प्यारे किशोर दा यानी किशोर कुमार जी के। आज उनकी जयंती है और उन्हें हम दिल से नमन करते हैं। एवरीवन, किशोर दा सिर्फ एक महान प्लेबैक सिंगर ही नहीं थे बल्कि बेहतरीन अभिनेता, संगीतकार, निर्देशक और निर्माता भी थे। और दोस्तों, उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से ऐसे भी हैं जो शायद हर श्रोता को ना पता हो। दोस्तों, किशोर दा को एकांत बहुत पसंद था। कहा जाता है कि वह अपने घर के पेड़ पौधों से भी इंसानों की तरह बातें किया करते थे और उन्हें अपने कई पेड़ों के नाम तक रखे हुए थे। प्रकृति के साथ उनका ये रिश्ता वाकई बड़ा अनोखा था। एंड दूसरा किस्सा था उनके खड़वा प्रेम से जुड़ा हुआ। जी हाँ, उनका खड़वा उनका जन्म स्थान था और उनसे उन्हें बेहद लगाव था। मुंबई की भागदौड़ से जब भी उनका मन परेशान होता था तो उनका जो मन था वो अपने गांव की ओर, उनका जो खिंचाव था अपने गांव की तरफ ज़्यादा था लगाव। उन्होंने कई मौक़ों पर अपने खड़वा प्रेम को खुलकर जाहिर भी किया। और अब एक मज़ेदार बात, किशोर दा के घर के दरवाजे पर एक बोर्ड लगा होने की बात कही जाती है

दोस्तों बिफोर यू स्पीक नाउ दैट आई एम बिजी, ये बोलने से पहले याद रखना कि मैं पागल हूँ. ये उनकी मतलब घर के बाहर नेम प्लेट थी और ये यही तो किशोर दा जी की पर्सनैलिटी थी. उन्होंने अपने ही अंदाज में जीना, अपनी ही धुन में रहना और किसी की परवाह किए बिना जिंदगी को अपने तरीके से जीना. और सबसे खास बात, किशोर कुमार जी ने संगीत की कोई औपचारिक ट्रेनिंग नहीं ली थी, फिर भी उनकी आवाज़ ने भारतीय संगीत की दुनिया में ऐसी पहचान बनाई कि जिसे आज भी कोई भुला नहीं सकता. उनकी आवाज़ में हमें आज भी उनकी आवाज़ हमें आज भी ये सिखाती है कि अपने अंदर की प्रतिभा पर भरोसा रखिए, क्योंकि हुनर को हमेशा किसी

कॉम्प्लीमेंट की जरूरत नहीं होती है. लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए. एवरीवन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं रखेंगे, अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं रखेंगे, तब तक आप ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे. तो इसीलिए बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पर भरोसा रखिए, अपनी प्रतिभा को जानिए और मेहनत कीजिए. जो आप करना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा. तो अभी और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप तक मुझे पहुंचानी है, लेकिन उससे पहले कुछ गीत भी हैं जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं. तो सुनवा देते हैं, बिना किसी देरी के लौट कर आएंगे और आपकी जो संदेश हैं उनको भी हम शामिल करेंगे. तो बस आप यूं ही बने रहिए, मुस्कुराते रहिए और बताइएगा कैसा लग रहा है आपको हमारा कार्यक्रम. क्योंकि देखिए बीच बीच में ना हमें भी तो मोटिवेशन चाहिए ना. एक्चुअली पॉजिटिव जब कॉम्प्लीमेंट हमें मिलते हैं तो हमारा उत्साह और ज़्यादा बढ़ जाता है. तो फटाफट से बताइएगा कि कैसा लग रहा है खुशी का शो आपको. नंबर हमारा है 9837896896. और हमें एक गाने की रिक्वेस्ट की थी बबलू सैनी जी ने मुंबई महाराष्ट्र से. तो चलिए सुनते हैं, आज अरबाज खान जी का बर्थडे है. तो आप कोई ट्रैक सुनना चाहते हैं उन्हीं पर फिल्माया गया तो मुझे ज़रूर बताइएगा. एंड आप अपना मैसेज पहुंचा दीजिएगा. हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896. और सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत, फिर करेंगे आपसे ढेर सारी बातें. आप कहीं मजा आएगा, यूं ही मुस्कुराइएगा.

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: क्या बात है दोस्तों, अब तो बहुत सारे डांस कर लिए हैं आपने। आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो, थोड़ा सा आराम से बैठ जाओ यार। आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने ये प्यारा सा ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी बादल से, एंड इस गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी थी उमेश कुमार प्रजापति जी ने लोधीपुर मुरादाबाद से। तो मैंने कहा चलिए सुनवा देते हैं अपने प्यारे से श्रोताओं की रिक्वेस्ट पर कुछ चुनिंदा गीत। और ये गाने ऐसे हैं एवरीवन कि जो इंसान ना डांस करना चाहे ना वो भी करने लगता है। और वक्त हुआ है 11:07। और दोस्तों अब एक ऐसी खबर जिसने इंसान और जानवर के बीच की वफादारी की मिसाल पेश कर दी है, एंड उत्तर प्रदेश के बलिया से सामने आई इस खबर ने बताया जा रहा है कि टॉमी नाम के एक पालतू डॉगी ने अपने परिवार को जहरीले सांप से बचाने के लिए उससे करीब एक घंटे तक मुकाबला किया। टॉमी ने आखिरकार सांप को मार गिराया और अपने परिवार को सुरक्षित कर दिया, लेकिन इस बहादुरी की कीमत टॉमी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। जहरीले सांप के डसने के बाद टॉमी की भी मौत हो गई, एंड टॉमी की वफादारी और बहादुरी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। एंड दोस्तों सच ही कहा जाता है कि जानवर बोल नहीं सकते, लेकिन उनका प्यार और वफादारी कई बार शब्दों से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। सलाम है उस टॉमी को कि उसने जहरीले सांप से वो लड़ा ताकि वो अंदर ना आ जाए, क्योंकि पूरा परिवार रात के समय सो रहा था और वो जहरीला सांप उस दरवाजे के बाहर से अंदर आने का प्रयास कर रहा था, लेकिन टॉमी उसी मेन डोर पर बैठा हुआ था और उसने उसको मार दिया। और दोस्तों इस कहानी में हमें एक खूबसूरत सीख भी मिलती है इस कहानी से कि जानवर बोल नहीं सकते, लेकिन वो प्यार अपनापन और वफादारी महसूस करते हैं। इसीलिए आइए हम भी अपने आसपास के हर जीव जंतु के प्रति दया और प्रेम रखें, क्योंकि इंसानियत सिर्फ इंसानों से प्यार करने में नहीं बल्कि बेजुबानों की कद्र करने में भी है। टॉमी की बहादुरी को सलाम और हर उस बेजुबान के लिए प्यार जो बिना किसी स्वार्थ के हमारा जो है वो साथ निभाते हैं, हमारा साथ देते हैं। और बहुत सारी अपडेट है जो आप तक खुशी को पहुंचानी है, एंड आपके खूबसूरत मैसेज भी आए हैं तो मैं उनको भी जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है ईदगाह मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी जी का, साथ में रईस दूर अंसारी जी भी हैं और ये कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी मैम, हाउ आर यू, आई एम गुड सर, आप बताइएगा आपके हालचाल कैसे हैं। और ये गाना सुनना चाहते हैं फ्रॉम द मूवी आए दिन बहार के। बिल्कुल सुनाएंगे सर, धन्यवाद अपना मैसेज पहुंचाने के लिए। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट मैसेज आया है जनकपुरी सहारनपुर से जोन रोजी परवली जी का, गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी जी का, साथ में इनकी पूरी फैमिली भी है जो इस समय हमें सुन रही है। नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है मुरादाबाद से रणवीर सिंह जी का और ये कहते हैं खुशी मैडम जी गुड मॉर्निंग, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग। और सर एक गाना सुनना चाहते हैं फ्रॉम द मूवी निगाहें, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया। और हमारे पास एक प्यारा सा वॉइस नोट भी आया है तो चलिए दोस्तों उसको भी सुन लेते हैं। मैम ने क्या पहुंचाया है आज की मॉर्निंग, उनकी मधुर सी आवाज आप तक पहुंचा देते हैं।
1: राधे राधे खुशी, आप कैसी हो? मैं तो बढ़िया हूँ खुशी। आज किशोर कुमार जी का बर्थडे है तो उनकी याद में ये वाला गाना सुनवा दीजिएगा, वो मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। और आपका प्रोग्राम काफी अच्छा चल रहा है, काफी अच्छे प्रेजेंटेशन है आपका, धन्यवाद।
0: मोस्ट वेलकम मैम, थैंक यू सो मच, आप अपना वॉइस नोट हमें पहुंचाती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है हमें। एंड जब सुबह सुबह आपकी आवाज़ सुनते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं अपने श्रोताओं से बोलती हूँ कि आप भी मत शर्माया करो, अपनी प्यारी सी इतनी खूबसूरत सी आवाज़ है आपकी तो क्यों आप पीछे रह जाते हैं, अपना वॉइस नोट भी पहुंचा सकते हैं एवरीवन अलका मैम की तरह, जैसे अलका मैम एवरी डे हमें कॉम्प्लीमेंट देती हैं, अपने थॉट हमारे साथ शेयर करती हैं एंड कैसा लगता है हमारा शो ये भी बताती हैं, सारी चीज़ें उनको पसंद आती हैं। एंड वैसे ही आप भी कुछ अच्छी चीज़ें आपको लगती हैं कि हमें रेडियो रेडियो पर पहुंचानी चाहिए, अपने दिल की बात, अपने थॉट, कुछ ऐसा मैसेज जो आपको लगता है कि हाँ मेरी एक मैसेज से बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, कुछ बदलाव आ सकते हैं, क्योंकि आपका एक मैसेज ना जाने कितनों की लाइफ को चेंज कर सकता है, खूबसूरत बना सकता है। तो आप पहुंचा सकते हैं अपना वॉइस नोट एंड मैसेज, आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ श्रोता हमारे ऐसे होते हैं कि वो थोड़ा शर्मा जाते हैं कि वो क्या बोले हम समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। लेकिन बातें तो वैसे बहुत कर लेते हैं, लेकिन जब कुछ रिकॉर्ड करने का समय आता है ना तो बहुत ज्यादा आप सोचते हैं, राइट ना। चलिए मैं आपकी दोस्त हूँ, कोई ऐसा डरने वरने वाली कोई बात नहीं है, आप जो चाहें वो पहुंचा सकते हैं अपना वॉइस नोट, ठीक है, जो आपके मन में है कोई बात। मोबाइल नंबर हमारा है 9837896896। तो चलिए सुनते हैं कुछ खूबसूरत गीत, उसके बाद लौट कर आते हैं, आप ही मचाइए यूं ही मुस्कुराइए।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 आरजे खुशी के साथ और वक्त में है अभी 11:22 स्टूडियो की घड़ी में राइट नाउ। और एवरीवन हमारे पास यहां पर कुछ खूबसूरत मैसेज भी आए हैं। एंड उनको तो शामिल करेंगे ही, लेकिन एक अपडेट भी है जो आप तक शेयर करनी है। दोस्तों, सावन के पावन महीने में चल रही कांवड़ यात्रा के बीच मुजफ्फरनगर से एक बेहद अनोखी और प्रेरणादायक खबर सामने आई है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर दिल्ली लौट रही महिला एक कांवड़िया को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। सूचना मिलते ही मुजफ्फरनगर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महिला को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया और अस्पताल में डॉक्टर की देखरेख में महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। दोनों बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं और उनके नाम रखे गए हैं कार्तिक और गणेश। इस पूरे मामले में पुलिस की तत्परता और मदद की हर तरफ सराहना हो रही है। और सच कहें दोस्तों, सावन के इस पावन महीने में दो नन्ही खुशियों का परिवार में आने अपने आप में एक बेहद खास है। एंड महादेव जी की कृपा इन दोनों बच्चे पर हमेशा बनी रहे और माँ बच्चे हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। हमें तो यही कामना है। और हमारे पास कुछ ब्यूटीफुल मैसेज आए हैं, उनको भी मैं क्विकली शामिल कर दूँ यहाँ पर। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, खुशी मैम गुड मॉर्निंग, राधे राधे, आपको भी राधे राधे। ये अपना मैसेज हमें पहुँचाती हैं जिला मुरादाबाद बिस्तौर से आकांक्षा सैनी। एंड कहती हैं, कैसी हैं मैम आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, काफी दिनों के बाद आज मैंने आपके शो में मैसेज किया है मैम, उसके लिए सॉरी, लेकिन हम आपका शो रेगुलर सुनते हैं। थैंक यू सो मच डियर। और सॉरी की कोई बात नहीं है, सॉरी ना बोलो बाबा हमको। आप अपना मैसेज पहुंचा देते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, मैडम जी नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ सर, आपका रेगुलर हम शो सुनते हैं। ये मैसेज हमें पहुंचाती है उमर शंकर जी, साथ में अवंतिका सिंह है, अर्चित सिंह है, रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड से अपना मैसेज पहुंचाते हैं एवरी मॉर्निंग की तरह। एंड उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग आई एम अंकित, मुरादाबाद से अंकित जी का मैसेज हमारे पास आया है और इन्होंने एक चिमा सिंगर की रिक्वेस्ट की, गाने की रिक्वेस्ट की है। बिल्कुल सर, एक ट्रैक हम आपको जरूर सुनाएंगे, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। और चलिए एवरीवन सुनते हैं कुछ ब्यूटीफुल ट्रैक, उसकी बात करेंगे आपसे भी, बहुत सारी गपशप एंड बहुत सारी बातें हैं जो आप तक पहुंचानी है। तो बस आप बने रहिए, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपने हर दिन को खुशी खुशी एंजॉय करते रहिए।

0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।
3: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 आरजे खुशी के साथ। और अभी आपने सुना राइट हियर एक ब्यूटीफुल ट्रैक करण औजला की खूबसूरत सी आवाज। और ये गाना बहुत सारे श्रोताओं को हमारी पसंद है, तो मैंने कहा चलिए अपने जो ब्यूटीफुल लिसनर्स हैं उनकी चॉइस का भी कुछ ट्रैक प्ले किए जाए। दोस्तों, बात एक ऐसी पहल की है जो हमारे ज्ञान और संस्कृति की समृद्धि परंपरा से जुड़ी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए निरंतर प्रयास, समर्पण और ज्ञान के महत्व पर जोर दिया है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि लगातार अभ्यास से प्रतिभा निखरती है और भारत के युवा इन्हीं मूल्यों को अपनाकर दुनिया में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने भगवद गीता के एक श्लोक का भी उल्लेख किया जिसमें ज्ञान को सबसे पवित्र बताया गया है। और इसी संदेश में खूबसूरत बात हम भी सीख सकते हैं दोस्तों, इस ब्यूटीफुल संदेश से कि किसी भी क्षेत्र में सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। लगातार सीखना, मेहनत करना और अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहना ही हमें आगे बढ़ाता है। तो दोस्तों, अभ्यास करते रहिए, सीखते रहिए और अपने कर्म पर विश्वास रखिए, क्योंकि ज्ञान और मेहनत दोनों कभी व्यर्थ नहीं जाती है। एंड हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज भी आए हैं, तो मैं उनको भी क्विकली शामिल कर लेती हूँ क्योंकि वो भी इंतज़ार कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि हमारे श्रोताओं को हम और इंतज़ार कराएं। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है नीलाक्षी का और ये मैसेज पहुँचाती हैं अपना पीतल नगरी से। कहती हैं गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग डियर। कहती हैं आज मंगला गौरी का भी व्रत है मैम, आज से स्टार्ट हुआ है सावन के महीने में माँ मंगला गौरी के भी व्रत रखे जाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आपने बताया, इन्फॉर्मेशन दिए, मुझे लगता है कि आपने भी रखा है। आपको भी मंगला गौरी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं एवरीवन। एंड अभी यहाँ पर और भी मैसेज आए हैं तो उनको भी मैं जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। पता है आपको, इतनी सारी बातें होती हैं, इतने सारे मैसेज होते हैं एंड मेरा मन करता है कि मैं सभी को एक बारी में पढ़ लूँ, पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि आपके ट्रैक भी प्ले करने होते हैं, सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। और हमारे पास नेक्स्ट मैसेज आया है, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग सर, मैं बहुत अच्छी हूँ। और ये अपना मैसेज पहुँचाते हैं जिला मुरादाबाद ग्राम बीजना से रिजवान खान जी, साथ में उस्मान खान जी हैं, दीपक हैं। नेक्स्ट उसके अलावा हमारे पास मैसेज आया है यहाँ पर रानी नांगल से रिहाना जी का, एंड ये कहती हैं गुड मॉर्निंग मैम, कैसी हैं आप?

वेरी गुड मॉर्निंग. मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ. और उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास आया है. खुशी मैम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बिंदास मॉर्निंग में आपका वेलकम है. थैंक यू. वैसे मॉर्निंग मसाला है शो का नाम, बिंदास नहीं है, बट हाँ ये बोल रहे हैं कि आपका शो बिंदास चल रहा है. ओके, फिर ठीक है, क्योंकि बिंदास मॉर्निंग टू आरजे आनंद करते हैं. कहती हैं कि आज किशोर दास जी की जयंती है और उन्हीं का मुझे एक ट्रैक सुनना है, मेरे महबूब कयामत होगी. अरे वाह, चलिए सुनवाएंगे इस गाने को भी. उसके अलावा ये कहती हैं कि मैम मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, सावन आया, खुशियां लाया, दिल ने फिर से गीत सुनाया, रिमझिम बूंदे प्रेम बरसाया, हर आंगन खुशियों से महकाया, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, हर जीवन सुख समृद्धि से सजा रहे. थैंक यू सो मच ललिता मैम, इतना प्यारा आपने मैसेज पहुंचाया है, इतनी खूबसूरत लाइनें, शुक्रिया. उसके अलावा हमारे पास और भी मैसेज आ रहे हैं लगातार बैक टू बैक. थैंक यू सो मच एवरीवन. मैं सभी को शामिल करूंगी. एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक है, उसको भी सुनते हैं, फिर आपसे बातचीत करेंगी.

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: कोई मिल गया,
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

क्या बात है दोस्तों, किशोर कुमार जी की आवाज में एक खूबसूरत सा गीत आपने एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और देखिए, किसी से भी कोई शिकायत मत रखिएगा, मेरा ये मानना है। और अगर किसी से शिकायत है भी ना, तो उनसे बातचीत करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है चुप रहने से अच्छा है कि बातचीत करें। और जो गिले शिकवे हैं, शिकायतें हैं, उन सब को दूर करें, क्योंकि रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं। शो का नाम है मॉर्निंग मसाला, खुशी है आपके साथ। और दोस्तों, आज 4 अगस्त है और आज ही का दिन मेवाड़ के इतिहास की एक महत्वपूर्ण शख्सियत को याद करने का दिन है। जी हाँ दोस्तों, आज राणा उदय सिंह द्वितीय जी की जयंती है। वही महान शासक जिन्होंने उदयपुर शहर के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, और जो वीर योद्धा महाराणा प्रताप जी के पिता थे, उनका जन्म 4 अगस्त 1552 को हुआ था 1522 को हुआ था सॉरी राणा उदय सिंह जी ने 1559 में उदयपुर की स्थापना की थी। आज झीलों और खूबसूरत महलों के लिए दुनिया भर में मशहूर उदयपुर उनके इसी ऐतिहासिक निर्णय की विरासत है। और दोस्तों, उनका जीवन हमें एक महत्वपूर्ण सीख देता है कि मुश्किल हालात चाहे कितने भी बड़े हों, अगर हमारे अंदर हिम्मत, समझदारी और अपने काम के प्रति लगन हो, तो हम अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं।

आज उनकी जयंती पर हम उन्हें सादर नमन करते हैं, मेवाड़ की उस गौरवशाली विरासत को नमन जिसने शौर्य, स्वाभिमान और त्याग की मिसाल कायम की। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं कुछ खूबसूरत गाने, लेकिन उससे पहले कुछ और भी मैसेज आए हैं उनको भी मैं शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, आपका कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगता है और साथ साथ जो आप जानकारियाँ भी देती हैं वो भी बहुत ही अच्छी होती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये मैसेज पहुँचाते हैं सोनू कुमार जी सेक्टर 10 बुद्धि बिहार से। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, हेलो मैम गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ,

और इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, बस गुड मॉर्निंग हमको विश किया है। एकता जी का मैसेज हमारे पास आया मंडी चौक मुरादाबाद से, और मैम ने गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है, हम पूरा प्रयास करेंगे मैम उसको सुनवाने की। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, वंस अगेन आप सब ने आज की मॉर्निंग पार्टिसिपेट किया एंड इतने प्यारे प्यारे मैसेज अपने पहुंचाए और इतना प्यार देने के लिए फिर मुरादाबाद को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। तो चलिए दोस्तों सुन लेते हैं बिना किसी देरी के एक शानदार से गाना, उसके बाद अभी लौट कर आते हैं। आपको बने रहना है एफएम मुरादाबाद 89.6 के साथ, और जो गाना हम प्ले करने वाले हैं ना वो बहुत ही प्यारा है, तो चलिए सुन लेते हैं।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

0: हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मसाला शो में आपका स्वागत है। खुशी आपके साथ है। और अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना, हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तो इनकार सजना। देखिए दोस्तों, ये जो प्यार होता है ना, बहुत खूबसूरत होता है। और मुझे लगता है कि आपस में ना हम सब देखिए प्रेम करते हैं, प्रेम से रहते हैं, तभी तो आप हम तक जो कनेक्ट हो पाते हैं और हम आपसे कनेक्ट कर पाते हैं। दिल से दिल का रिश्ता है ये, प्यार नहीं तो क्या है, क्यों? तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब मॉर्निंग मसाला से मुझे दीजिएगा जाने की इजाजत, लेकिन जाते जाते एक छोटी सी बात, दिन चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो, अपने लिए 2 मिनट जरूर निकालिए, थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा अपने लोगों से बतियाइए, और हाँ, चाय की चुस्कियों के साथ हमारी बातें याद आए ना, तो समझ लीजिएगा खुशी आप तक पहुँच गई है। जिंदगी में बड़ी खुशियों का इंतजार मत कीजिए, छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढिए, फिर मिलेंगे इसी अपनेपन प्यारी बातों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6। 3 बजे मुलाकात करने वाले हैं ना अपन, 3 से 5 करेंगे आपसे ढेर सारी बात, हेलो फरमाइश शो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एवरीवन। मुस्कुराते हुए आप सब बहुत अच्छे लगते हो, तो मुस्कुराइए, ठीक है? और सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6, और आपके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि आप सब बहुत अच्छे लिसनर हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यार करते हैं फिर मुरादाबाद से, और इतनी शिद्दत के साथ आप रेडियो सुनते हो, तो दिल से यार सलाम तो बनता है आपके लिए। चलो अभी बहुत सारी बातें कर ली है खुशी ने, ये जो लड़की है ना बहुत बातें करती है, और जब भी बात करना शुरू करती है ना, तो इसका ना मन नहीं करता है छोड़ के जाने को, मतलब आप सबको कि बाय कहे, लेकिन क्या करें एवरीवन, समय जो है वो हमें अनुमति नहीं दे रहा है कि हम आपसे और गपशप करें, लेकिन कोई बात नहीं है, आप टेंशन ना लो, मैं 3 से 5 फिर आऊंगी ना, सी यू सून, तब तक के लिए बाय बाय।
1: पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा की बैठक 2:00 PM तक और राज्यसभा 12:00 PM तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठा दिया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।
2: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही, चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन की कार्यवाही आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
1: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति रही। सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने सदन के पटल पर दस्तावेज रखे। आवासन और शहरी मामलों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
3: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जो जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं, और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
1: लोकसभा में आज बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल ये विधेयक पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्य प्रणालियों के अनुरूप बनाना है। वित्त मंत्री आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 तथा विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 भी पेश करेंगी। इस बीच राज्यसभा में आज जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस विधेयक को पेश करेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका

0: को पहला चरण और ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किए जाने को दूसरा चरण बताया। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। पुरुष सिंगल्स में भारत के तुषार सुवीर जापान के शोगो ओकावा से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। महिला डबल्स में प्रिया कोन जेंगबांग और श्रुति मिश्रा तथा पुरुष डबल्स में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय आज कोर्ट में उतरेंगे। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी और अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।
3: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। आज जिस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जुड़ी हुई है एक नन्ही सी जान की जिंदगी के पहले घंटे से। जी हाँ, ये नवजात शिशु के बारे में है, इसके इस संसार में सांस लेने के पहले घंटे के बारे में। इसमें बहुत सारे पहल शामिल हैं। बच्चे का पहली बार इस दुनिया में सांस लेना, पहला घंटा, माँ का पहला दूध, माँ और पिता का पहला स्पर्श, परिवार के सदस्यों का स्पर्श और फिर शुरुआत महीने में उसका शारीरिक और मानसिक विकास। दोस्तों, ये चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस पोषण पखवाड़े का विषय है नवजात शिशु के पहले 6 महीने में उसकी देखभाल। और इसके लिए आज हम दोनों सिहतिया भैया और टीकन भाभी को स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं। नमस्कार भैया।
4: नमस्कार आरजे खुशी, आप दोनों ने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो आज हम भी आ जाते हैं जब आप इतनी प्यार से बुला रही हैं, क्योंकि हम अभी दिल्ली से आए हैं एक सेमिनार अटेंड करके। वहाँ पूरी चर्चा इसी मुद्दे पर हो रही थी, नवजात शिशु की मृत्यु दर में कमी कैसे लाई जाए।
5: हालांकि भारत में शिशु मृत्यु दर में लगातार कमी आई है, लेकिन यह अभी भी एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती है। SRS बुलेटिन 2024 के अनुसार भारत का IMR 24%, 1000 जीवित जन्म है। इसका मतलब है कि हर 1000 जीवित जन्मे बच्चों में से लगभग 24 बच्चे अपना पहला जन्म नहीं मना पाते। यह 2023 से 1% कम हुआ है।
3: तो इस मृत्यु दर का कारण क्या है?
4: नवजात बच्चों के लिए सबसे जोखिम भरा समय के बाद का पहला महीना, खासकर पहला दिन और पहला सप्ताह होता है। हमें बताया गया है कि WHO के अनुसार अधिकतर नवजात मौत के जीवन के पहले सप्ताह में ही होती है और इनके प्रमुख कारण है समय से पहले जन्म, जन्म के समय सांस लेने में दिक्कत, संक्रमण और जन्मजात समस्याएं।
5: अक्सर लोग सोचते हैं कि बच्चा पैदा हो गया तो अब सबसे बड़ा काम हो गया, बच्चा और माँ दोनों ठीक है। लेकिन सच तो यह है कि बच्चे के जन्म के बाद का पहला घंटा उसकी पूरी जिंदगी के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में शिशु मृत्यु दर कम हुए हैं, लेकिन आज भी कई नवजात बच्चे ऐसी वजहों से अपनी जान गवा देते हैं जिन्हें सही जानकारी और समय पर देखभाल से रोका जा सकता है।
3: तो सेहतिया भैया, आप ये बताइए कि गोल्डन आवर या सुनहरा घंटा क्या है? क्या पहला घंटा ही गोल्डन आवर कहलाता है?
4: बिल्कुल सही कहा आपने आरजी खुशी, बच्चे के जन्म के बाद का पहला घंटा बहुत ही अहम है। इसी समय ये तय होता है कि बच्चा सुरक्षित रहेगा या उसे संक्रमण, ठंड लगना, सांस की दिक्कत या दूसरी परेशानियों का खतरा बढ़ जाएगा।
3: यानी यह सिर्फ एक घंटा नहीं बल्कि बच्चे के पूरे भविष्य की नींव है।
5: जी हाँ, इससे पहले घंटे में कुछ बहुत जरूरी काम किए जाते हैं, जैसे बच्चों को तुरंत माँ के सीने से लगाना, उसे गर्म रखना, सांस सही चल रही है या नहीं यह देखना और सबसे जरूरी जन्म के पहले घंटे के अंदर माँ का दूध पिलाना। माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, बच्चे का पहला टीका माना जाता है। यह बच्चे की रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाता है और उसे कई बीमारियों से बचने में मदद करता है।
4: और अच्छी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर चीजें बहुत सरल हैं, सही जानकारी, परिवार का सहयोग, आशाएं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से और समय पर स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करके ये सब मिलाकर नवजात बच्चे की जान बचा सकते हैं।
3: तो साथियों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम विस्तार से समझेंगे नवजात बच्चे की देखभाल कैसे करें, बच्चे को गर्म क्यों रखना जरूरी है, स्तनपान कब शुरू करना चाहिए, कौन कौन से खतरे के संकेत होते हैं और परिवार क्या सावधानियां रख सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ।
6: माँ का पहला गाढ़ा दूध बच्चे के लिए अनमोल होता है, ये बच्चे को निमोनिया, डायरिया जैसी बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है।
7: बिल्कुल ठीक, माँ का पहला गाढ़ा दूध अमृत समान होता है।
2: उसे बच्चे को जरूर पिलाना चाहिए, चाहे कोई कुछ भी कहे। क्यों अन्नू जी?
6: बिल्कुल, जन्म के एक घंटे के अंदर बच्चे को माँ का पहला गाढ़ा दूध पिलाना बहुत जरूरी होता है।
7: भाई साहब, 6 महीने का होने से पहले माँ के दूध के अलावा बाहर का कुछ भी खाएगा तो बहादुर नहीं मरियल सिंह ही बनेगा।
2: जन्म के बाद पहले 6 महीने तक बच्चे को माँ के दूध के अलावा और कुछ नहीं देना चाहिए।
8: अब देखो मुन्नी 7वें महीने में आ गई है, अब मुन्नी को खाना दो, ना रोए तब भी। और हाँ, अब मुन्नी को दिन में कम से कम 3 से 4 बार खाना खिलाओ।
9: जी हाँ, 7वें महीने से बच्चे को मुलायम मसले हुए अनाज, दालें, सब्जियाँ और फल थोड़ी थोड़ी मात्रा में खिलाना शुरू कर दें, दिन में 3 से 4 बार, और उसे माँ का दूध पिलाना जारी रखें।
2: और वो 4 बातें याद है ना? 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने सिर्फ स्तनपान। और 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान।
3: स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। आज हमारी अपनी टीकन देवी और सिहतिया सिंह दोनों हमें बताएंगे कि जन्म के पहले घंटे में क्या करना जरूरी है, माँ का पहला दूध क्यों इतना महत्वपूर्ण है, और परिवार नवजात बच्चे को सबसे मजबूत शुरुआत कैसे दे सकते हैं। लेकिन सिहतिया भैया, अक्सर लोग पूछते हैं कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे को कौन कौन टीके लगते हैं, क्या ये भी उतना ही जरूरी है?
4: बिल्कुल जरूरी है आरजे खुशी, जिस तरह माँ का पहला दूध बच्चे की पहली सुरक्षा है, उसी तरह जन्म के समय दिए जाने वाले टीके भी बच्चों को कई गंभीर बीमारियों से बचाने की दिशा में पहला कदम होते हैं।
5: भारत के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में जन्म के समय कुछ महत्वपूर्ण टीके मुफ्त दिए जाते हैं। इसमें BCG, हेपेटाइटिस बी की जन्म खुराक और ओरल पोलियो वैक्सीन यानी OPV की 0 खुराक शामिल है।
4: इन टीकों से बच्चों को TB, हेपेटाइटिस बी और पोलियो जैसी भी बीमारियों से सुरक्षा मिलनी शुरू होती है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि जन्म के बाद बच्चे का टीकाकरण समय पर ही करवाया जाए और उसका टीकाकरण कार्ड सुरक्षित रखा जाए।
3: यानी बच्चों की मजबूती शुरुआत के लिए 2 बातें साथ साथ जरूरी हैं। जन्म के पहले घंटे में स्तनपान और समय पर जन्म खुराक वाली टीके।
4: बिल्कुल, मैं भी यहाँ एक बात साफ करना चाहूँगा, बच्चों के दिमाग का विकास बाद में शुरू नहीं होता, बच्चा जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है। वो माँ की आवाज पहचानता है, स्पर्श महसूस करता है, दूध पीता है, सुरक्षित या असुरक्षित महसूस करता है। इसीलिए नवजात देखभाल केवल बीमारी से बचाने की बात नहीं है, ये बच्चे के दिमाग, शरीर और भावनात्मकता विकास की नींव है।
3: टीकन भाभी, बहुत से लोग सोचते हैं कि बच्चा छोटा है, उसे अभी क्या समझ आता होगा, लेकिन आप कह रही हैं कि जन्म के तुरंत बाद से ही बच्चे के विकास की शुरुआत हो जाती है।
5: बिल्कुल, बच्चा भले बोल नहीं सकता लेकिन वह महसूस करता है। माँ की छाती से लगाना, माँ की आवाज सुनना, पहला दूध पिलाना, ये सब उसके लिए सुरक्षा और जीवन की शुरुआत है। शुरुआती वर्षों में मजबूत नींव जन्म के पहले घंटे से ही पड़नी शुरू हो जाती है, इसीलिए जन्म के बाद का पहला घंटा बहुत कीमती है और इसके लिए इसे गोल्डन आवर कहते हैं।
3: तो अब बताइए कि ये गोल्डन आवर इतना जरूरी क्यों है?
4: जन्म के बाद पहले घंटे में कोशिश होनी चाहिए कि बच्चे को माँ की छाती से लगाएं और स्तनपान शुरू हो। माँ का पहला दूध बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, यह बच्चों को शुरुआती जरूरी आहार देता है, संक्रमण से बचाने में मदद करता है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। माँ के दूध में ऐसे जरूरी तत्व होते हैं जो बच्चे के दिमाग और शरीर दोनों के विकास के लिए बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण होते हैं।
5: और यहाँ एक बड़ी गलतफहमी दूर करनी जरूरी है, कई जगह पहला पीला गाढ़ा दूध देखकर लोग कहते हैं कि ये खराब है, इसे फेंक दो, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। पहला पीला दूध बच्चे के लिए अमृत जैसा है, इसे फेंकना नहीं है, यह बच्चे की पहली सुरक्षा है।
3: तो साफ संदेश, पहला पीला दूध फेंकना नहीं, बच्चों को देना है।
5: और जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू करने की कोशिश करानी है। अगर बच्चा तुरंत दूध नहीं पकड़ पा रहा है तो घबराना नहीं है, माँ भी सीख रही होती है, बच्चा भी सीख रहा होता है। नर्स, आशा दीदी, ANM या डॉक्टर से मदद ले लेनी चाहिए।
4: स्तनपान में सही पकड़, सही स्थिति और धैर्य बहुत जरूरी है। कई बार परिवार जल्दी निष्कर्ष निकाल लेता है, माँ का दूध नहीं आ रहा। शुरुआती दिनों में दूध थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन नवजात बच्चे का पेट भी छोटा होता है, इसीलिए माँ दोष देने की जगह सहयोग देना चाहिए।
3: बहुत सी घरों में जन्म के बाद बच्चों को शहद, गुटी, पानी या कोई और चीज देने की परंपरा होती है। टीकन देवी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी?
5: नवजात बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना चाहिए, जब तक डॉक्टर कोई अलग सलाह ना दे। शहद, घुट्टी, पानी या बाहर की कोई चीज बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध देना चाहिए, ना पानी, ना शहद, ना घुट्टी। माँ का दूध बच्चे के लिए पूरा भोजन है।
3: गर्मी में पानी भी नहीं?
4: पहले 6 महीनों तक माँ का दूध ही पर्याप्त होता है, जब तक डॉक्टर या किसी विशेष स्थिति में अलग सलाह न दें। माँ के दूध में पानी भी होता है और जरूरी तत्व भी होते हैं, इसीलिए अलग से पानी देने की जरूरत नहीं होती है।
3: लेकिन अगर बच्चा बार बार रोता है तो परिवार सोचता है कि बच्चा भूखा है।
5: हाँ, रोना भूख नहीं होता। बच्चा गीलापन, गर्मी, ठंड, नींद, पेट की असहजता या गोद की जरूरत से भी रो सकता है। शुरुआती दिनों में बार बार दूध पिलाना भी सामान्य है। माँ को शांत माहौल, पानी, खाना, आराम और परिवार का भावनात्मक साथ चाहिए, ताने नहीं चाहिए।
3: यानी माँ की सेहत और बच्चे की सेहत अलग अलग नहीं है?
5: बिल्कुल। अगर माँ थकी है, भूखी है, डरी हुई है या लगातार दबाव में है तो स्तनपान भी प्रभावित हो सकता है। परिवार को माँ को संभालना है, सिर्फ सलाह देना काफी नहीं है, काम में हाथ बटाना भी जरूरी है।
4: पिता की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिता माँ को पानी दे सकता है, खाना खिला सकता है, रात में सहयोग कर सकता है, रिश्तेदारों की अनावश्यक सलाह से माँ को बचा सकता है और चूँकि देखभाल शामिल हो सकता है। नवजात देखभाल केवल माँ का काम नहीं है।
3: अब बात करते हैं त्वचा से त्वचा संपर्क की। सेहतिया जी, ये क्या होता है और क्यों जरूरी है?
4: त्वचा से त्वचा का संपर्क का मतलब होता है कि बच्चों को माँ या देखभाल कर्ता की छाती से सीधा लगाया जाए सुरक्षित तरीके से। इसी को कंगारू केयर कहते हैं। इससे बच्चे को गर्माहट मिलती है, वह सुरक्षित महसूस करता है और स्तनपान में भी मदद मिलती है। खासकर कम वजन वाले समय से पहले बच्चों के लिए तो बहुत ही लाभकारी हो सकता है।
5: बच्चा माँ की धड़कन सुनता है, माँ की गर्माहट महसूस करता है और शांत होता है। यह केवल शरीर की गर्माहट नहीं है, यह भरोसे की गर्माहट है। बच्चे के दिमाग और भावनात्मक विकास के लिए यह बहुत अच्छा है।
3: क्या पिता भी ऐसा कर सकते हैं?
4: हाँ, सही तरीका सीखकर पिता भी त्वचा से त्वचा का संपर्क दे सकते हैं। खास करके जब माँ को आराम चाहिए तो वह थकी हुई है, लेकिन इसका तरीका स्वास्थ्य कर्मी से सीखना चाहिए। बच्चे की नाक और मुंह खुला रहे, बच्चा दबे नहीं, वह आराम से सांस ले रहा हो, यह ध्यान रखना भी जरूरी है।
5: पिता की भूमिका जन्म के पहले दिन से शुरू होती है। सिर्फ खर्च उठाना पिता की भूमिका नहीं है। बच्चे को गोद में लेना, माँ का साथ देना, बच्चे को गर्म रखना और माँ को भावनात्मक सहारा देना, यह भी पिता की जिम्मेदारी है।
3: साथियों, अब हम कुछ आम गलतफहमियों को दूर करते हैं। पहली गलतफहमी, पहला पीला दूध खराब होता है।
5: सच्चाई, पहला पीला दूध बहुत लाभकारी होता है, इसे बच्चे को जरूर देना चाहिए।
3: दूसरी गलतफहमी, नवजात को शहद या घुट्टी देना जरूरी है।
4: सच्चाई ये है आरजे खुशी, पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध देना चाहिए, जब तक डॉक्टर अलग से सलाह ना दे।
3: तीसरी गलतफहमी है, माँ का दूध कम होता है, तुरंत ऊपर का दूध देना शुरू कर देते हैं।
5: सच्चाई, पहले स्तनपान सहायता ले, माँ को दोष ना दे, स्वास्थ्य कर्मी से मदद ले।
3: चौथी गलतफहमी, नवजात देखभाल सिर्फ माँ का काम है।
5: सच्चाई, पिता, दादी, नानी, परिवार और स्वास्थ्य कर्मी सब की भूमिका है।
3: अब एक जरूरी सवाल, किन संकेतों पर परिवार को तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए?
4: अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा हो, बहुत सुस्त हो, तेज या कठिन सांस ले रहा है, शरीर बहुत ठंडा है या बहुत गर्म लग रहा है, त्वचा नीली पड़ रही है, दौरे जैसा लग रहा है, लगातार रो रहा है या बिल्कुल नहीं रो रहा है, तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाएं। नवजात बच्चों पर घरेलू प्रयोग नहीं करना चाहिए।
5: और अगर बच्चा बच्चा समय से पहले जन्मा है या उसका वजन कम है तो उसे सतर्क रहना चाहिए। ऐसे बच्चों को नियमित जांच, स्तनपान, गर्माहट और स्वास्थ्य कर्मी की सलाह की जरूरत होती है।
3: ये पूरी बातचीत हमें क्या याद दिलाती है?
4: आरजी खुशी, ये बातचीत हमें याद दिलाती है कि बच्चों का दिमाग, शरीर और भविष्य की शुरुआत देखभाल से बनती है। अच्छी देखभाल केवल खाना नहीं, इसमें स्तनपान, सुरक्षा, स्पर्श, साफ सफाई, टीकाकरण, माँ का स्वास्थ्य और परिवार का सहयोग, ये सब कुछ भी शामिल है।
5: हर घर 5 संकल्प ले सकते हैं। गर्भवती महिला को अच्छा भोजन और आराम देंगे, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू कराने में मदद करेंगे, पहला पीला गाढ़ा दूध नहीं फेंकेंगे, पहले 6 महीने केवल माँ का दूध देंगे, माँ को अकेले नहीं छोड़ेंगे।
4: और एक 6ठा संकल्प भी जोड़ लीजिए, बच्चे के जन्म के बाद आने वाले सभी जन्म खुराक टीके समय पर लगवाएं और आगे का पूरा टीकाकरण कैलेंडर भी पूरा करवाएं।
5: सही कहा, माँ का दूध और समय पर टीकाकरण दोनों मिलकर बच्चों को जीवन की सुरक्षित शुरुआत होती हैं।
3: बहुत स्पष्ट बात है, बच्चों के जीवन का पहला घंटा पूरे जीवन पर असर डाल सकता है। माँ का दूध, माँ पिता का स्पर्श, परिवार का सहयोग और समय पर स्वास्थ्य सेवा, यही बच्चों की मजबूत शुरुआत होती है।
4: और मैं एक बात फिर कहूँगा, अगर स्तनपान में कोई दिक्कत हो तो शर्म या डर की जरूरत नहीं है, स्वास्थ्य कर्मी से सहायता लें और यह सीखने की प्रक्रिया है।
5: माँ को ताना नहीं सहारा चाहिए, बच्चों को घुट्टी नहीं माँ का दूध चाहिए, परिवार को अफवाह नहीं सही जानकारी चाहिए।
3: साथियों, आज की 5 जरूरी बातें याद रखिए। पहली, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू करवाने की कोशिश करें। दूसरी, पहला पीला दूध बच्चों को दें, उसे फेंके नहीं। तीसरा, पहले 6 महीने केवल माँ का दूध दें। चौथी, त्वचा से त्वचा संपर्क बच्चे को गर्माहट और सुरक्षा देती है। पांचवी, पिता और परिवार की भूमिका बहुत जरूरी है।
5: और 6ठी बात, खतरे के संकेत दिखे तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाए, इंतजार ना करें।
3: इसी संदेश के साथ आज का सेहत सही लाभ कई यही समाप्त करते हैं। याद रखिए, बच्चों की अच्छी शुरुआत महंगे साधनों से नहीं, सही जानकारी और सही देखभाल से होती है। पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
5: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
4: सरकारी स्वास्थ्य और सेवाओं योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
3: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
5: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
4: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
3: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखें। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
10: सेहत सही तो लाभ गई।
5: पहला दूध, पहला प्यार, पहला घंटा जीवन का आधार, माँ का साथ, पिता का हाथ, बच्चे को मिले सुरक्षित शुरुआत। सेहत सही लाभ कई।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एफएम मुरादाबाद आप सुन रहे हैं और इस स्टेशन पर आप सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है सेहत सही लाभ कहीं। एक बार फिर से लौट कर आ गए हम आपके दोस्त और दोस्तों आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। श्रोताओं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि कैसे एक फॉरवर्ड पूरे घर का मन डगमगा देता है, आज हम उसी डर के बीच दो सबसे बड़ी अफवाहों पर सीधा बात करेंगे। क्या HPV वैक्सीन से पीरियड्स बिगड़ सकते हैं? क्या इससे आगे चलकर बांझपन हो सकता है? ऐसे सवाल ने बहुत सी माओं को रोका है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये डर सच है या यह वही बात है जो बार बार दोहराई गई है इसीलिए सच जैसी लगने लगी है। हमारे साथ हैं टीकन भाभी और पिछली बार की हमारी श्रोता सुनीता भी लौट आई है। हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपने पिछले एपिसोड के बाद क्या किया है। सुनीता जी आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में और आप हमारे श्रोताओं को बताएंगी कि आपसे जब हमने बात की थी उसके बाद आपने क्या किया।
1: शुक्रिया मुझे अपने सेहत सही लाभ कई के लाइव एपिसोड में जोड़ने के लिए। सबसे पहले मैं कहूंगी कि यह कार्यक्रम एक बार ही अच्छा कार्यक्रम है जो हमें सही राह दिखाता है, चेतावनी भी देता है और सही इलाज पर फोकस करता है। अब आपके सवाल के जवाब में कहना चाहूंगी कि ने अगले दिन ही स्वास्थ्य केंद्र जाकर बात की। डॉक्टर ने भी वही कहा जो कि टीकन भाभी कह रही थी। पर आपसे सच बोलूं, मन में एक गांठ अभी भी है क्योंकि हमारी बेटी की उम्र ही ऐसी है, शरीर बदल रहा है, पीरियड्स नए नए शुरू हो रहे हैं। ऐसे समय में कोई भी दखल डराती है।
2: और यही वजह है कि इस एपिसोड में आपका जुड़ना जरूरी है। माँ तो मैं भी हूँ लेकिन मेरी बच्ची छोटी है। उन सब माओ को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही है जिनकी बच्चियाँ अभी आपकी बेटी की उम्र की हैं और आपकी इस बात को सही तरह से समझा पाएंगी कि आधी लड़ाई गलत सूचना से नहीं गलत कल्पना से होती है। और आप इस बात को सही तरह से समझा पाएंगी कि आधी लड़ाई गलत सूचना से नहीं गलत कल्पना से होती है। लोग सोच लेते हैं कि लड़की जवान हो रही है, अब कुछ हुआ तो पूरा जीवन बिगड़ जाएगा, फिर हर चीज को उसी डर से जोड़ देते हैं।
0: चलिए सबसे पहले वही सवाल रखते हैं जो हर दूसरे घर में पूछा जा रहा है, क्या HPV वैक्सीन मासिक चक्र को बिगाड़ देती है?
2: सीधा जवाब नहीं। उपलब्ध आधिकारिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती। इतना ही नहीं पीरियड्स के दौरान भी इसे लेना सुरक्षित बताया गया है, यानी पीरियड्स रुक जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, अनियमित हो जाएंगे। ऐसी बातें वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित नहीं है।
1: पर लोग उदाहरण देते हैं, कोई कहेगा मेरी भाभी की लड़की को टीका लगा है फिर 2 महीने गड़बड़ रही, तब क्या करें?
2: हर शारीरिक बदलाव को एक घटना से जोड़ देना आसान है। किशोरावस्था में शरीर खुद भी बदलता है। खान पान, तनाव, वजन, पढ़ाई, नींद, कई चीजें पीरियड्स को प्रभावित कर सकती हैं। पर हर उतार चढ़ाव को वैक्सीन पर डाल देना गलत है। विज्ञान यही देखता है कि बड़ी संख्या में लंबे समय तक क्या कोई स्थायी संबंध पाया गया, और जो आधिकारिक सामग्री उपलब्ध है वह साफ कह रहे कि पीरियड्स पर असर नहीं है।
0: यह फर्क समझना जरूरी है, किसी एक घटना का सुना जाना और वैज्ञानिक रूप से साबित होना एक बात नहीं। अब दूसरा सवाल, बांझपन शायद सबसे खतरनाक अफवाह है?
1: हाँ यही बात घरों में सबसे गहरी चोट करती है। लोग लड़की की सेहत को नहीं पहले उसका भविष्य, शादी, बच्चा होने की क्षमता इस सब से जोड़कर देखते हैं। कोई कह दे कि आगे चलकर दिक्कत हो सकती है तो घर वाले एकदम पीछे हट जाते हैं।
2: बिल्कुल, और यही वजह है कि बांझपन वाली अफवाह तेजी से फैलती है। पर उपलब्ध मिथक तथ्य सामग्री साफ कहती है कि HPV वैक्सीन फर्टिलिटी पर असर नहीं डालती। उल्टा आधिकारिक प्रचार में ऐसे अनुभव भी साझा किए गए हैं कि जहां महिलाओं ने सालों पहले वैक्सीन ली है वे आज भी माँ हैं। एक गवाही तो साफ कहती है 2010 में वैक्सीन ली और आज गर्व से माँ है। यह अफवाह को सीधी चुनौती देती है।
1: यह सुनकर थोड़ी राहत मिली क्योंकि हम माओं को यही लगता है कि कहीं आज की जल्दी कल की मुसीबत ना बन जाए।
2: समझ में आता है, लेकिन सोचो अगर किसी चीज का उपयोग दुनिया भर में इतने साल से हो रहा है और लगातार सुरक्षा निगरानी हो रही है, तब भी हम बिना प्रमाण के डर को सच मान लें तो नुकसान किसका होगा? उसी बच्ची का जिसे हम बचाना चाहते हैं।
1: टीकन भाभी तुमने कहा था कि वैक्सीन 2006 से दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, इतने साल हो गए तो फिर इतना शोर अभी क्यों?
2: क्योंकि सूचना का जमाना है पर समझ का नहीं। अफवाह एक गली तक रहती थी, अब एक वीडियो हजारों घरों तक पहुंच जाता। ऊपर से स्वास्थ्य, शरीर, प्रजनन, ये सब ऐसे विषय हैं जिन पर लोग खुलकर बातें नहीं करते। जहां चुप्पी ज्यादा होती है वहां अफवाह और तेज लगती है।
1: घर में यही होता है, पीडियर्स पर खुलकर कौन बात करता है, लड़की भी झिझकती है। माँ भी ऐसे में बाहर से कोई डरने वाली बात आ जाए तो वह मन में बैठ जाती है।
2: इसलिए इस विषय पर साफ, सहज और सम्मानजनक भाषा जरूरी है। देखो, पीरियड्स कोई चीज नहीं, शरीर की प्रक्रिया है। फर्टिलिटी कोई शर्म की बात नहीं, पर स्वास्थ्य का हिस्सा है। जब हम इन बातों को छुपाते हैं तब झूठ इन्हीं अंधेरों में पनपता है।
0: यह बात तो सिर्फ चिकित्सा की नहीं सामाजिक सोच की भी है। खासकर दक्षिण एशिया समाजों में लड़की के शरीर पर नियंत्रण, शर्म और अफवाह का जाल बहुत गहरा होता है। इसीलिए सही जानकारी को सिर्फ सूचना नहीं, सामाजिक हस्तक्षेप की तरह देखना चाहिए।
1: एक और डर बताऊं, कुछ लोग कहते हैं इतनी छोटी लड़की को ऐसा टीका क्यों?
2: पर आधिकारिक जन संदेश यही कहते हैं कि कम उम्र में सुरक्षा बेहतर होती है, यह बाद में देखेंगे वाली चीज नहीं है। 14 साल की लड़कियों के लिए मुफ्त उपलब्ध कराया जाना इसी सोच का हिस्सा है कि सुरक्षा समय पर मिले, रोकथाम देर से नहीं पहले की जाती।
1: और अगर कोई कहे कि हमारी बेटी तो बिल्कुल स्वस्थ है, उसे क्या जरूरत?
2: यही तो रोकथाम है। टीका बीमारी का इलाज नहीं, बीमारी से बचाव का साधन है। स्वस्थ बच्ची को इसलिए दिया जाता है कि भविष्य में गंभीर जोखिम कम हो। अभी तो ठीक है, कहकर बचाव टालना समझदारी नहीं है।
0: अब सवाल जो कई परिवार पूछते हैं, क्या सभी को एक जैसा असर होता है? अगर किसी को हल्का बुखार हो जाए तो? टीकन देवी,
2: इंजेक्शन के बाद हल्की स्थानीय प्रतिक्रिया जैसे दर्द, लालपन, हल्का बुखार, ये कई टीकों में संभव होते हैं, लेकिन इन्हें स्थायी नुकसान या गंभीर खतरे के बराबर नहीं माना जा सकता। बड़ी बात यह है कि सुरक्षा निगरानी चलती रहती है और गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं। हमें संतुलित दृष्टि रखनी होगी, हल्की अस्थायी प्रक्रिया बनाम लंबे समय की सुरक्षा।
1: अब मुझे लग रहा है कि हमें कितनी सारी बातों को बहस, किसी ने कहा कि आधार पर सच मान लिया।
2: यही तो होता है, और खासकर लड़की के शरीर से जुड़ी बातें। हमारे समाज में लड़की के भविष्य को इतना जोखिम का मैदान मान लिया गया है कि कोई भी बातें सीधे उस पर असर डालती है। पर हमें ये पूछना चाहिए, जो लोग डर फैला रहे हैं, क्या उनके पास प्रमाण है? क्या वे डॉक्टर हैं? क्या वे आधिकारिक स्रोत बता रहे हैं? क्या उनका दावा बड़े अध्ययन से समर्थित है? अगर नहीं तो उनके शब्द क्यों हमारे घर का फैसला करे?
0: चलिए अब एक छोटा सा मिथक बेनाम तथ्य खंड करते हैं। मिथक, HPV वैक्सीन से पीरियड बिगड़ते हैं। तथ्य, उपलब्ध आधारिक सामग्री कहती है कि इसका मासिक धर्म पर असर नहीं होता, पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। मिथक, HPV वैक्सीन से बांझपन होता है। तथ्य, आधारिक जागरूकता सामग्री इसे अफवाह बताती है, ऐसा कोई प्रभाव नहीं बताया गया है। गवाही में ऐसी महिलाएं भी सामने आई हैं जिन्होंने सालों पहले वैक्सीन ली और आज भी माँ हैं। मिथक, अभी छोटी है, बाद में देखेंगे। तथ्य, समय पर सुरक्षा का ही महत्व है। 14 साल की लड़की के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्धता इसी सोच पर आधारित है। मिथक, मुफ्त है तो भरोसे के लायक नहीं। तथ्य, मुफ्त होना इसकी कमतर होना नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सभी के लिए उपलब्ध होना है।
1: जब आप ऐसे एक एक करके बताते है ना, तो बात बैठती है, नहीं तो घर में सब उथल पुथल हो जाता है।
2: इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, मुद्दों को टुकड़ों में समझो, एक झूठ को एक सच से काटो, तभी मन साफ होगा।
1: अच्छा, अगर मेरी बेटी खुद पूछे, अम्मा यह टीका मुझे क्यों लेना चाहिए, तो मैं क्या कहूँ?
2: ना, क्योंकि कुछ बीमारियों से बचाव पहले ही किया जा सकता है, पर टीका तुम्हें भविष्य में एक गंभीर बीमारी के जोखिम से बचाने का तरीका है। और अगर वह पूछे क्या इससे मेरे पीरियड्स पर असर होगा, तो कहो नहीं, डॉक्टर और सरकारी जानकारी यही कहती है कि ऐसा नहीं होता। अगर वह पूछे क्या मैं इससे आगे चलकर माँ भी नहीं बन पाऊंगी, तो कहो यह अफवाह झूठी है।
0: यह भी ध्यान रहे कि बच्चियों से बात करते समय भाषा डराने वाली नहीं, भरोसा देने वाली हो। उन्हें यह महसूस हो कि उनके शरीर के बारे में फैसला उनसे छुपाकर नहीं, समझाकर लिया जा रहा है।
1: हमारे यहाँ तो कई बार बच्चे पूछा भी जाता है, बस बड़े लोग आपस में तय कर लेते हैं
2: और फिर बच्ची डर जाती है। इसलिए संवाद जरूरी है, बच्ची को समझाओ कि यह सुरक्षा का कदम है, उसे अधिकार है पूछने का कि यह किस लिए है। यह भी सेहत शिक्षा का हिस्सा है।
0: और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, स्वास्थ्य लोकतंत्र होना चाहिए, विशेषकर स्वास्थ्य लोकतांत्रिक होना चाहिए, विशेषकर लड़कियों और महिलाओं के मामले में। जानकारी ऊपर से थोप दी जाए और सवाल की जगह ना हो तो भरोसा नहीं बनता।
1: टीकन, कल रात मैंने अपनी बेटी से खुलकर बात की। पहले तो वह हंस रही थी, कहती है, अम्मा आप तो हर बात पर डर जाती हो। फिर मैंने उसे कहा कि डरती हूँ क्योंकि दुनिया आसान नहीं है, लेकिन फिर मैंने यह भी कहा कि अब मैं सही जानकारी लेकर चलूंगी। वह बोली, ठीक है अम्मा, हम साथ चलेंगे।
2: देखा, जब माँ खुलकर बात करती है तो बच्ची भी मजबूत होती है, डर आधा हो जाता।
1: और मैं यह भी सोच रही हूँ कि मेरी ननद की बेटी के घर भी यही बात लेकर जानी चाहिए। वहाँ तो पीरियड्स का नाम लेते ही लोग भोहे चढ़ा लेते हैं।
2: तो यही बदलाव है, शर्म की जगह समझ। स्वास्थ्य की बातें जितनी खुलकर होंगी, अफवाह उतनी कम चलेगी।
0: अब अंत से पहले एक और उपयोगी बात, अगर परिवार में किसी महिला की उम्र 30 वर्ष से ऊपर है तो नियमित सर्वाइकल जांच के बारे में भी जानकारी लेना आवश्यक है। आधारिक जन संदेशों में यह भी कहा गया है कि नियमित स्क्रीनिंग समय पर पहचाने और सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यानी एक तरफा किशोरियों के लिए वैक्सीन, दूसरी तरफा वैश्विक महिलाओं के लिए जांच, दोनों साथ चलने चाहिए।
1: यह बात मेरे मन में गहरी बैठ गई। हम अपनी बेटी के लिए टीका सोच रहे हैं, पर अपनी जांच के बारे में कभी नहीं सोचा।
2: यही तो, महिलाएं अक्सर सबकी चिंता करती हैं, अपनी नहीं। अब इस कहानी को उलटना है, अपनी देह की जिम्मेदारी लेना शर्म नहीं समझदारी है। और मेरी तरफ से जिस बात पर झूठ सबसे ज्यादा फैलता है उसी पर सबसे साफ बोलना चाहिए। शरीर, पीरियड्स, फर्टिलिटी, ये सब शर्म की नहीं स्वास्थ्य की बातें हैं।
1: और मेरी तरफ से अब मैं अगर किसी को पीरियड्स बिगड़े या बांझपन आ जाए कहते सुनूंगी तो डरूंगी नहीं, पूछूंगी, तुम्हारे पास प्रमाण क्या है?
0: यही है सही दिशा। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मुफ्त उपलब्धता सरकारी केंद्र, यूविन और बड़ी महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की अहमियत, यानी सिर्फ टीका नहीं, पूरी सुरक्षा श्रृंखला। तब तक याद रखिए, अफवाहें तेज होती हैं पर सच टिकाऊ होता है। और श्रोताओं, यही है एक सामाजिक परत और समझनी चाहिए। कई बार लड़कियों के स्वास्थ्य से जुड़े फैसलों में लड़की की आवाज सबसे कम होती है, लेकिन डर सबसे ज्यादा उसी पर थोपा जाता है। उसे कहा आता है, ये मत पूछो, ये बात बाहर मत करना, ये शरीर की बात है, चुप रहो। ऐसी चुप्पी में सही स्वास्थ्य शिक्षा पनप ही नहीं सकती।
2: बिल्कुल, और जब चुप्पी होती है तब पड़ोस, रिश्तेदार, मोबाइल वीडियो यही गुरु बन जाते हैं, जबकि गुरु डॉक्टर होना चाहिए, आशा होना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, प्रमाणित जानकारी होनी चाहिए।
1: अब मैं समझ रही हूँ कि सवाल पूछना भी सेहत का हिस्सा है। पहले लगता था ज्यादा पूछना मतलब झगड़ालू होना, अब लग रहा है ना पूछना ही बड़ी गलती है।
2: और खासकर बेटियों के मामले में, हम उन्हें पढ़ाई के लिए कहते हैं, समझदार बनने को कहते हैं, पर शरीर और स्वास्थ्य पर सवाल पूछने का हक नहीं देते। यह दोहरा व्यवहार है। अगर हम सच में चाहते हैं कि बेटियां मजबूत हों तो उन्हें जानकारी भी देनी होगी।
0: यह बिंदु नीति और समाज दोनों के स्तर पर महत्वपूर्ण है। किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता सिर्फ उपलब्धता पर नहीं, सामाजिक स्वीकृति और भरोसे पर भी निर्भर करती है। और भरोसा तभी बनता है जब संवाद संपूर्ण हो।
1: एक बात और मैंने देखा है, जब भी महिलाओं की बीमारी की बात होती है लोग उसे धीरे से बोलते हैं, जैसे कोई पूछने वाली चीज हो। कैंसर शब्द आते ही लोग नजरें फेर लेते हैं।
2: हाँ, और यही कारण है कि देर होती है। डर, शर्म और चुप्पी बीमारी को बढ़ाते हैं, इसलिए सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी पर खुलकर बात करना जरूरी है, क्योंकि यह रोकी जा सकती है और महिलाओं की जान बचाई जा सकती है।
0: और यह सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं, परिवार और समुदाय का भी मामला है। जब एक महिला बीमार होती है तो उसका असर पूरे घर पर पड़ता है। कमाई, बच्चे की देखभाल, मानसिक बोझ, इलाज का खर्च, सर। इसीलिए रोकथाम को महिलाओं का निजी मुद्दा समझना गलत है।
1: सही कहा, अगर माँ बीमार पड़े तो पूरा घर हिल जाता है, फिर भी हम माँ की सेहत को आखिर में रखते हैं।
2: इसलिए मैं कहती हूँ कि बेटी की सुरक्षा, माँ की जांच और घर की समझ तीनों साथ चले, तभी असली लाभ है, तभी सेहत सही लाभ कई सच में घर तक पहुँचे।
0: अब एक छोटा सा अभ्यास, मान लीजिए आपसे कहें, मैंने सुना है HPV टीका लगाने के बाद लड़की माँ नहीं बन सकी, आपका क्या जवाब होगा? पहला, एक घटना की कहानी विज्ञान नहीं होती, दूसरा, आधारिक सामग्री बांझपन के दावे को मिथक बताती है। तीसरा, ऐसी महिलाएं सामने आई है जिन्होंने साल में पहली बार टीका लिया है और आज माँ है। चौथा, स्वास्थ्य निर्णय डॉक्टर से पूछकर ही लें। यह चार स्तरीय जवाब हर श्रोता अपने पास रख सकता है। आज की मुख्य बातें, HPV वैक्सीन से पीरियड प्रभावित नहीं होते। दो, पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। तीन, यह बांझपन का कारण नहीं बनती। चार, यह दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। पाँच, यह सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मुफ्त उपलब्ध है, खासकर 14 साल की लड़कियों के लिए। और छह, डर को दबाइए मत, पर उसका जवाब फॉरवर्ड से मत ढूंढिए। सात, बेटियों से खुलकर बात कीजिए, उन्हें जानकारी दीजिए, सिर्फ आदेश नहीं।
1: अब लग रहा है कि मैं भी ठीक से जवाब दे पाऊंगी। पहले सब घबरा जाती थी।
2: और यही आत्मविश्वास चाहिए। जानकारी का मतलब सिर्फ खुद समझना नहीं, जरूरत पड़े तो दूसरों को समझाना भी है। और हम सब मिलकर आज ही शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
2: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएं और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम कर अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
2: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
3: सेहत सही तो लाभ कई।
0: तो श्रोताओं, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। फिलहाल इस प्रोग्राम से अब लेता हूँ मैं जाने की इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और मोड़ पर एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सेहत सही तो लाभ कई। नमस्कार श्रोताओं।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो। मैं हूं स्मार्ट से सुजाता और आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, संचारी रोग, यानी ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। बदलते मौसम और बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए ये विषय हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। इन्हीं अहम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विकास अग्रवाल, ज्वाइंट डायरेक्टर IDSP UP। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सुजाता जी।
0: सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि आखिर ये संचारी रोग होता क्या है और ये कैसे फैलते हैं।
1: ये तो सुजाता जी, अभी आपने खुद ही थोड़ा सा इसके विषय में ज्ञान प्रदान किया लोगों को कि जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, एक माध्यम की भी जरूरत होती है। वो किसी वेक्टर के माध्यम से फैल सकते हैं, जल के माध्यम से फैल सकते हैं। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी प्रकार के माध्यम से रोग फैलते हैं, उनको हम संचारी रोग कहते हैं।
0: अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा कौन कौन से संचारी रोग देखने को मिलते हैं?
1: देखिए, ये डिपेंड करता है कि क्या सीजन चल रहा है। अभी जो मौसम प्रारंभ हो रहा है उसमें हमारे पास जो मुख्य रूप से अभी संचारी रोग हमको मिलेंगे, इसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, देन वाटर बॉर्न डिजीजेस कुछ हैं, जैसे कि डायरिया के केसेस हमको मिल जाते हैं। तो ये सब संचारी रोग हमारे प्रदेश के लिए प्रमुख हैं। इसके अलावा कुछ नए रोग भी आ रहे हैं जो टिक्स से फैलते हैं, जैसे स्क्रब टाइफस। कुछ पशु जनित रोग भी हैं जैसे लेप्टोस्पाइरोसिस। तो ये नई बीमारियां हैं जो पिछले कुछ वर्षों में हमने देखना शुरू करा है कि इनका भी प्रसार प्रदेश में तेजी से हो रहा है।
0: अच्छा, इनमें से कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो समय पर इलाज ना मिलने पर गंभीर या जानलेवा हो सकते हैं? सर,
1: कोई भी रोग इनमें से अगर समय से इलाज ना किया जाए तो मलेरिया जैसा रोग जो बहुत कॉमनली मिलता है, हमको लगता है बड़ा साधारण रोग है, लेकिन वो भी जानलेवा हो सकता है अगर समय से इलाज ना हो। तो किसी भी प्रकार के रोग में, किसी भी प्रकार की बीमारी में हमको कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए और तत्काल हमें अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाके हम डॉक्टर को दिखाएं या किसी क्वालिफाइड चिकित्सक से हम इलाज करवाएं, क्योंकि कोई भी रोग जिसका समय पे इलाज ना हो वो गंभीर हो सकता है, वो जानलेवा हो सकता है।
0: संचारी रोगों को फैलने से रोकने के लिए आम लोगों को क्या सामान्य सावधानियां बरतनी चाहिए?
1: देखिए, संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण आम लोगों का सहयोग ही है। आप ज्यादातर संचारी रोग मच्छर जनित हैं या जो जल भराव हो जाता है उसके कारण होते हैं, तो आप अपने घरों के पास मच्छरों का प्रजनन ना हो इस तरीके की परिस्थितियां रखें, जल भराव ना होने दें, जो मच्छर विकर्षी क्रीम होती हैं उनका प्रयोग करें, पूरी आस्तीन के कपड़े बच्चों को स्कूल जाते समय पहनाएं, ये बहुत जरूरी है। और इसके अलावा हम जो साफ सफाई है, सामान्य साफ सफाई है, उसका भी ध्यान रखें। घरों में अगर कहीं पे हमारे खाली गमले हैं, खाली बर्तन हैं, तो उसमें पानी ना भरने दें। जो फ्रिज के नीचे की ट्रे होती है, कूलर का पानी होता है, इसको निरंतर हम बदलते रहें, जल्दी जल्दी हम बदलते रहें। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं, लेकिन ये संचारी रोगों के प्रसार को रोकने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
0: क्या अलग अलग संचारी रोगों के लिए सावधानियां भी अलग अलग हैं?
1: हाँ जी, अलग अलग संचारी रोगों के लिए निश्चित रूप से सावधानियां अलग अलग होती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, अभी जो मैंने आपको सावधानियां बताई वो मच्छर जनित रोगों के विषय में थी। इसके अलावा कई रोग ऐसे होते हैं जिनका संक्रमण पशुओं के द्वारा होता है, तो जैसे रोडेंट्स, चूहे, छछुंदर वगैरह जो होते हैं, उनसे भी हमको बचाव करना चाहिए। उनके माध्यम से भी स्क्रब टाइफस जैसे रोग फैल सकते हैं, तो उनको घर में पनपने ना दें, उनको आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रखें, इस चीज का हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर कहीं पर पशु बाड़े हैं तो उसमें साफ सफाई रखी जाए। पशुओं का जो मल मूत्र है वो अगर संपर्क में आया है, आप पशुपालन करते हैं, तो उसके बाद हाथ धोए बहुत अच्छे तरीके से, अपने शरीर की सफाई करें, उसके बाद ही अपने परिवार के सदस्यों से मिलें। भोजन बनाने से पहले, भोजन खाने से पहले हाथ जरूर धोएं। बच्चों को शुरू से ही आदत डलवाएं कि भाई खाना खाने से पहले हमको हाथ धोना है, कहीं घर से बाहर से आ रहे हैं तो हाथ धोना है। तो सामान्य स्वच्छता, पर्यावरणीय स्वच्छता, ये सब महत्वपूर्ण तरीके हैं संचारी रोगों को रोकने के।
0: अच्छा, किन किन लक्षणों को देखते ही व्यक्ति को तुरंत जांच करवानी चाहिए या डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?
1: सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है संचारी रोगों का, जो बहुत सारे संचारी रोगों में मिलता है, वो है बुखार। तो अगर मरीज को बुखार आ रहा है, विशेषकर छोटे बच्चों को बुखार आ रहा है, और वो सामान्य रूप से पैरासीटामोल की टैबलेट हम लेते हैं ऐसे में, लेकिन अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है रोगी और उसको पैरासीटामोल लेने के बाद भी बुखार लगातार बना हुआ है, तो तत्काल फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए।
0: सर, हमारे श्रोता ये भी जानना चाहते हैं कि टीबी के मामलों में जांच कितनी जरूरी है और क्या सरकारी केंद्रों पर इसकी जांच और इलाज मुफ्त में उपलब्ध है?
1: टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका समूल नाश करने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है और ये हम सबको पता है कि ये क्रोनिक बीमारी होती है। अगर सही समय पे इसकी जांच और उपचार ना कराया जाए तो ये फेफड़ों को पूरी तरीके से नष्ट करने की क्षमता रखती है, मनुष्य की कार्य क्षमता को घटाती है, उसकी उत्पादकता को घटाती है। तो इस बीमारी का तत्काल उपचार कराना, इसकी जांच करवाना बहुत ही जरूरी है। और हर ऐसे व्यक्ति को जिसको 2 सप्ताह या उससे अधिक की खांसी आ रही हो, या कई बार होता है कि फेफड़ों की टीबी नहीं होती है तो खांसी नहीं आती है, उसमें वजन घटना, भूख ना लगना, इस तरीके के लक्षण, शाम के समय हल्का बुखार, तेज बुखार नहीं होता है टीबी में, हल्का बुखार हो जाना, इस तरीके के लक्षण मिलते हैं, तो ऐसे सभी व्यक्तियों को जांच करवानी चाहिए। अगर टीबी की जांच में टीबी कंफर्म होता है तो पूरी अवधि के लिए जो उपचार बताया गया है वो पूरी अवधि के लिए लेना चाहिए। फेफड़ों की टीबी अगर है तो परिवार के बाकी सदस्यों को कुछ प्रोफाइलेक्टिक दवाइयां दी जाती हैं बचाव के लिए, उन दवाइयों का सेवन करना चाहिए।
0: डेंगू और मलेरिया जैसे रोगों से बचाव के लिए घर और आसपास किन बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है?
1: बेसिकली साफ सफाई रखें, वो सबसे जरूरी है। कहीं पे जल भराव ना होने दें। अगर कहीं पे आपको मच्छर के लार्वा दिखाई देते हैं तो उसमें आप जो लार्विसाइडल स्प्रे होता है वो आप कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे ब्रांड्स का लार्विसाइडल आपको मार्केट में भी मिलता है, वो आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको सामान्य तरीके बताए थे कि मच्छर के काटने से कैसे बचें, ये बहुत जरूरी है। और ये ना केवल आप खुद अपनाएं बल्कि अपने बच्चों को भी बताएं। घर के दरवाजों पे, खिड़कियों पे जाली लगाना, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनना, मच्छर विकर्षी क्रीम का प्रयोग करना, ये सारे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनसे आप डेंगू और मलेरिया दोनों से ही बच सकते हैं।
0: अच्छा, दस्त और डायरिया उल्टी जैसे संक्रमण से बचने के लिए ग्रामीण और शहरी लोगों को क्या करना चाहिए?
1: दोनों के लिए उपाय एक समान ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि शहरी क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता पाइप्ड वाटर के रूप में होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार आप हैंडपंप का पानी प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखें कि जो जल का स्रोत है उसके आसपास अगर आप हैंडपंप का पानी प्रयोग कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में तो उसका जो बेस होता है उसके आसपास जल भराव की स्थिति ना हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोएं। अगर किसी भी व्यक्ति को दस्त आ रहा है तो उसको ORS अवश्य दें और उसके बारे में तत्काल अपने आशा को, ANM को सूचना दें। अगर अनेक बार दस्त आ रहा है तो उसको अस्पताल में भर्ती करा के उपचार करने की भी जरूरत हो सकती है। और परिवार के बाकी सदस्यों में भी देखें कि किसी प्रकार के लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। विशेषकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें दस्त के लक्षण कई बार समझ में नहीं आते हैं, वो बच्चा अचानक रोना बंद कर देता है और आप उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें, इन लक्षणों का ध्यान रखें और साफ सफाई, व्यक्तिगत स्वच्छता जो है वो दस्त रोग से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। शुद्ध पेयजल का प्रयोग करना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके पास शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है तो उसको क्लोरिनेशन के माध्यम से 20 लीटर पानी में एक क्लोरीन की टैबलेट आप डाल के छोड़ सकते हैं या उसको आप उबाल के भी शुद्ध कर सकते हैं। तो शुद्ध पेयजल का प्रयोग करें, ये महत्वपूर्ण होता है।
0: JEAES जैसे गंभीर रोगों में बच्चों की सुरक्षा के लिए टीकाकरण कितना जरूरी है?
1: देखिए, केवल JEAES नहीं बल्कि खसरा है और गलघोटू है, डिफ्थीरिया मीजल्स जिसको कहते हैं, इसके अलावा वायरल हेपेटाइटिस होती है, मम्स होते हैं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके लिए नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत टीका बच्चों को लगाया जाता है। ये सारी बीमारियां और सारे टीके एक विशेषज्ञों के समूह के द्वारा बहुत ही गहन विचार विमर्श के उपरांत निर्धारित किए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में और देश में कौन से टीके बचपन में लगने जरूरी हैं। तो जो भी टीके नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत प्राविधानित हैं वो सारे टीके जो आयु के अनुसार उनकी लगाए जाने की फ्रीक्वेंसी है उसको पालन करते हुए वो सारे टीके अनिवार्य रूप से बच्चों को लगाने चाहिए।
0: क्या केवल साफ सफाई रखने से इन सभी रोगों से बचाव संभव है या इसके साथ और भी उपाय जरूरी?
1: नहीं, साफ सफाई एक तरीका है लेकिन इसके साथ कैसे प्रसार होता है रोगों का, इसके विषय में जानकारी, रोग अगर फैल रहे हैं तो तत्काल अपने आसपास जो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनको जानकारी देना। कई बार आवश्यक होता है कि अगर मच्छर जनित रोग है तो मच्छरों को समूल खत्म करने के लिए आपको लार्विसाइडल स्प्रे या फॉगिंग करनी पड़ेगी। अगर जल जनित रोग है तो हो सकता है कि जल का स्रोत दूषित हो, उसको आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा, पेयजल की जांच करवानी पड़ेगी। तो बहुत सारे विभिन्न तरीके हमको करने पड़ते हैं संचारी रोगों से बचने के लिए।
0: अगर किसी गांव या मोहल्ले में कई लोगों को एक साथ बुखार, खांसी या दस्त जैसी समस्या होने लगे तो सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए?
1: सबसे पहले तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आपके घर के आसपास अनिवार्य रूप से कोई ना कोई आशा कार्यकर्ता होंगी, ANM होंगी या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे। तो सबसे पहले तो आप उनको सूचित करें, कुछ जांचें वो अपने स्तर पे कर सकते सकते हैं और कुछ जांचों के लिए अगर उन्हें आवश्यक लगेगा तो आपको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर भेजेंगे, कुछ दवाइयां भी वो देंगे। तो जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उनको सूचित करें, उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करें, जो जांचें और उपचार आपको बताया जाए उसको पूरी तरीके से करवाएं, चाहे आप शहरी क्षेत्र में हो चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में हो।
0: संचारी रोगों को लेकर जो डर अफवाह होता है उसे कम करने में सही जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है?
1: सही जानकारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और अब सोशल मीडिया का जमाना है तो बहुत सारे माध्यम इस तरीके के हैं जिनके माध्यम से हम तत्काल जो वस्तु स्थिति है, रोग से बचाव के तरीके हैं, रोग कैसे फैल रहा है और रोग की वास्तविक स्थिति क्या है, इसके विषय में हम तत्काल सही जानकारी दे सकते हैं। तो सही जानकारी के बिना ना केवल आप भ्रम की स्थिति में रहेंगे अपितु अगर किसी एक व्यक्ति या एक क्षेत्र में रोग फैला हुआ है तो आगे उसके प्रसार को कैसे रोका जाए ये भी आपको पता नहीं चल पाएगा। तो सही जानकारी अत्यंत आवश्यक है, इसके लिए सभी प्रकार के उपायों का प्रयोग करना चाहिए। स्कूल में टीचर्स को भी हमने जो कॉमन बीमारियां हैं उनके लक्षणों विषय में, उनसे बचाव के उपायों के विषय में जानकारी दी है तो वो आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, ANM ये सब फ्रंटलाइन वर्कर्स हमारा सहयोग करते हैं समाज को सही जानकारी प्रदान करने में।
0: सर आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए आपकी तरफ से जरूरी क्या संदेश है?
1: स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें और स्वच्छ रहना और पर्यावरणीय स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता ये स्वास्थ्य की कुंजी है और जितना आप स्वस्थ रहेंगे उतना ही आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उतना ही आपका समाज के लिए अपने परिवार के लिए योगदान रहेगा। अगर आप बच्चे हैं, छात्र हैं तो स्वस्थ रहना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो आपके एकेडमिक रिजल्ट्स को प्रभावित करता है, आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए तैयारी है, आपकी पढ़ाई करने की क्षमता उस सबको भी प्रभावित करता है। तो स्वच्छता और स्वस्थ रहना, स्वस्थ जीवन ये दोनों ही बहुत आवश्यक है और दोनों एक दूसरे के पूरक है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। तो श्रोताओं आपने सुना, सही जानकारी, समय पर जांच करो और थोड़ी सी सावधानी से हम संचारी रोगों से खुद और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे डॉक्टर विकास हिंदु सर ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिक के रूप में काम करना शुरू किया। उनकी मेहनत और प्रतिभा ने जल्द ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। 1994 में उनका चयन नासा के अंतरिक्ष यात्रा दल में हुआ। ये किसी भी वैज्ञानिक के लिए सबसे बड़ा सपना होता है। कई वर्षों की कठिन ट्रेनिंग के बाद आखिर वह दिन भी आया जिसका इंतजार कल्पना बचपन से कर रही थी। दोस्तों, अंतरिक्ष यात्रा के बारे में तो हम बातचीत करेंगे ही, लेकिन सुनते हैं उससे पहले एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारत में जन्मी पहली महिला बन गई। उन्होंने इस मिशन में लगभग 365 घंटे अंतरिक्ष में बिताए, 252 बार पृथ्वी की परिक्रमा की और लगभग 1,04,00,000 किलोमीटर की यात्रा की। पूरे भारत में खुशहाली की लहर दौड़ आई। हर बेटी के लिए कल्पना एक प्रेरणादायक लड़की बन गई। दूसरी और अंतिम उड़ान। पहले मिशन की सफलता के बाद उन्होंने दूसरी बार STS-107 मिशन के लिए चुना गया। 16 जनवरी 2000 को फिर स्पेन शटल कोलंबिया अंतरिक्ष की ओर रवाना हुआ। इस मिशन में वैज्ञानिकों की टीम ने लगभग 80 वैज्ञानिक प्रयोग किए गए। इसमें अंतरिक्ष विज्ञान, पृथ्वी, चिकित्सा, नई तकनीक और मानव स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण शोध शामिल थे। कल्पना पूरे उत्साह के साथ अपने काम में लगी रही। उन्हें क्या पता था कि यह उनकी आखिरी यात्रा होगी।
1: दर्दनाक दिन 1 फरवरी 2003। 16 दिन का मिशन पूरा हो चुका था। पूरी दुनिया को कोलंबिया की सुरक्षित वापसी का इंतजार, लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय स्पेस शटल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। कुछ ही मिनटों में पूरा यान टूटकर बिखर गया। उसमें सवार सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई। ये खबर सुनकर पूरी दुनिया शॉक में रह गई। भारत ने अपनी बहादुरी बेटी को खो दिया, लेकिन उसके सपने, उसकी मुस्कान और उसकी प्रेरणा आज भी जीवंत है। उनका परिवार कल्पना चावला ने 1983 में उड़ान प्रतीक्षण जीन पीरिये हैरिसन से मुलाकात की और बाद में दोनों ने विवाह कर लिया। 1990 में वे अमेरिका की नागरिक बनी, लेकिन भारत और अपने जन्म स्थान करनाल से उनका जुड़ाव हमेशा बना रहा। उनके प्रसिद्ध शब्द, कल्पना चावला अक्सर कहा करती थी, मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ। मैंने अपना हर पल अंतरिक्ष के लिए जिया है और अगर जरूरत पड़ी तो उसके लिए मरूंगी। उनके ये शब्द आज भी हर युवा को बड़े सपने देखने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो श्रोताओं, अब हम बात करेंगे इनके सम्मान और पुरस्कार के बारे में। उनके निधन के बाद उन्हीं के कई प्रतिष्ठित सम्मान दिए गए, जिनमें शामिल है नासा स्पेन फ्लाइट मेडल, कांग्रेशनल स्पेन मेडल ऑफ ऑनर, और अब हम बात करेंगे उनके नाम पर बने स्मारक। आज भी दुनिया में कई संस्थान और स्थान उनका नाम गर्व से धारण किए हुए हैं। भारत के मौसम उपग्रह कल्पना एक का नाम उनके सम्मान में रखा गया। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रवास के नाम पर है। हरियाणा सरकार ने कल्पना चावला तारा मंडल की स्थापना की। नासा ने उनके नाम पर सुपर कंप्यूटर सम्मानित किया। अमेरिका की कई सड़कों, भवनों और छात्रवृत्तियों का नाम भी उनके नाम पर ही रखा गया।
1: उनकी कहानी क्या सिखाती है? कल्पना चावला जी की कहानी केवल एक अंतरिक्ष यात्रा की कहानी नहीं है साथियों, ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने छोटे शहर से निकलकर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, उन्होंने केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया। इसलिए आज भी जब कोई बच्ची आसमान की ओर देखकर बड़े सपने देखती है तो लोग कहते हैं एक और कल्पना चावला तैयार हो रही है। कल्पना चावला भले ही आज हम बीच नहीं है, लेकिन श्रोताओं, उनका जीवन हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को सच करना चाहती है। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर हौसले बुलंद हो, मेहनत ईमानदारी से हो और सपनों पर विश्वास हो तो करनाल की एक साधारण लड़की भी सितारों तक पहुंच सकती है। कल्पना चावला केवल एक नाम नहीं बल्कि साहस, मेहनत, जुनून और सपनों की उड़ान का दूसरा नाम है। सपने देखिए, क्योंकि सपने ही आपको आसमान से भी आगे ले जाते हैं। तो दोस्तों, अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद लौट कर आएंगे। फिर बात करने वाले हैं हम कल्पना चावला जी के प्रसिद्ध विचार और उनसे मिली प्रेरणा के बारे में। तो बने रहिए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6।

0: हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है महिला मंच में, आपके दोस्त आरजे खुशी। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कल्पना चावला जी के बारे में। और अभी मैंने आपसे कहा भी था कि कल्पना चावला जी के प्रसिद्ध विचार और उनसे मिलने वाली प्रेरणा के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस बीटी की, जिसने सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। एक ऐसी बेटी जिसने बचपन में आसमान को देखा और फिर एक दिन उसी आसमान के पार चली गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कल्पना चावला जी की। फ्रेंड्स, किसी इंसान की असली पहचान सिर्फ उसके काम से नहीं होती बल्कि उसके विचारों से होती है। उसके सोचने का तरीका ही उसे भीड़ से अलग बनाता है। कल्पना चावला भी ऐसी ही शख्सियत थी। उनके विचार आज भी लाखों युवाओं को प्रेरित करते हैं। उनके विचारों और उनसे मिलने वाली सीख को विस्तार से समझते हैं। पहला विचार, सपनों से सफलता तक का रास्ता हमेशा मौजूद होता है, बस उसे देखने की नजर, उस पर चलने का साहस और अंत तक चले रहने का धैर्य होना चाहिए। दोस्तों, ये केवल एक वाक्य नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का मंत्र है। आज हम में से बहुत से लोग सपने तो देखते हैं, लेकिन मुश्किल आते ही हार मान लेते हैं। कल्पना चावला जी कहती हैं कि रास्ता हमेशा होता है, जरूरत है तो सिर्फ उसे खोजने की। अगर रास्ता नहीं दिख रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता है ही नहीं। कई बार मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें खुद रास्ता बनाना पड़ता है। कल्पना चावला जी ने भी यही किया। करनाल जैसे छोटे शहर से निकलकर नासा तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी अपने सपनों का साथ नहीं छोड़ा। अगर आपका सपना बड़ा है तो आपकी मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए।
1: तो श्रोताओं, हमने कल्पना चावला जी के बारे में जाना, लेकिन उन्हीं के लिए उनकी जो कहानी है आजकल की पीढ़ी के लिए एक मिसाल बन चुका है। समय बदलता है, तकनीकी बदलती है, दुनिया बदलती है, लेकिन कुछ लोगों की कहानियां कभी पुरानी नहीं होती। कल्पना चावला की कहानी भी ऐसी ही है। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका जीवन आज की पीढ़ी के लिए एक ऐसी किताब है जिसकी हर पंक्ति हमें कुछ नया सिखाती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर आज के युवाओं, बच्चों और हम सभी को कल्पना चावला जी के जीवन से क्या सीख मिलती है। बड़ा सपना देखने से कभी मत डरिए। कल्पना चावला जी एक छोटे से शहर करनाल में पैदा हुई थी। उस समय बहुत कम लोग सोचते थे कि भारत की कोई लड़की अंतरिक्ष तक पहुंच सकती है, लेकिन उन्होंने अपने सपनों की ऊंचाई और कभी छोटी नहीं होने दी। आज कई युवा सोचते हैं कि हम छोटे शहर से हैं, हमारे पास ज्यादा सुविधाएं नहीं है, इसीलिए हम बड़े सपने नहीं देख सकते। लेकिन कल्पना चावला की कहानी बताती है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। हर सपना बड़ा होता है तो मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी सफलता चाहता है। सोशल मीडिया पर किसी की सफलता देखकर लोग सोचते हैं कि सब कुछ बहुत आसान है, लेकिन सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत, संघर्ष और धैर्य छिपा होता है। कल्पना चावला जी ने भी दिन रात पढ़ाई की, रिसर्च की, कठिन ट्रेनिंग पूरी की और हर चुनौती का सामना किया। उनकी सफलता किस्मत से नहीं बल्कि मेहनत से मिलती है। और ये बात सही है, सपना सिर्फ आप देखते रहेंगे तो वो पूरा कभी नहीं होता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। हर इंसान के जिंदगी में मुश्किलें आती हैं। कई बार मेहनत के बाद भी मन चाहा परिणाम नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हम रुक जाए। कल्पना चावला जी ने हर चुनौती का सामना मुस्कुरा कर किया। उन्होंने कभी हार को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। यही सोच हमें भी अपनानी चाहिए। सीखना कभी बंद मत कीजिए। डिग्री लेने के बाद भी उन्हें पढ़ाई नहीं छोड़ी, नई तकनीकी सीखी, रिसर्च की, खुद को लगातार बेहतर बनाया। आज के युवाओं के लिए ये बहुत ही बड़ी सीख है। अगर हम रोज कुछ नया सीखते रहेंगे तो समय के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। जो सीखना छोड़ देता है वह आगे बढ़ना भी छोड़ देता है। आज मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया हमारे जिंदगी का हिस्सा है। इनका सही उपयोग बहुत जरूरी है, लेकिन अगर पूरा समय सिर्फ मोबाइल पर ही निकल जाए तो सपने पूरे नहीं होते। कल्पना चावला जी ने अपना समय सीखने, पढ़ने और अपने लक्ष्य पर काम करने में लगाया। यही कारण है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी तक पहुंची। समय सबसे कीमती संपत्ति है, जो इसका सम्मान करता है वही आगे बढ़ता है। और कहते हैं न श्रोताओं, आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत है। जब लोग कहते थे कि यह मुश्किल है, तब भी कल्पना चावला जी कहती थी, मैं कोशिश करूंगी। उन्हें खुद पर भरोसा था। आज के युवाओं को भी अपनी क्षमता पर विश्वास रखना चाहिए। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। और इस समाज में लड़का और लड़की बराबर है। कल्पना चावला जी ने साबित किया कि सपनों का कोई लिंग नहीं होता। उन्होंने उन सभी धारणाओं को तोड़ा जिनमें कहा जाता था कि कुछ क्षेत्र सिर्फ पुरुषों के लिए हैं। आज हर बेटी को यह विश्वास होना चाहिए कि अगर वह मेहनत करेगी तो किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकती है। और हर बेटे को यह सीखना चाहिए कि बेटियों को बराबर का सम्मान और अवसर देना हमारी जिम्मेदारी है। अपने देश और अपनी पहचान पर गर्व कीजिए। अमेरिका में रहने के बावजूद कल्पना चावला जी ने कभी अपनी भारतीय पहचान नहीं छोड़ा। वे हमेशा अपने स्कूल, अपने देश को याद करती थी। आज की पीढ़ी को भी अपनी भाषा, संस्कृति और देश पर गर्व होना चाहिए। दुनिया में कहीं भी जाए पर अपनी जड़ों को कभी मत भूलिए और मुश्किलों से कभी भागिए मत। जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब सब कुछ कठिन लगने लगता है, लेकिन वही लोग इतिहास बनाते हैं जो मुश्किल समय में भी हिम्मत रखते हैं। कल्पना चावला ने हर चुनौती का डटकर सामना किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि समय से भागने के बजाय उनका समाधान खोजिए। सफलता केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी होनी चाहिए। कल्पना चावला की उपलब्धियां सिर्फ उनकी अपनी नहीं थी। उनकी सफलता ने लाखों बच्चों, खासकर बेटियों को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी। सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के जीवन में भी उम्मीद जगाए। और इसी शो में युवाओं के लिए विशेष संदेश, अगर आपके पास कोई सपना है तो आज से ही उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। डेली थोड़ा थोड़ा सीखिए, अपनी गलतियों से सीखिए, समय का सम्मान कीजिए, माता पिता और शिक्षकों का आदर्श कीजिए, अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखिए। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण, कभी यह मत सोचिए कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि इतिहास उन्हीं लोगों ने लिखा है जिन्होंने कहा मैं कोशिश जरूर करूंगा। कल्पना चावला ने हमें सिर्फ अंतरिक्ष की कहानी नहीं दी, बल्कि जीवन जीने का तरीका भी सिखाया। उन्होंने सिखाया कि सपने देखो, मेहनत करो, सीखते रहो, डरो मत और कभी हार मत मानो। तो याद रखिए, कल्पना चावला का शरीर भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सोच, उनका साहस और उनकी प्रेरणा आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जीवित है। तो श्रोताओं, बस बने रहिए आरजे रीना और आरजे खुशी के साथ इस महिला मंच शो में। एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद हम फिर से कनेक्ट होंगे आप सभी के साथ और करेंगे ढेर सारी बातें और लेंगे यहाँ से जाने की इजाजत।

0: तो दोस्तों, एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक अभी हमने लिया था और हम फिर से हाजिर हो गए हैं आप सभी का फेवरेट शो लेकर महिला मंच, और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कल्पना चावला जी के बारे में और उनका तीसरा विचार बहुत ही प्रेरणादायक है, बहुत ही खूबसूरत है, तो मैं आप सभी तक साझा करना चाहती हूँ। मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, मैंने अपना हर पल अंतरिक्ष के लिए जिया है। दोस्तों, सोचिए कितना बड़ा जुनून होगा जब कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी एक सपने के नाम कर देता है। आज हम छोटी छोटी प्राणियों में अपना लक्ष्य बदल देते हैं, लेकिन कल्पना जी ने कभी अपना सपना नहीं बदला। उनकी मंजिल सिर्फ एक थी, अंतरिक्ष। लक्ष्य बदलते रहेंगे तो सफलता भी दूर होती जाएगी। साथियों, आपने कभी सोचा है आपका सपना क्या है? क्या आपने उसके लिए मेहनत करनी शुरू की थी या सिर्फ सोच रहे हैं? एक दिन करेंगे। याद रखिए, सपने इंतजार नहीं करते। जो काम आपको सबसे ज्यादा खुशी देता है, उसी में अपना भविष्य खोजिए। कल्पना चावला जी को बचपन से ही हवाई जहाज पसंद थे। लोगों ने कहा लड़कियां पायलट नहीं बनती, उन्होंने किसी की नहीं सुनी। आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है। दुनिया क्या कहती है, इससे ज्यादा जरूरी है आपका दिल क्या कहता है। अगर कल्पना चावला जी दूसरों की बातें सुन लेती तो शायद आज इतिहास में उनका नाम नहीं होता। और उनका पांचवा विचार, डर होना गलत नहीं, डर के कारण रुक जाना गलत है। अंतरिक्ष मिशन आसान नहीं होते, हर उड़ान में खतरा होता है, लेकिन कल्पना चावला जी ने कभी डर को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने खतरों को समझा, लेकिन अपने सपनों को उससे बड़ा रखा। और उनकी सीख, साहस का मतलब डर का खत्म होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना। तो दोस्तों, इसी प्रेरणादायक कहानी के साथ अब हम लेते हैं आपसे जाने की अनुमति। मिलेंगे आपको एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
5: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। इस विशेष कार्यक्रम में जो आपको सतर्क कर रहा है, ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन बैंक है। तो दोस्तों, आखिर मोबाइल और UPI सुविधा भी आपके लिए खतरनाक हो सकती है, इस पर बात करेंगे। दोस्तों, आज हम मोबाइल से पैसे भेजते हैं, बिल जमा करते हैं, खरीदारी करते हैं और साथ में बैंकिंग भी करते हैं, लेकिन जरा सी लापरवाही आपका पूरा बैंक बैलेंस लीक कर सकती है। इसी लापरवाही का फायदा उठाते हैं साइबर ठग। तो चलिए आपको एक ड्रामे के जरिए मैं सारी बात समझाता हूँ। रमेश, हेलो, उधर से आवाज आती है। मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ सर, आपके बैंक अकाउंट में संदिग्ध निशन हुई है। क्या मेरा पैसा सुरक्षित है ना? हाँ सर, बस सुरक्षा के लिए आपके फोन पर जो OTP आएगा वह बता दीजिएगा। OTP आया है, मैं बता देता हूँ। अरे, मेरा अकाउंट तो खाली हो गया और पैसे कट गए हैं। और इस तरह रमेश UPI फ्रॉड का शिकार हो जाता है। आखिर UPI और मोबाइल फ्रॉड कैसे होता है? दोस्तों, मोबाइल और UPI फ्रॉड आम तौर पर इन तरीकों से होता है। बैंक अधिकारी बनकर कॉल किया जाता है, OTP या UPI पिन मांगा जाता है, फर्जी ऐप इंस्टॉल करवाए जाते हैं, स्क्रीन शेयर करवाई जाती है, रिफंड या इनाम का लालच दिया जाता है। याद रखिए, OTP और UPI पिन सिर्फ आपके लिए ही है। खतरे के संकेत, अगर कभी ये बातें हो तो समझ जाइए खतरा है। कोई OTP या आपका पिन पूछे, जल्दी करने का दबाव डाले, कहे अकाउंट बंद हो जाएगा, अनजान ऐप डाउनलोड करवाए, तो असली बैंक कभी ऐसा नहीं करता है। मोबाइल और UPI को सुरक्षित कैसे रखें? दोस्तों, इन आसान नियमों को अपनाइए। OTP, UPI पिन किसी को ना बताएं। मोबाइल में लॉक और बायोमेट्रिक रखें। केवल ऑफिशियल ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। फोन और एप्स को अपडेट रखें। पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग ना करें। अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। खासकर मैं सलाह देना चाहूंगा बुजुर्गों और बच्चों को। श्रोताओं, UPI और मोबाइल फ्रॉड के शिकार ज्यादातर बुजुर्ग, बच्चे, नए स्मार्टफोन यूजर, कम तकनीकी जानकारी वाले लोग होते हैं। इसलिए कोई भी कॉल आए तो पहले परिवार से पूछें, OTP को चाबी समझें, किसी को बिल्कुल ना दें, शक हो तो कॉल तुरंत काट दें। अगर गलती से आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो, पैसे कट गए हो, OTP शेयर हो गया हो, गलत ऐप इंस्टॉल हो गया हो, तो देर ना करें, कॉल करें 1930। हाँ जी, शिकायत दर्ज करें www.cybercrime.government.in पर। जितनी जल्दी शिकायत, उतनी ज्यादा रिकवरी की संभावना। साइबर सुरक्षा की जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर भी विजिट कर सकते हैं। मोबाइल और UPI सुरक्षा के लिए 5 सुनहरे नियम। OTP और पिन कभी साझा न करें। बैंक बनकर आने वाली कॉल पर भरोसा न करें। अनजान ऐप और लिंक से बचें। मोबाइल को हमेशा लॉक रखें। डर नहीं, समझदारी से काम लें। श्रोताओं, डिजिटल भुगतान आसान है, लेकिन सावधानी के बिना खतरनाक। मोबाइल आपका साथी है, उसे सुरक्षित रखिए। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो आपको कर रहा है सतर्क फ्रॉड से, ताकि आप बच सकें। तो दोस्तों, जैसा कि इस कार्यक्रम में बात हुई कि आपका UPI, हां जी, उसकी वजह से भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ये बात तो आप भी मानेंगे कि आपका ये जो स्मार्टफोन है सिर्फ एक स्मार्टफोन नहीं है, ये आपका बैंक है। आप कहीं भी जा रहे हैं तो ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर रहे हैं तो सावधान होकर करें, क्योंकि कभी कभी गलत QR कोड से भी आपका नुकसान हो सकता है और शायद आपका पैसा जा सकता है। हम सभी को पता है पैसा कमाने में जितनी मुश्किलें आती हैं ना, तो अगर वो गलती से कोई आपसे ले ले बिना आपकी परमिशन से, तो शायद सबसे ज्यादा नुकसान हम ही को होता है। तो सतर्क रहें, सेफ रहें। ये महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलती रहेंगी FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ के माध्यम से। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट RJ राज। अभी के लिए लेता हूं यहां से अलविदा। तो स्टे सेफ।

पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित की गई। पहले सदन के बाद राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब

0: की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जो जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: लोकसभा में भी हंगामे की स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।
2: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा।
0: दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर संसद के मॉनसून सत्र को बाधित करने का आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज सुबह नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस और उसके गठबंधन दल ने प्रश्नकाल तथा शून्यकाल के दौरान हंगामा किया।
3: करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक सेशन के ऊपर। सभी सांसद अपने क्षेत्रों से प्रश्न लेकर आते हैं, वो चाहते हैं कि प्रश्न पूछा जाए, मंत्रालय जवाब दे, मगर जब से सदन आरंभ हुआ है क्वेश्चन आवर पार्लियामेंट में हो नहीं रहा। जीरो आवर के लिए पार्लियामेंट में बाधाएं उत्पन्न की जा रही, लगभग किसी बिल पे चर्चा नहीं हो रही।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में और संशोधन करेगा। जन और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 आज राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश करते हुए बताया कि इसका उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक कठोर बनाने तथा जन्म और मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में स्थायित्व लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वे आज राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर दे रही थी। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत गन्ना, अनाज, दलहन, तिलहन और अन्य कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना PLI एक बड़ी सफलता के रूप में उभरी है, जिससे न केवल प्रमुख क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा मिला है बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक विकास को सहायता देने वाले एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में भी सहायता मिली है।
4: सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME को कई तरह से लाभ मिला है। सबसे पहले MSME की परिभाषा का दायरा बढ़ाया गया है। उन्हें मिलने वाली सभी सुविधाएं पहले की तरह जारी है। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कानून में संशोधन किए गए हैं, जिससे 90 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान संभव हो रहा है। साथ ही उद्यम पोर्टल पर MSME के पंजीकरण होने से उनके लंबित भुगतान का निपटारा भी और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को विवादास्पद बयान के संबंध में पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया। कावेरी जल विवाद को लेकर कल DMK के किसान विरोध प्रदर्शन में श्री उदयनिधि के विवादास्पद भाषण के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। तंजावुर की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप है कि उनके भाषण में महिलाओं के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। आगे की कार्रवाई के लिए उदयनिधि को तंजावुर ले जाया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। भाजपा के राज्यसभा सांसद शिवेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की मंगल मिलन बैठक में वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर चर्चा हुई।
5: संदेश बिल्कुल साफ था, जो हमारे जो 12 साल के काम हुए हैं और पीछे के जो काम हुए उसकी तुलना में देश जो है विकास किया है, और जो लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का आने वाले समय में 2047 का, उस लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं। मनसुख भाई जी ने एक एक विषय पर विस्तार से बताने का काम किया, स्पोर्ट्स के बारे में, GDP ग्रोथ के बारे में।
0: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि E20 ईंधन नीति के विरोध में अरविंद केजरीवाल का प्रस्तावित मार्च भारतीय किसानों के हितों के खिलाफ है, जिन्हें एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम से लाभ मिल रहा है।
6: उनका ये विरोध भारत के किसानों के आमदन का विरोध है। जो किसान मक्का पैदा कर रहा है, जो किसान गन्ना पैदा कर रहा है, उसके पास करोड़ों अरबों रुपए जा रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं। और ये जो भी मिलाया गया है, जितना भी मिलाया गया है, वो साइंटिफिक तरीके से मिलाया गया है और प्रमाणिक तरीके से हुआ है। इसका किसी भी वाहन पर कोई असर नहीं हो रहा है।
0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संशोधन विधेयक 2026 के अंतर्गत किसी भी राज्य और लाभार्थी को मिलने वाले अनाज में कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये जानकारी दी। श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है।
7: सभी हितधारकों ने अपने सुझाव दिए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सार्वभौमिक कवरेज के संदर्भ में देश के 75% परिवारों में 4 से कम लाभार्थी हैं। इन सभी परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है। वहीं लगभग 14% परिवार ऐसे हैं जिनमें केवल एक सदस्य है, ऐसे परिवारों को भी 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है।
0: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थ नियंत्रण के क्षेत्र में 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। वर्ष 2021 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस भारत लाया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने वर्ष 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। गृहमंत्री अमित शाह ने भगोड़ों के खिलाफ 3 सूत्री रणनीति पर बल दिया, जिसमें वैश्विक संपर्क, मजबूत समन्वय और कुशल कूटनीति शामिल हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले की CBI जांच की मांग करते हुए भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप लगाए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदीव्य कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। ये समिति छात्रों से बातचीत करेगी और 1 से 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो का खंडन किया है, जिसमें प्रधानमंत्री को पुराने सिक्कों की प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए सरकार अधिकृत खरीदार का समर्थन करते हुए दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और इसे डिजिटल रूप से छेड़छाड़ करके बनाया गया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी सहित प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: ओडिशा में बाढ़ के बाद हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। सोमवार रात से महानदी में बाढ़ का पानी कम होने लगा है। हालांकि कई परिवार अभी भी बेघर है, क्योंकि निचले इलाकों से पानी पूरी तरह नहीं निकला है। इस बीच हीराकुद बांध प्रशासन पानी का बहाव कम होने के बाद 13 स्लुइस गेटों से नियंत्रित तरीके से बाढ़ का पानी छोड़ रहा है, जिससे जलाशय पर दबाव कम करने में मदद मिल रही है। IMD ने अगले 2 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में आंधी तूफान और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: केरलम के 8 जिलों में आज मूसलाधार वर्षा की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
9: केरलम के 14 जिलों में से 8 जिलों में रेड अलर्ट और 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और बाढ़ के कारण 13,000 से अधिक लोग अब भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने पथनमथिट्टा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरल, माहे और दक्षिण आंध्रिक कर्नाटक में तेज वर्षा का अनुमान है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर गोलीबारी की और आंसू गैस के गोले दागे। समिति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घटनास्थल का फुटेज साझा करते हुए ये जानकारी दी। ये घटनाएं पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की बढ़ती क्रूरता के बीच हुई है। यहां पिछले कुछ दिनों में कथित तौर पर 50 से अधिक लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। होर्मुज डलडमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान की प्रस्तावित शांतिवार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ गई है। एक मालवाहक पोत पर आज होर्मुज डलडमरू मध्य से गुजरते समय मिसाइल से हमला होने की खबर है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के अनुसार ये घटना रणनीतिक जलमार्ग के दक्षिणी किनारे पर ओमान के अल खसाब से लगभग 20 समुद्री मील उत्तर पूर्व में हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय की जोड़ी ने पुरुष डबल्स का पहला मैच जीत लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने के बाद बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन के विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दोस्त आरजे खुशी। और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ में
1: आरजे रीना भी है।
0: हाँ जी, हम हाजिर हैं आपका फेवरेट शो लेकर महिला मंच, जहाँ पर बात होती है महिलाओं के बारे में, घर परिवार के बारे में, फैमिलीज के बारे में।
1: करेक्ट।
0: तो अच्छा, अभी दोस्तों मैं आपको बताने वाली हूँ, अब हमने घर परिवार की बात छेड़ी ही है तो बताते हैं कि आजकल न्यू जनरेशन है, रिलेशन बदल रहे हैं, रिश्ते बदल रहे हैं, फासले घरों में नहीं अब दिल में बनते जा रहे हैं।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने
0: रीना जी। कभी कभी ऐसा होता है कि शाम के समय जब मैं घर के आंगन में बैठकर अपने बीते पलों को याद करती हूँ ना, तो मन मतलब खुश हो जाता है, उन पुरानी यादों में लौट जाता है जब रिश्तों में एक अलग ही मिठास हुआ करती थी। तब घर छोटे थे लेकिन दिल बहुत बड़े हुआ करते थे। तब उस समय भी ना सुविधाएं बहुत कम थी लेकिन अपनों के लिए समय बहुत था।
1: ये सही कहा तुमने, उस टाइम चाहे सुविधाएं कम थी लेकिन अपनों के लिए समय बहुत ज्यादा था। हर इंसान एक दूसरे की मदद करता था उस समय, लेकिन अब फोन आ गया है, हर कोई फोन में बिजी रहता है, भले ही कमरे बड़े हो गए हैं लेकिन
0: दिलों में जगह कम हो गई है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने।
0: और पता है क्या होता है ना रीना, जैसे हम लोग पहले के टाइम में, मैं बताती हूँ तुम्हें, जब कोई फोन नहीं था, कोई ऐसा इंटरनेट का सिस्टम नहीं था उस टाइम पे, था लेकिन बहुत कम थे।
1: मतलब वही टेलीफोन वाला जो कनेक्ट होते थे।
0: और एक वो वाला टेलीफोन की याद है आपको, जिसमें एक रुपए डाल के बात किया करते थे।
1: एक रुपए डाल के बात किया करते, मिनट के हिसाब से होता था, जैसे मिनट खत्म भैया अधूरी बात रह जाती थी,
0: आधा हेलो कुछ बोलते बोलते।
1: तुम्हें पता है क्रेज बहुत होता था यार, जो हमने अब की बार बात नहीं करी ना, पक्का पिछली बार जो हम बात करेंगे ना तो उस बात को पहले रखेंगे, नोट करके रख लेते
0: वो
1: थे।
0: हम पहले नोट करते कि हमें क्या से शुरू करना है, क्या बोलना है, तो टाइम बहुत ही खूबसूरत था।
1: और अब तो पता ही नहीं चलता है कि कितने दो घंटे चार घंटे निकाल दो, इंसान बोर होने लगते हैं, काट दे फोन।
0: ऐसा होता है,
1: बहाना मारना पड़ता है, अच्छा चल यार किसी का ना कॉल आ रहा है,
0: मुझे काम है, मैं अभी फोन रखती हूँ। और पता है तुम्हें रीना, पहले के टाइम में क्या होता था मैं आपको बताती हूँ। जैसे अभी आपने बात की कि समय के बारे में, तो पहले ना इंसानों के हाथ में वॉच नहीं होती, पहले लोगों के हाथ में ज्यादा वॉच नहीं होती थी लेकिन टाइम सबके पास होता था। आजकल घड़ी सबके पास है, मोबाइल सबके पास है लेकिन वक्त किसी के पास नहीं है।
1: अरे पहले के इंसान ना आसमान को देखते थे और टाइम बता देते थे,
0: धूप को गेस करके ना।
1: और पहले के टाइम में ना यही होता था,
0: वॉच
1: इंसान गैस कर लेता था, अच्छा अब धूप यहाँ आ चुकी है तो पक्का 3 बज चुके हैं, अब 5 बज चुके हैं, अब 7 होने वाली है, ये होता था। और अब हर किसी के हाथ में वॉच है, फोन है, मतलब घड़ी भी बहुत रेयरी बांधते हैं अब, सिर्फ दिखावे के लिए कि हाँ
0: शॉप के लिए घड़ी बांधते हैं, लेकिन टाइमिंग तो
1: टाइम तो फोन से ही देखते हैं।
0: सेम टू यू। और लेकिन पता है रीना तुम्हें, पहले के टाइम में, और मैं आपको बताती हूँ 90s की अगर बात करें हम, तो 90s के समय में ना जब छुट्टियाँ हुआ करती थी, जैसे अभी छुट्टियाँ चल रही है, समर सीजन है, तो हम लोग नानी के घर जाने के लिए इतना एक्साइटमेंट रहता था हमारे मन में बहुत ज्यादा। और घर जाकर नानी के वो कहानियां सुनना, नानी टेस्टी खाना बनाती थी बहुत ज्यादा हमारे लिए, स्पेशली बच्चों के लिए, कि कब आ रहे हो, और बहुत ही खूबसूरत एकदम मतलब गोल्डन समय था उस टाइम का। आजकल बच्चों को बोलो कि नानी के घर जाओगे, नहीं आपको आप जाइए, हमें बस फोन दी जाइएगा। आज की जनरेशन के बच्चे ऐसे हो गए हैं।
1: लेकिन पता है नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी की के बीच का जो रिश्ता आज समाज के सबसे महत्वपूर्ण

0: उन विषय में से एक है। यह सिर्फ माता पिता और बच्चों की बात नहीं है, बल्कि दादा दादी, नाना नानी, बहू बेटी, भाई बहन और पूरे परिवार की कहानी है।
1: और कहते हैं ना कि हर पीढ़ी को लगता है कि अलग अलग पीढ़ी उससे अलग है।
0: हाँ।
1: शायद हमारे माता पिता ने भी हमारे बारे में यही सोचा होगा।

0: बारे में यही सोचते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि बदलाव की रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई है।
1: हाँ, आज का बच्चा दुनिया को मोबाइल स्क्रीन पर देख रहा है और उसके दोस्त सिर्फ मोहल्ले तक सीमित नहीं है बल्कि दुनिया के किसी भी कोने तक पहुँच सकती है। उसके सपने बड़े हैं, सोच अलग है और सवाल भी बहुत अलग है।
0: लेकिन क्या ये गलत है?
1: नहीं, हर दौर की अपनी पहचान होती है। जिस तरह हमारे समय में रेडियो, पत्र और परिवार की बैठकों का महत्व था, उसी तरह आज डिजिटल दुनिया है, नई पीढ़ी का हिस्सा है। समस्या तकनीकी नहीं है, समस्या तब शुरू होती है जब तकनीकी रिश्ते की जगह लेने लगती है।
0: तो रीना, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ।
1: अरे सुनाओ सुनाओ, मुझे तो, मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ जब, मतलब कहानी जब मैं सुनती हूँ ना, मुझे अपनी नानी की याद आती है, अपनी दादी की याद आती है।
0: तो तुम मुझे नानी बनाना चाह रही हो?
1: अरे नहीं नहीं, मतलब एक कहानी के नाम से सुनाता है ना,
0: नानी का चेहरा ही सामने आता है,
1: क्योंकि जब रात को नींद नहीं आती थी तो वो कहानी सुनाया करती थी।
0: एग्जैक्टली।
1: तो चलो सुनाओ, मैं थोड़ा जानना चाहती हूँ।
0: हाँ, तो एक बुजुर्ग माँ रोज शाम को अपने बेटे का इंतजार करती थी। बेटा घर तो आता था लेकिन आते ही मोबाइल में व्यस्त हो जाता था। माँ कई बार बात शुरू करती लेकिन बेटा कह देता, अभी नहीं माँ, थोड़ा काम है। एक दिन एक माँ ने बेटे से पूछा, बेटा क्या मैं भी तुम्हारा मोबाइल देख, क्योंकि अब तुम सबसे ज्यादा समय उसी के साथ बिताते हो। ये सुनकर बेटा कुछ पल के लिए चुपचाप हो गया। यही कहानी सिर्फ एक घर की नहीं, शायद हमारे आसपास ऐसे कई घरों की है जहाँ लोग साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं रहते।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। नई पीढ़ी को अक्सर शिकायत होती है कि उन्हें समझा नहीं जाता, लेकिन अब वही पीढ़ी लगता है कि बच्चे उनकी इज्जत नहीं करते हैं। सच यह है कि दोनों ही पक्ष कहीं न कहीं दुखी है और दोनों ही प्यार चाहते हैं। रिश्ते तब कमजोर नहीं होते जब विचार अलग होते हैं। रिश्ते तब कमजोर होते हैं जब हम यह मान लेते हैं कि सामने वाला हमें समझ ही नहीं सकता है। और पता है खुशी, आजकल ना ये सब जो हम सोचते हैं कि हमें कोई समझ नहीं पाता है, समय नहीं दे पाता है, वो सिर्फ और सिर्फ फोन है जो हमें इंसानों पास तो रखता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम फोन में बिजी रहते, किसी को टाइम नहीं दे पाते।
0: बिल्कुल, तुम कह तो सही रही हो। एक माँ अपनी बेटी से कहती है, हमारे समय में ऐसा नहीं होता था। बेटी जवाब देती है, माँ आपका समय अलग था और मेरा समय अलग है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे की बात सुन ले तो शायद कोई विवाद ही नहीं होगा।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। आज बच्चों को आदेश से ज्यादा संवाद की जरूरत है। उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि घर उनकी बात सुनता है। वही बच्चों को भी यह समझना होगा कि माता पिता की रोक टोक कई बार प्यार और चिंता का दूसरा नाम होता है।
0: यहाँ महिलाओं की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। माँ घर का वह पुल होती है जो पीढ़ियों को जोड़ती है। एक माँ चाहे तो दादी और पोते के बीच की दूरी कम कर सकती है, एक बहू चाहे तो परिवार में संवाद का माहौल बना सकती है।
1: क्या बात है, बहुत ही बड़ी बात कही है तुमने। तो हम अक्सर बच्चों को अच्छी पढ़ाई, अच्छे संस्कार और अच्छे भविष्य देने की बात करते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें रिश्तों की अहमियत सिखाते हैं?
0: क्या हम उन्हें बता रहे हैं कि दादी नानी की कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं बल्कि जीवन का अनुभव है?
1: क्या हम उन्हें सिखा रहे हैं कि घर के बुजुर्ग बोझ नहीं बल्कि परिवार की जड़ें होती हैं?
0: और क्या हम खुद नई पीढ़ी की भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए रीना, रिश्ता एक पौधों की तरह होता है। उन्हें रोज थोड़ा समय, थोड़ा प्यार, थोड़ा धैर्य चाहिए। अगर हम उन्हें नजरअंदाज करेंगे तो वे सूख जाएंगे, लेकिन अगर हम उन्हें संभालेंगे तो वे जीवन भर छाया देंगे।
1: जैसे एक पेड़ हमें सिर्फ फल देता है, बदले में कुछ नहीं लेता है। आज जरूरत इस बात की नहीं है कि पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी जैसी बन जाए या नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी जैसी। जरूरत इस बात की है कि दोनों एक दूसरे को स्वीकार करें, क्योंकि परिवार वह जगह नहीं है जहां सबकी सोच एक जैसी हो। परिवार वह जगह है जहां अलग अलग सोच रखने वाले लोग भी एक दूसरे का हाथ थामे रखते हैं।
0: आज महिला मंच के माध्यम से हम छोटा सा संकल्प लें, हम अपने बच्चों को सुनेंगे,
1: हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे,
0: हम मोबाइल से थोड़ा समय निकालकर अपनों के साथ बैठेंगे।

0: क्योंकि आखिर में जन की सबसे बड़ी कमाई अपने लोग होते हैं।
1: और जब उम्र ढलने लगती है तब बैंक बैलेंस नहीं बल्कि अपनों का साथ सबसे बड़ा सहारा बनता है।
0: याद रखिए श्रोताओं, पीढ़ियां बदलती रहेंगी, समय बदलता रहेगा, लेकिन प्यार, सम्मान और संवाद ऐसे दीपक हैं जो हर दौर में रिश्तों को रोशन करते रहेंगे।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और मुझे लगता है कि देखो खुशी, हम अक्सर यही सोचते हैं ना और यही कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो, लेकिन हम सम्मान तो करते हैं, लेकिन जब वो हमें कुछ बोल देते हैं ना तो हमारे अंदर ना एक अलग सी गुस्सा आ जाता है ना कि यार क्यों बोला। मतलब हमें अपने तरीके से बातें करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब आप माँ बाप की बातें मानते हो तो बड़े खुश रहते हो, है ना।
0: एग्जैक्टली, पेरेंट्स ना हमें हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं, हमें उस समय पे थोड़ा सा लगता है कि पेरेंट्स ने क्यों बोला, लेकिन हमें उसकी वैल्यू की अहमियत हमें बाद में समझ आती
1: है। बिल्कुल,
0: आप सभी श्रोताओं से यही कहना चाहूंगी जो इस समय आप सुन रहे हैं, अपने बड़ों को टाइम दें, रिस्पेक्ट करें एंड उनसे ढेर सारा प्यार करें। जब आप ऑफिस से शाम को घर आए तो उनका हालचाल जरूर पूछें, क्योंकि वो सुबह से आपका इंतजार करते हैं कि कब शाम होगी, कब बच्चे वापस घर आएंगे। आप ज्यादा नहीं थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि आप पूरे दिन बिजी रहते हैं, माना आप थके हारे आते हैं, लेकिन जब आप भी अपने को अपनों के साथ बैठते हैं, कुछ उनके दिल का हाल जानते हैं, कुछ अपने दिल का हाल बताते हैं, तो कितना सुकून मिलता है ना। और साथियों, आज के टाइम में अगर कोई आपका अपना आपके लिए इतना बेचैन है, इतना समय निकालता है, इतना आपको वैल्यू देता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आजकल के जो रिश्ते हैं ना वो सेल्फिश हो गए हैं, और जो सच्चे रिश्ते हैं, जो अपने हैं, उनको आप संभाल कर रखो।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने, क्योंकि जब भी किसी चीज की जरूरत होती है ना तो बैंक बैलेंस नहीं देखा जाता बल्कि अपने देखे जाते हैं। और इसी के साथ हम लेते हैं यहाँ से जाने की इजाजत, कल फिर मिलेंगे एक नए कहानी के साथ और अच्छी और ढेर सारी बातें करेंगे। अभी के लिए बाबा टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए और अपने बच्चों का ध्यान रखिए, क्योंकि कहते हैं कि संस्कार बहुत मायने रखते हैं। बाय बाय श्रोताओं।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: किसान भाइयों और बहनों, आपके लिए खुशखबरी,
2: मुरादाबाद जिला सहकारी बैंक
1: 120 से अधिक वर्षों का विश्वास, विकास की नई पहचान।
2: EKCC पोर्टल के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड ऋण पाना हुआ और भी आसान। खेती की हर जरूरत का भरोसेमंद समाधान।
1: बीज, खाद, सिंचाई और फसल की तैयारी, हर कदम पर आपका अपना बैंक।
2: आसान प्रक्रिया, समय पर ऋण, किसान की

नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है FM मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और एवरीवन, वक्त हुआ है अभी 3:04 एंड खूबसूरत सा ये दोपहर है। और दोपहर के समय ना आज का जो मौसम है वो बड़ा ही प्यारा है। हवाएं भी चल रही हैं, बादल भी हो रहे हैं और हल्की गर्मी भी है, लेकिन ठीक ठाक मौसम है। जैसे कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो उससे फिलहाल आज ठीक वेदर है। एंड दोस्तों, आप भी मेरे साथ इस ब्यूटीफुल सेशन में कनेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए आपको मुझे कॉल करना होगा, तो जल्दी से कॉल कीजिएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। मैं हूँ आपके साथ, आपकी होस्ट खुशी, लेकर आई हूँ आपके लिए आपका फेवरेट शो हेलो फरमाइश, जहाँ पर आप सुनते हैं अपनी पसंद के गाने। तो फटाफट से कॉल कीजिएगा, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। तब तक मैं सुनवाती हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक अपनी पसंद का आपको, तो एंजॉय कीजिएगा।

0: साथ ही दोस्तों तेरा फितूर जब से चढ़ गए रे, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक अभी आपने सुना अरिजीत सिंह जी की खूबसूरत सी आवाज। लेकिन लगता है सिर्फ इश्क का फितूर ही नहीं चढ़ा है, हेलो फरमाइश का फितूर भी हमारे श्रोताओं पर कुछ ऐसे ही चढ़ गया है। एक कॉल खत्म नहीं होता और दूसरी कॉल का इंतजार रहता है कि अब दूसरे कॉलर कौन आने वाले हैं। हाँ श्रोताओं, होता है ऐसा। एंड बहुत सारे श्रोता इस समय हमारे लिस्नर हमें कॉल कर रहे हैं, तो आप कॉल लगाते रहिएगा और बात करते हैं अभी अपने कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, कुछ की मैम नमस्कार।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी रिहान जी, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइएगा आप कैसे हैं?
1: बस बढ़िया रे खुशी मैम। पहला सावन लग चुका है।
0: हाँ जी,
1: तो इसमें मैं थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ। जैसे आप कामर आ चुके हैं, कामर आ रहे हैं, और क्या बोलते हैं अपने जहाँ भीड़ हो रही है मत थोड़ी भीड़ से बचे लोग, और जहाँ जहाँ रोड खाली करे हैं, जहाँ सावन निकल रहे हैं वो भीड़ भाड़ में ना घुसते हैं। तो कहना क्या चाहती हैं आप?
0: आप कहना चाहते हैं कि जैसे अभी सावन का पावन महीना चल रहा है और कांवड़ती भी जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा रश है भक्तों का, तो उनको अच्छे से यू नो जाने दीजिए। एंड जहाँ कांवड़ती जा रहे हो वहाँ भी वजह ना जाए, ताकि भीड़ में कोई मुश्किल ना हो। राइट?
1: हाँ हाँ, मुश्किल ना हो ज्यादा। ये है जैसे लोग नशा करते हैं तो वो तो नशे से बचे और मोटरसाइकिल दूर दूर दूर करे, जो कांवर रोड खाली मिले, जो काम निकला है चार मोहब्बत तक वो काम करे।
0: बिल्कुल सर, बहुत अच्छा मैसेज दिया है आपने कि नशा वगैरह ना करें। एंड इस त्योहार को, इस खूबसूरत से पावन महीने को अच्छे से सेलिब्रेट करें, मनाएं। आस्था भक्ति का ये पावन महीना है।
1: जी जी जी जी
0: जी, तो बताएगा रिहान जी आप क्या सुनेंगे आज?
1: हम तो प्यार मोहब्बत समझाते हैं बाकी को।
0: जी जी, नहीं अच्छी बात है, अच्छा मैसेज देना चाहिए सर। बताइएगा आज आप क्या सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम है मोरा, टिप टिप बरसा पानी।
0: टिप टिप बरसा पानी। ओके, आपके यहाँ बारिश हो रही है क्या?
1: हाँ बादल।

0: रहा है, हल्की बारिश हो रही है।
1: अच्छा, हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो चलिए रिहान जी सुनवाते हैं ये प्यारा सा गाना। आपने हमें कॉल किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए श्रोताओं सुनते हैं सरकी पसंद का ये प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी मोहरा से, एंड उदित नारायण जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज, उनकी मधुर आवाज तो अलग ही होती है। जब उनकी आवाज में हम कोई भी ट्रैक सुनते हैं ना दोस्तों, तो बहुत अच्छा लगता है ना। चलिए सुनिएगा ये प्यारा सा ट्रैक, एंड आप भी कॉल लगाइए। मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9837896896 98378 96, ये हमारे स्टूडियो का मोबाइल नंबर है जिस पर आपको कॉल लगाना है और खुशी के साथ कनेक्ट हो जाना है। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, आप सभी का स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। खुशी आपके साथ है। और दोस्तों, अभी आपने सुना उदित नारायण जी की आवाज में प्यारा सा ट्रैक टिप टिप बरसा पानी, अक्षय कुमार और साथ में रवीना जी बहुत ही खूबसूरत नजर आए फ्रॉम द मूवी मोहरा, साथ में अलका याग्निक जी की बड़ी प्यारी सी आवाज। और दोस्तों, पानी और टिप टिप बरसा पानी, और सच कहूँ तो मानसून का मौसम ही कुछ ऐसा है, बूंदे गिरती हैं तो सिर्फ मिट्टी ही नहीं महकती, दिल के किसी कोने में दबी पुरानी यादें भी महक उठती हैं। बारिश की हर बूंद जैसे कहती है, थोड़ा ठहरो, जिंदगी को सिर्फ भागना नहीं है, जिंदगी को भगाना नहीं है, एंड थोड़ा सा जिंदगी को थोड़ा सा ठहरना है, जिंदगी में थोड़ा सा रुकना भी है, क्योंकि क्या होता है ना, आजकल की भाग दौड़ में हम जीना ही भूल जाते हैं, इतना काम में व्यस्त होते हैं कि दो मिनट के लिए सुकून से बैठकर बारिश को निहारना, गर्मा गर्म चाय का लुत्फ उठाना अलग ही होता है ना। तो थोड़ा सा रियल लाइफ से रियल लाइफ में भी आइए, जिंदगी को एंजॉय करो यार। चलो बात करते हैं अभी अपने अगले कॉलर से और जानते हैं उनकी फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार जी मैम।
0: जी, क्या नाम है आपका सर?
1: नीरज कुमार।
0: नीरज कुमार जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: हरथला मुरादाबाद।
0: हरथला से जी, बताइएगा क्या करते हैं सर आप?
1: कुछ नहीं, छोटा मोटा बिजनेस।
0: छोटा मोटा बिजनेस, ओके। छोटा मोटा बिजनेस क्या करते हैं बताइए?
1: वही डेकोरेशन का काम है।
0: अच्छा, डेकोरेशन का काम है, तो ये तो अच्छा काम है सर, छोटा मोटा। देखिए, इसमें अच्छी इनकम होती है, और आप किसी भी फंक्शन में जाते हैं, मतलब कोई भी जाएगा तो वहाँ की डेकोरेशन देखता है तो उसका मतलब एकदम वो हैप्पी हो जाता है कि अरे वाह, डेकोरेशन तो बड़ी खूबसूरत हुई है, इतना मेहनत आप करते हैं और बोल रहे हैं कि हम तो छोटा मोटा काम करते हैं। हाँ,
1: धन्यवाद।
0: मोस्ट वेलकम सर। बताइएगा आज क्या सुनेंगे आप?
1: मैं बारिश कर दूं पैसे की जरूरत हो जाए।
0: अच्छा, बारिश तो अभी मानसून स्टार्ट है, लेकिन पैसों की बारिश हो जाए तो फिर बल्ले बल्ले ना हो जाए।
1: चलिए, खुशी हो जाएंगे ना।
0: हाँ जी, तो सुनवाते हैं ये गाना। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए नीरज जी, मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये ब्यूटीफुल ट्रैक। एंड पैसा पैसा तो भैया बहुत जरूरी है, पैसा भी लाइफ में, पैसा होगा, पैसे होंगे तो बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती हैं, है ना। कई जगह ऐसा भी होता है कि पैसों की वजह से ही रिश्ते पीछे छूट जाते हैं, और पैसा मुझे लगता है कि जरूरी है, सब चीजें लाइफ में जरूरी है, पर जरूरत से ज्यादा कोई चीज भी ठीक नहीं है। तो चलो ये गाना सुनते हैं, उसके बाद बातचीत करेंगे आपसे। आप भी मुझे कॉल लगाइएगा, मोबाइल नंबर हमारा है 9837896896। मैं आपके साथ, आपकी खुशी।
2: चीज है पैसा, क्या बात है, क्या

हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वंस अगेन वेलकम बैक। खुशी है आपके साथ और शो चल रहा है हेलो फरमाइश। दोस्तों, आज हमारे प्यारे रेडियो लिस्टनर सनी गुप्ता जी के बेटे रक्षित गुप्ता का बर्थडे है एंड हैप्पी बर्थडे रक्षित। आपकी जिंदगी हमेशा खुशियों, कामयाबी और खूबसूरत पलों से भरी रहे। हर सपना आपका रियलिटी बने और चेहरे की प्यारी सी मुस्कान हमेशा बनी रहे। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू। कीप स्माइलिंग, कीप शाइन एंड हैव यू वंडरफुल बर्थडे रक्षित। तो चलिए, रक्षित का बर्थडे है तो एक प्यारा ट्रैक भी बनता है ना। और जब जन्मदिन होते हैं ना दोस्तों, तो हमारी फैमिली भी खुश होती है, लेकिन हमारे रिलेटिव भी खुश होते हैं। और जिनका बर्थडे होता है वो तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, है ना। सब दोस्त विश करते हैं, मम्मा पापा विश करते हैं। बहुत स्पेशल होता है वो डे जब हमारा जन्मदिन होता है। तो चलिए, रक्षित गुप्ता को ये बर्थडे ट्रैक हम डेडिकेट करते हैं एंड लौट कर आएंगे। तब तक आप भी मुझे कॉल कीजिएगा एवरीवन। मोबाइल नंबर हमारा है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और वक्त हुए है अभी 3:34। हमारे नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हेलो फरमाइश। हाँ जी, आपको भी याद, आप कैसे हैं, आप बताइएगा। हाँ जी, सब लोग बहुत ही अच्छे हैं, आप बताइएगा। आज आपने कॉल किया है, क्या सुनना चाहेंगे आप?
1: फिल्म का नाम है भक्ति आवाज
0: जी।
1: गाने के बोल रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चाहिए इतनी बार।
0: ठीक है सर,
1: और हमारे दोस्त है रशाद हुसैन अंसारी है
0: जी, ठीक है सर, सुनवाते हैं सभी के साथ ये खूबसूरत गाना। शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी वक्त की आवाज। लौट कर आते हैं अभी हम आपके पास।

0: गुड आफ्टरनून माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और आप भी बहुत ज्यादा खुश है ना, प्यारे प्यारे गाने जो सुन रहे हैं आप, और कॉल लग जाए तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाए। हाँ, आप प्रयास कीजिएगा, जब आप ट्राई करेंगे ना तो आपका कॉल भी लग जाएगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से कॉल लगाएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896 और बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो, गुड आफ्टरनून मैम।
0: वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप? बताइए क्या लाइबा, कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं मैम?
0: हाँ जी,
1: आपकी फैमिली में सब कैसे हैं?
0: ऑल गुड, ठीक है, एकदम फाइन। मैं भी ठीक हूँ। और आज काफी दिनों के बाद आपने कॉल किया है।
1: यस मैम, आज मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है बात करके। मतलब काफी खुशी होती है जब हम काफी लंबे समय के बाद कॉल करते हैं।
0: जी हाँ, जब हम लंबे अंतराल के बाद कॉल करते हैं तो बहुत ज्यादा खुशी होती है और वो एक्साइटमेंट भी रहता है, क्योंकि क्या होता है ना, थोड़ा सा मुझे लगता है कि ब्रेक लेना भी चाहिए।
1: हाँ, फिर ये भी तो पता होना चाहिए ना कि सामने वाला कितना प्यार करता है जो ब्रेक बनता है।
0: हाँ, वो मोहब्बत तो वैसे ही बरकरार रहनी चाहिए, हम कितने भी समय के बाद क्यों ना बातचीत करें, राइट?
1: हाँ, वैसे तो प्रोग्राम तो कंटिन्यूस ही सुनती हूँ, लेकिन पार्टिसिपेट थोड़ा सा मुश्किल हो गया मेरे लिए। फिर मेरी लाइफ का शेड्यूल ऐसा हो गया कि मतलब लाइब्रेरीज में लगता है कि हाँ, मेरा पूरा दिन लाइब्रेरी में गुजर जाता है।
0: और हमने सुना था आपका अभी स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, तबीयत ठीक नहीं थी आपकी? हाँ
1: हाँ, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा हो गई थी, वॉइस टोटल चेंज हो गई थी, मैंने अपना वर्क भी बंद कर दिया था।
0: आज तो सही है, अल्लाह
1: का शुक्र।
0: चलिए,
1: मेरे दोस्त ने बताया होगा कि लाइबा की तबीयत खराब हो गई।
0: हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने बताया था, क्योंकि क्या होता है ना, देखो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं तो पता चल भी जाते हैं। और मुझे लगता है कि देखो यार, ये मानसून जो है ना, इस समय बहुत अपना ख्याल रखने की जरूरत होती है।
1: हाँ, ये तो है कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कभी मतलब इतना कम हो जाता है, कभी इतना ज्यादा होता है ना, तो फिर मतलब इंसान एडजस्ट नहीं कर पाता,
0: नहीं कर पाता। एग्जैक्टली राइट, कभी तो बारिश हो जाती है तो सर्दी लगने लगती है, और कभी इतनी तेज धूप निकल जाती है कि पंखे में भी गर्मी लगने लगती है।
1: यस मैम, मतलब मुझे सर्दी वगैरह तो नहीं लगती, लेकिन हाँ गर्मी बहुत लगती है।
0: अच्छा, गर्मी बर्दाश्त नहीं है?
1: गर्मी इतनी सी भी मैम, मुझे ना मतलब एक हल्की सी भी ना टेम्परेचर बढ़ जाता है तो मेरे लिए बड़ा, मतलब मेरे घर वाले भी कहते हैं कि गर्मी ना हो, सर्दी हो जाए।
0: अच्छा, फिर तो आपको शिमला में रहना चाहिए।
1: हाँ, वैसे मेरी ख्वाहिश यही है कि मैं अपना घर या तो शिमला वगैरह में बनाऊं, मतलब वहाँ पे अच्छा है।
0: देखो, हमने आपके दिल की बातें जान ली हैं।
1: हाँ, मुझे ठंडी इलाके पसंद है, जैसे हिमाचल प्रदेश, कश्मीर वगैरह, कश्मीर तो मतलब ज्यादा दूर हो जाएगा।
0: शिमला अच्छा है, एंड
1: नजदीक है मेरे यहाँ से, बहुत
0: हाँ क्लोज भी है और यू नो ब्यूटीफुल भी है।
1: हाँ, फिर मुझे रील्स वगैरह देखने की जरूरत नहीं होगी, मैं खुद चली जाया करूंगी सामने से देखे।
0: या एब्सोल्युटली राइट। तो बताइएगा, आज लाइबा आपने कॉल किया है, क्या सुनना चाहती हैं आप?
1: मैम, सॉन्ग सुनने से पहले आज आपकी इजाजत तो मैं कुछ चंद लाइनें बोलना चाहती हूँ अपने दोस्त के लिए। हाल की मेरे घर की नहीं है, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ शायरी।
0: ओके ओके,
1: आई होप उसको बहुत अच्छी लगेगी, और उम्मीद करती हूँ अगर नहीं अच्छी लगेगी तो फिर भी रख लेगी सोचिए।
0: अरे सुनाइए तो सही मोहतरमा, पता तो तभी चलेगा ना।
1: हाँ, चांदवी फीका लगे तेरे चेहरे के नूर के आगे, चांदवी फीका लगे तेरे चेहरे के नूर के आगे, गुलाब भी झुक जाए तेरे हुस्न के आगे, तेरी एक मुस्कान पर अपनी हर खुशी वार दे, तेरी हर एक मुस्कान पर अपनी हर खुशी वार दे, बस तू ही साथ रहे तो जिंदगी भी तेरे नाम कर देगी।
0: बहुत खूबसूरत लाइन है, कब से डिसाइड करके रखा था कि ये मैं बोलूंगी जब ऑन एयर जाऊंगी? हाँ,
1: मैंने बहुत पहले लिखी, खुद से लिखी, कहीं से चुराई नहीं, अपने मन में उसकी तस्वीर को सामने रखा कि हाँ वो किस लायक है।
0: वेरी गुड, बहुत ही अच्छा लिखा है आपने और बहुत प्यारी शायरी है आपकी।
1: हाँ, ये स्पेशली मेरी बेस्ट फ्रेंड है अप्रोच फातिमा, उनके लिए।
0: लड़की बहुत प्यारी है वो, एंड जिस तरह से आपने लिखा है ना,
1: उसके मुझे बाल बहुत पसंद है।
0: ओके, अभी हमने देखा तो नहीं, लेकिन हाँ, मन की लड़की दिल की बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी है, नेचर बहुत अच्छा है।
1: हाँ, नेचर, और आप उसकी आईज देखोगे तो बहुत अच्छी है, मतलब वाकई में लगता है कि हाँ आईज में कुछ जादू है।
0: अच्छा जी, चलिए मुलाकात होगी तो जरूर हम देखेंगे वो जादू। फिलहाल बताइएगा कौन सा गाना सुनेंगी आप?
1: नाम मूवी का नाम है सोल्जर,
0: हाँ
1: उसमें
0: जी
1: एक सॉन्ग है तेरा रंग बल्ले बल्ले, देखा तुझे तो प्यार हो गया।
0: ओके, तो सुनवाते हैं गाना। कॉल करने के लिए
1: हाँ बिल्कुल,
0: शुक्रिया।
1: नाम ले सकती
0: हाँ
1: हूँ
0: हाँ
1: मैम?
0: बस दो ही नाम ले सकती हैं आप।
1: हाँ बिल्कुल, मैं बहुत जल्दी मिलूंगी। ऋतिक
0: ठीक है,
1: रामबस से मोहम्मद कालू, शबनम भी, अफरोज फातिमा, डायरेक्टर फातिमा, नजमा भी, राबिया एंड रुकैया फातिमा,
0: ठीक है।
1: एंड मेरे जितने फ्रेंड्स सुन रहे हैं ना, सबको घर में प्रोग्राम सुन रही हूँ।
0: हाँ आप ठीक है, आप कोई नाराज नहीं होगा। ओके
1: ठीक है मैम,
0: चलिए
1: थैंक
0: बाय,
1: यू।
0: टेक केयर, मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं लाइबा की पसंद का ये प्यारा सा ट्रैक। एंड आपका भी डांस करने का मन है ना, तो कर लीजिएगा। कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी डांस करने में, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है आप डांस करने के शौकीन हैं, थोड़ा सा शर्माते हैं, बट अगर आप अभी अकेले बैठे हैं तो कर सकते हैं डांस, ठीक है? अब कोई आपको नहीं दिख रहा है, तो चलिए शुरू हो जाइए। और बस मैं लौट कर आती हूँ इस प्यारे से ट्रैक के उस पार। यह है आपके अपने शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
3: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 खुशी के साथ। और दोस्तों, अभी आपने सुना बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी शोल्डर से, जसपिंदर नरोला जी साथ में सोनू निगम जी की खूबसूरत सी आवाज में प्यारा ट्रैक। अभी आपने सुना, म्यूजिक डायरेक्टर थे अनु मलिक जी, लिरिक्स थे समीर जी के। और अभी कनेक्ट करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, कैसे हैं आप? अपना नाम भी बताइएगा। आदाब आपको भी। क्या नाम है आपका?
1: मैम, मैं शाह आलम बोल रहा हूँ मुरादाबाद
0: जी। बताइएगा कैसे हाल चाल है आपकी सर?
1: बढ़िया मैम।
0: ओके, अच्छा ही रहना चाहिए। और बताइएगा, फैमिली में सब ठीक है आपकी सर?
1: हाँ मैम, फैमिली में सब ठीक है।
0: और कैसे चल रहा है आपका वर्क?
1: बढ़िया मैम।
0: अच्छा, तो बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: आज मैम आप अपनी पसंद का मौसम के ऊपर कोई गीत सुनवा दीजिए।
0: अच्छा, आज आप हमारी पसंद का गाना सुनना चाहते हैं?
1: आइए, हमारी मिसेज ने जो है ना फरमाइश की थी, तो उन्हें आज मैम की पसंद का गाना सुनवा दीजिए।
0: ओके, तो बिल्कुल
1: मैंने
0: सर।
1: कहा चलो ठीक है, वो उनसे कॉल लगती नहीं है मैम।
0: अच्छा, मैम से कॉल नहीं लगती तो आप कॉल लगाते हैं, राइट?
1: हाँ वो ट्राई करती है, लेकिन उन्हें नियम नहीं है पता कि कब ट्राई करनी है, जल्दी जल्दी जो मिल जाए।
0: हाँ जी, उनको ट्रिक नहीं पता है, जैसे आपको मालूम है कि कब कॉल लगाना है ना?
1: हाँ इसकी ट्रिक होती है मैम, आपसे कॉल लगाने का जो है ना कोई ट्रिक है, तो वो समझना पड़ता है पहले उसे।
0: और वो आप समझते हैं अच्छी तरह से।
1: हाँ तो मैं तो मैम बहुत टाइम से आपका फैन हूँ, ऐसा नहीं है।
0: ओके, तो आप मैम को भी थोड़ा सा गाइड कीजिए ना, ताकि वो भी कॉल लगाएं, हमें भी अच्छा लगेगा, वो भी पार्टिसिपेट करें शो में।
1: वो थोड़ा झिझकती थी, आपसे उस दिन बात करी थी तो थोड़ा शर्मा रही थी वो, तो
0: हाँ
1: मैंने कहा चलो।
0: कोई बात नहीं, अब वो नहीं शर्माएंगे, आप उनको बताइएगा, ठीक है सर?
1: हाँ मैं बताऊंगा मैम ये आप
0: जी
1: ये ठीक।
0: जी शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया सर। सुनवाते हैं एक प्यारा सा गाना आपको, मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना किशोर कुमार जी एंड साथ में लता मंगेशकर जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में ये ब्यूटीफुल गाना। क्योंकि देखिए, मानसून चल रहा है, बहुत सारे शहरों में बारिश भी हो रही है, तो ये गाना मुझे लगता है कि हाँ परफेक्ट रहेगा। तो चलिए सुनते हैं, उसके बाद बातचीत करेंगे आपसे भी।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM. सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
2: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
3: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
3: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
4: मुरादाबाद
2: से संपर्क कीजिए।
3: नियम और शर्तें लागू।

0: गुड इवनिंग एवरीवन। बाहर हल्की हुई रिमझिम बारिश भी हो रही है और समय हुआ है 4:02। खुशी है आपके साथ, शो का नाम है हेलो फरमाइश। तो आप भी मुझे कॉल लगाइएगा जल्दी से, हमें इंतजार है। एंड नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9837898906। बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ में कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सोनू कुमार।
0: सोनू कुमार जी, कहाँ से बात कर रहे हैं
1: आप?
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: बढ़िया है मैम, आप कैसी हो?
0: हाँ जी मैं भी ठीक हूँ। बताइएगा क्या सुनेंगे आज आप?
1: कोई पत्थर से ना माने मेरी दीवानी को।
0: ओके, तो ये गीत आपको सुनवा देते हैं। सोनू जी धन्यवाद आपने हमें कॉल किया। सर की फरमाइश है, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को, ये गाना सुनना चाहते हैं। तो चलिए एवरीवन सुनवा देते हैं ये गीत, उसके बाद करेंगे आपसे भी बातचीत। आप मत कहीं जाइएगा, यूं ही मुस्कुराइए और हाँ कॉल भी लगाते रहिएगा।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और अभी आपने एक खूबसूरत सा ट्रैक सुना लता मंगेशकर जी, साथ में मदन मोहन जी की खूबसूरत सी आवाज। और बात करते हैं अपने अगले कॉलर के साथ। हेलो फरमाइश।
1: हेलो। हाँ हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर।
1: आदाब।
0: आपको भी आदाब। कैसे हैं आप?
1: एकदम अच्छे हैं। आप बताइए, आप कैसे?
0: जी मैं भी ठीक हूँ। अपना नाम बताइएगा और कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं जिला रामपुर ग्राम खेड़ा से मोहम्मद कामिल बात कर रहा हूँ।
0: जी कामिल जी, तो कहाँ पर हैं अभी? रामपुर में हैं आप?
1: हाँ रामपुर में है मैम।
0: जी बताइएगा कैसा मौसम है आपके शहर का?
1: मौसम मैम एकदम अच्छा हो रहा है। कहीं तो बारिश पड़ रही है, कहीं तो सूखा है, बिल्कुल धूप निकल रही है।
0: हाँ जी हाँ जी, ऐसे ही हमारी इधर की साइड भी है, मुरादाबाद में भी। कहीं बारिश हो रही है तो कहीं
1: मौसम
0: धूप
1: काफी
0: निकल
1: अच्छा हो रहा है
0: जाती
1: मैम फिलहाल तो।
0: है। हाँ मतलब गर्मी से राहत है।
1: जी जी
0: जी तो बताइएगा आप क्या सुनेंगे आज?
1: मैम एक फिल्म का नाम है बरसात और गाने के बोले हैं करते हैं हम भी तुमसे प्यार।
0: ओके
1: ये सॉन्ग सुनवा देना और कुछ लाइन अर्ज करना चाहूंगा।
0: जी इरशाद।
1: लगता है कोई हमसे खफा है, लगता है कोई हमसे खफा है, पर उसकी हर सांस में वफा है। नहीं है उस जैसा कोई दुनिया में, तभी तो उस पर मेरी ये जान फिदा है।
0: बहुत ही खूबसूरत लाइनें हैं आपकी सर।
1: और मैम मेरे साथ में कुछ सुनने वाले भी हैं,
0: हाँ जी बताइएगा।
1: जैसे ये हैं सबसे पहले लाइबा काजमी, मोहम्मद तालिब परवेज, बसीम अकरम, मोहम्मद दानी सिद्दीकी, अनीस रहमान। ये
0: ओके
1: सब सुनना चाहेंगे मैम।
0: ठीक है सर, सभी के साथ सुनवा देते हैं प्यारा सा ट्रैक आपके पसंद का। कॉल करने के लिए
1: थैंक यू मैम।
0: शुक्रिया। मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं सर की पसंद का ये प्यारा सा ट्रैक। लौट कर आएंगे हम इस प्यारे से गाने की उस पार। आप भी मुझे कॉल लगाइएगा। मोबाइल नंबर हमारा है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और ये प्यारा सा गाना आप सुनने वाले हैं सोनू निगम जी, साथ में अलका याग्निक जी की बड़ी प्यारी सी सुरीली सी आवाज में। सुरीला सा गाना। मैं अभी आती हूँ वापस।

दोस्तों हम आपको छोड़कर कहीं नहीं गए, हम यहीं पर बने हुए हैं आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपके अपने दोस्त खुशी, और वक्त हुआ है 4:18। बहुत ही खूबसूरत सा गाना अभी आपने सुना, अलका याग्निक जी की आवाज, साथ में सुर निगम जी दे रहे थे साथ। और अभी बात

0: अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन जुड़ी है, कहाँ से कनेक्ट हुई, उनसे से जानते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, हाय दी, आदाब।
0: आपको भी आदाब, हेलो, बताइएगा क्या नाम है आपका।
1: दीदी मैं अक्का भिकनपुर जिला मुरादाबाद से अफरोज फातिमा बोल रही हूँ।
0: अफरोज जी कैसी हैं आप और कैसे आपने अपनी हंसी को कंट्रोल किया हुआ है, पहले ये बताओ।
1: दीदी बहुत अच्छा लग रहा है आज, क्योंकि मेरी दोस्ती कॉल आ गई ना, तो इसलिए।
0: और इतना ज्यादा खुश है कि वो हंसी को कंट्रोल करना चाह रही है, रोकना चाह रही है, पर रुक नहीं पा रही है वो।
1: नहीं रुक रही है दी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद लाइव की आवाज सुनी है रेडियो पर, तो इसलिए।
0: ऐसा ही होता है जब अपने बेस्ट फ्रेंड की हम आवाज सुनते हैं, उनका कॉल आता है तो बहुत ही खुशी होती है।
1: दीदी और बेस्ट फ्रेंड की कॉल आ जाए तो फिर क्या ही कहने।
0: हाँ जी बिल्कुल राइट, बताइएगा आप कैसा मौसम है आपकी साइड।
1: मौसम सभी इस टाइम पे तो धूप निकली हुई है, बारिश हुई बहुत तेज।
0: हाँ
1: उसके बाद धूप निकल आई।
0: अच्छा, बारिश के बाद धूप हो गई है, तो बताइएगा आपने कॉल लगाने का प्रयास कब से कर रही थी आप।
1: दीदी पहले तो मैंने कॉल की, वैसे तो तुम्हें पता ही है मेरा नंबर एकदम ही लग जाता है, एक ही दफा में लग जाता है।
0: हाँ
1: नाइबा की कॉल कटी, उसके बाद तुरंत मैंने कॉल किया मेरा कॉल, लेकिन फिर रिसीव नहीं हुआ क्योंकि खुशी दी बिजी थी इसलिए।
0: ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा इंतजार भी करना बहुत जरूरी होता है, पता है आपको।
1: हाँ जी बिल्कुल, फिर नेटवर्क इशू हो रहा था तो इसलिए कॉल नहीं लग पा रही थी मेरे फोन में।
0: और आप रिक्वेस्ट कर रहे थे बस एक बार कॉल लग जाए, एक बार लग जाए कॉल।
1: हाँ जी मैंने अभी अभी ट्राई किया और मेरी कॉल लग गई।
0: वेरी गुड, बताइएगा आज क्या सुनने का मन है आपका।
1: दीदी स्पेशली आज मैं सुनूंगी अपनी बेस्ट फ्रेंड लाइबा के लिए, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई।
0: बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है यार, बहुत ही शानदार गाना है।
1: हाँ जी, और भी मैं कुछ लाइनें बोलना चाहती हूँ लाइबा के लिए।
0: जी जी जी बिल्कुल बोलिएगा।
1: आता नहीं था हमें इकरार करना, ना जाने कैसे सीख गए प्यार करना। आता नहीं था हमें इकरार करना, ना जाने कैसे सीख गए प्यार करना। रुकते ना थे दो पल कभी किसी के लिए, ना जाने कैसे सीख गए इंतजार करना।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत ही शानदार लाइन।
1: शायरी और अर्ज करना चाहती हूँ,
0: जी जी
1: मेरी बेस्ट फ्रेंड की फेवरेट शायरी है ये।
0: ओके इरशाद,
1: जैसे मैंने सुनाई थी लेकिन उन्होंने सुनी नहीं, इसलिए मैं दोबारा रिपीट करना चाहती हूँ।
0: कीजिए।
1: किसने कहा अनजान बनकर आया कर, तुझे किसने कहा अनजान बनकर आया कर, मेरे दिल के आईने का मेहमान बनकर आया कर। लाइबा तुझे इस दिल की हुकूमत सौंपी है, लाइबा तुझे इस दिल की हुकूमत सौंपी है, तेरी सल्तनत है सुल्तान बनकर आया कर, तेरी सल्तनत है सुल्तान बनकर आया कर।
0: बहुत ही प्यारी लाइनें हैं आपकी, तो बताएगा अफरोज ये गाना आप किसको डेडिकेट करते हैं।
1: दीदी स्पेशली तो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड लाइबा के लिए है और साथ में मेरी कुछ सिस्टर हैं।
0: जी बताएगा।
1: जैसे कि नजमा अपनी दरख्तर आबिया रुकैया आसिया और मेरी दोस्त है खुशी दी।
0: ओके तो चलिए सभी के साथ सुनवाते हैं गाना। थैंक यू कॉल करने के लिए, बाय, मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं शानदार से गाना, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। बहुत ही प्यारा गाना है और मुझे भी बहुत पसंद है, तो सुनते हैं बिना किसी देरी के शानदार ट्रैक। और आप भी मुझे कॉल लगाइएगा, मुझे पूरा यकीन है कि आप कॉल लगाने के लिए ना मतलब सोच रहे हैं कि कॉल करें या ना करें। बहुत सारे श्रोता तो ट्राई भी कर रहे हैं कि जल्दी से हमारा कॉल लग जाए, लग जाएगा, बस आप ऐसे ही शिद्दत के साथ कॉल लगाते रहिएगा।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: दोस्तों अभी आपने सुना ये ब्यूटीफुल ट्रैक राहत फतेह अली खान जी साथ में तुलसी कुमार जी की आवाज में, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गए। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश। नमस्कार सर।
1: नमस्कार
0: जी, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम प्रमोद सर।
0: जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी बताएगा, क्या सुनेंगे आप सर?
1: जी सर,
0: कौन सा गाना सुनेंगे आज बताएगा?
1: याद ना आया करो, बोला जिन्होंने पिक्चर का गाना बताया था सर मैंने।
0: अच्छा ठीक है सर, सुनवा देते हैं, धन्यवाद कॉल करने के लिए। तो चलिए प्रमोद जी की रिक्वेस्ट पर सुनते हैं गाना तुम याद ना आया करो, याद आने से पहले आ जाया करो। तो चलिए सुनते हैं शानदार से गाना, उसकी बात करेंगे आपसे भी बातचीत। आपको कहीं नहीं है जाना, बस हमें फोन लगाना है आपको।

0: हेलो, गुड इवनिंग माय डियर लिसनर्स। देखिए, आपने याद किया और खुशी आ गई। याद करने से पहले आ गई मैं यहाँ पर। समय हुआ है 4:35। जी हाँ, 4:35 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। एंड अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। हेलो, हाँ जी सर, आपका ध्यान किधर है?
1: मैं, ये मेरा भतीजा बैठा था, उनका जरा कान पे लगा ले वो मोबाइल। जैसे सर जी बोलेंगे एकदम मुझे दे दियो।
0: यहाँ सर बात नहीं कर रहे, मैम बात कर रही है सर।
1: अरे बात बताऊँ भाई, देखो मैं हंसी में आपको सर भी कह दिया तो बुरा मत मानना।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं सर, नहीं कोई बात नहीं है, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्ट होती है।
1: जी जी जी जी
0: जी। आप बताइएगा सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मोहल्ला पंजूसराय मरकस वाली मस्जिद के पास से, छोटे अंसारी, आलम अंसारी, असद अंसारी और मेरे दोस्त हैं। गीत सुनना चाहते हैं, फिल्म का नाम है रात के अंधेरे में, आवाज है मोहम्मद रफी की, गीत के बोल हैं, अगर बेवफा तुझको पहचान जाते खुदा की कसम हम मोहब्बत ना करते।
0: ठीक है सर, ये प्यारा सा गीत आपको सुनवा देते हैं।
1: और ये मुरादाबाद की, जो मोबाइल में जब मुरादाबाद बजता है ना,
0: हाँ जी,
1: इसकी सॉन्ग बहुत बेहतरीन है और क्लियर आवाज आती है।
0: शुक्रिया सर।
1: हाँ, और हम अपने दोस्तों से भी कहते हैं कि भाई आकाशवाणी मुरादाबाद बजाया करो, मुरादाबाद बजाया करो, तो कोई तो मान ले, कहना कोई ना मानता।
0: कोई बात नहीं सर, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है ना। देखिए, अगर आपके पास 10 लोग बैठे हैं तो जरूरी नहीं कि 10 लोग ही सब आपकी बातों को फॉलो करेंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आपकी बात को एक्सेप्ट करेंगे, तो वैसा ही है। बट जो अपना बनता है उसको अपना बनाइए, जो नहीं बनता है उनको टाटा बाय बाय कहिए, सिंपल।
1: और बात क्या है खुशी जी, बहुत खुशी हो रही है मुझे, मतलब मेरा कॉल लग गया, आकाश आपसे मेरी बात हो रही है और मोहम्मद रफी साहब का गीत भी सुनेंगे हम
0: जी।
1: आपको याद, आपको तो याद होगा ही मोहम्मद रफी का गीत सुनेंगे।
0: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मुझे याद है सर, मैं सुनवा देती हूँ आपको ये गाना।
1: जी जी, जी। हमारे दोस्त भी तो हैं।
0: हाँ, अभी आपने अपने दोस्तों के तो नाम लिए इतने सारे, आपके थोड़ी ना है कि इतने सारे नाम हो सकते हैं।
1: वो बात क्या है, मेरे पुत्र है वो।
0: अच्छा, ओके, तो अपने दोस्तों के नाम भी बताइएगा।
1: बाबू अंसारी हो गए।
0: हाँ जी।
1: सफी अहमद अंसारी हो गए, रईसुल्ला हो गए, इरशाद भाई हो गए और खुशी जी,
0: जी।
1: और छोटे अंसारी तो है ही जी।
0: ठीक है सर, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। सुनवा देते हैं सर की पसंद का ये शानदार सा गाना मोहम्मद रफी साहब जी की आवाज में। एंड एवरीवन, आप भी कॉल कर लीजिएगा, शायद आपका भी कॉल लग जाए।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है FM मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और अभी आपने मोहम्मद रफी साहब जी की आवाज में सुना ये बेहतरीन सा गाना। और बात करते हैं अपने अभी अगले कॉलर से, जानते हैं उनकी फरमाइश यहाँ पर। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: नमस्कार।
0: आपको भी नमस्कार, नाम बताइएगा अपना।
1: जिला रामपुर ग्राम जहांगीरपुर से मोहम्मद
0: जी, बताइएगा कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी, आपसे बात हो जाती है और भी अच्छा हो जाती है। मैं रामपुर गया था घूमने के लिए। मैम वहाँ तेजी बारिश हो रही थी, 2 घंटे वहाँ पे खड़ा होना पड़ गया था। मैं सवार आया मैम, सवार में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई।
0: हाँ जी, ऐसा ही हो रहा है, कहीं कहीं शहरों में बारिश हो रही है, कहीं नहीं हो रही है। तो
1: काफी तेज बारिश हो रही थी वहाँ पे।
0: ओके, बताइएगा। हमारी मुरादाबाद का वेदर सो ऐसा ही है, हल्की फुल्की सी भी बारिश भी हुई थी और कभी रुक भी जाता है, लेकिन बादल भी हैं, ठीक ठाक मौसम है। हाँ जी, अलग अलग राज्य में हो रही है, अलग अलग सिटीज में बारिश हो रही है। बाकी आप बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं सर आप?
1: मैं आज गाना सुनूंगा, मूवी का नाम है सनम, गाने के बोल रहे हैं धक धक दिल करे शर्मा सजना। मैम आज क्या फरमाइश है, आज सॉन्ग प्ले कर देना, को सुनने वाले हैं।
0: ठीक है सर, बताएगा।
1: सबसे पहले ये स्वाद से डीजे राठौर ग्राम बीबीपुर से मकसूद भाई रामपुर से अमान सात महापुरम।
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं प्यारा से गाना। शुक्रिया आपने हमें कॉल किया।
1: थैंक यू, नमस्कार।
0: नमस्कार आपको भी। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत, लौट कर आते हैं हम। तब तक अभी कॉल लगाइएगा मुझे, शायद आप भी हमारे शो के कॉलर बन जाए लास्ट। कुछ भी हो सकता है, आप ट्राई करते रहिए एंड जब आप कोशिश करेंगे तो आपको कामयाबी भी मिलेगी ना। तो सुनते हैं खूबसूरत गीत, फिर करेंगे आपसे बातचीत।

0: गुड इवनिंग, आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना ये शानदार से गाना, और बात करते हैं अभी नेक्स्ट कॉलर से, कौन कनेक्ट हुए हमारे साथ। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम शमसुल।
0: जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी बताइएगा सर, क्या फरमाइश है आपकी?
1: फरमाइश है गाना सुनना है, प्यार क्या डरना क्या।
0: ओके चलिए सुनवा देते हैं ये गाना आपको बिना किसी देरी के। शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, जब प्यार किया तो डरना क्या, बहुत ही शानदार से गाना है। बस मैं आती हूँ इस ब्यूटीफुल म्यूजिकल ब्रेक के उस पर।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग. अभी आपने सुना ये प्यारा सा ट्रैक, जब प्यार किया तो डरना क्या, टाइटल ट्रैक सुना आपने. एंड अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं उनकी क्या फरमाइश है. वो हमारे शो के हैं लास्ट कॉलर. हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश. हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: जी मेरा नाम है भाविशा.
0: कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी मैं तलपतपुर से बात हूँ.
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप?
1: जी मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसी हो?
0: हाँ जी, आई एम गुड, मैं भी ठीक हूँ. बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी सर?
1: हमारी फरमाइश है, पहले जो हमारे सुनने वाले लोग हैं उनका नाम ले सकता हूँ क्या मैं?
0: ले सकते हैं, लेकिन गाना भी बताइएगा.

0: गाना है जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, ठीक है।
1: हाँ जी।
0: एक मेरा भाई है नेता, ठीक है, उसने एक और लगाया था,
1: ठीक है,
0: और एक है मिस्टर नदीम।
1: ओके,
0: तुम्हारा नाम क्या भाई? और एक है फहीम भाई।
1: ठीक है सर, आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं ये प्यारा सा ट्रैक। एंड दोस्तों, इसी गाने के साथ मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति। मैं मिलूंगी आपको टुमारो मॉर्निंग, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। यूं ही अपने आप से मोहब्बत करते रहिए, अपने आप से प्यार कीजिए और अपने अपनों से भी प्यार कीजिए, क्योंकि दोस्तों हम सबका ख्याल रख लेते हैं, है ना, सबसे ही हम सबकी खुशियों का ख्याल रखते हैं। अच्छा, मामा को ये पसंद है, पापा जी को ये पसंद है, भाई को ये पसंद है, लेकिन हम अपने आप को हम भूल जाते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि फैमिली से प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन अपने आप अपने खुद से भी प्यार करना, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। जब आप खुद से प्यार करेंगे ना, तो आप सब चीज़ें बेहतर नहीं बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे, समझ रहे हैं आप? तो खुद को टाइम दीजिए, खुद से बात कीजिए, थोड़ा सा अपनी अपनी केयर भी कीजिए, ठीक है। बाकी यूं ही मुस्कुराते रहिए जैसे अभी आप मुस्कुरा रहे हैं, और मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। और चलिए दोस्तों, अब कुछ यू नो न्यूज का भी टाइम हो गया है, तो न्यूज के बाद आएंगी हमारी प्यारी सी होस्ट आरजे रीना, जो आपकी शाम को बनाएंगी थोड़ा सा यू नो मस्ती वाला। एंड उनके शो का नाम भी आप जानते हैं, इवनिंग मस्ती शो होता है। एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, क्या कुछ हो रहा है अपनी सिटी में एंड पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, वो सारी अपडेट आपको मिलने वाली है। ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों के साथ रहिए।
2: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है।
3: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और दुनिया को मानवाधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडी उपदेशों को देखना चाहिए। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। विधेयक में प्रावधान है कि यदि किसी जन्म या मृत्यु की सूचना पंजीयक को उसके घटित होने के एक वर्ष से अधिक लेकिन दो वर्ष के भीतर दी जाती है, तो जन्म या मृत्यु की प्रमाणिकता के सत्यापन के बाद ही जिला मजिस्ट्रेट, उप विभागीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की स्वीकृति से इसका पंजीकरण किया जा सकता है। लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि मांगी है। यह राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: Koi mil gaya.
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: देते हैं
1: क्योंकि आप इतनी प्यारी हैं, इसलिए हम मोहब्बत करते हैं आपसे। श्रोता हमारे लिसनर्स भी बहुत प्यारे हैं।
0: गाइस शब्द नहीं है मेरे पास इसके लिए। तभी मैंने जिस दिन फ्रेंड्स डे था ना, उस दिन मैंने इसे गाना प्ले करवाया था, लेकिन इसको भी ये नहीं पता लगा होगा कि ये गाना मैंने इसी के लिए डेडिकेट किया था। वो आज मैं ऑन एयर कर रही हूँ, मैंने वो गाना प्ले करवाया था, इस जंगल में हम दो शेर।
1: हम शेर नहीं है स्टूडियो में।
0: तो मैंने ये गाना इसे प्ले करवाया था कि हम चाहे बाहर रहे चाहे स्टूडियो के अंदर है, हम बाहर जब जाते तो शेरनी बन के ही जाते हैं, चाहे कोई बोले उसको उड़ा देते हैं।
1: रीना तो ये वाला फाइट कर सकती है।
0: नहीं मेरे को डर नहीं लगता, साफ बात है। जब गलत नहीं हो तो डरना क्या, और जब तुम्हें किसी ने कह दिया उसे छोड़ना क्यों।
1: हाँ ये तो है, बात सही बोल रहे हो।
0: तो देखिए जिंदगी में मोहब्बत बहुत जरूरी है, मोहब्बत है तभी ये दुनिया चल रही है, अदरवाइज मोहब्बत नहीं होती तो ये दुनिया भी नहीं चल पाती, मुझे लगता है ऐसा। और आरजे रीना आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई है। गुड इवनिंग श्रोताओं, इवनिंग मस्ती शो में समय की बात करूं तो 5:13 हो चुके हैं, और आप सभी से यही कहेंगे कि बस आरजे रीना आप सभी के बीच आ गई हैं, तो कनेक्ट रहिए, ढेर सारी बातें करेंगे यहाँ पर, देश दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि जब रीना आती है तो बातें बहुत सारे लेकर आती है आप सभी के लिए पिटारे में, मतलब मैं अपनी बातें भैया लेकर आती, मुझे लगता है कि आप सभी के लिए बहुत सारे अपडेट लेकर आना चाहिए। और सावन का महीना है, और सावन के महीने में पता नहीं मुरादाबाद में क्या हो गया भैया कि यहाँ बारिश ही नहीं हो रही है, जब से सावन आए बारिश ही नहीं हो रही है।
1: हुई थी
0: पहले दिन हुई थी।
1: हाँ, फर्स्ट डे।
0: पहले दिन के बाद दोबारा नहीं हुई। हाँ। मतलब पता नहीं क्या हो गया है, मतलब मेरे को, मैं परसों से इंतजार कर रही हूँ, घटा छाती है।
1: मैं इंस्टाग्राम ओपन करती हूँ, मुझे अपडेट मिलती है हर शहर में बारिश हो रही है सिवाय मुरादाबाद।
0: नहीं मेरे पास भी वो अपडेट है, उसमें वेदर वाले में उसमें दिखाता है जैसे मुरादाबाद में बारिश हो रही है, आज पूरा दिन बारिश दिखा रखा है इसमें, लेकिन इस जगह नहीं हो रही है, संभल बरेली इस टाइम हो रही होगी तो ठीक है।
1: लेकिन मुजफ्फरनगर में भी बारिश हो रही है, बहुत सारे सिटीज में उत्तराखंड में बारिश हो रही,
0: लेकिन यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ अभी बारिश हुई थी थोड़ी देर के लिए, बस फुहारे से आई थी, उसके बाद खत्म हो गई।
1: वो झलक दिखलाने के लिए आई थी, एक बार आजा झलक दिखला जा,
0: गाना ना झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा आजा आजा आजा। चलिए हम आपको झलक ही दिखला देते हैं आज,
1: एक गाना सुनवा देते हैं।
0: हाँ तो श्रोताओं आपसे यही कहना चाहेंगे, बस कनेक्ट रही आरजे रीना के साथ, और वॉल्यूम थोड़ा हाई करिए, क्योंकि वॉल्यूम हाई करने पर ही मजा आएगा, ये गाने भी बहुत शानदार है जी। चलिए जी गाना सुनिए आप।

0: हेलो
1: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
2: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
3: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
3: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
0: मुरादाबाद
2: से संपर्क कीजिए।
3: नियम और शर्तें लागू।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। दिल चोरी साडा हो गया वे की करिए की करिए। देखिए जी, कुछ नहीं करना है आपने, बस आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए, क्योंकि आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो 5:25 हो चुके हैं श्रोता इवनिंग मस्ती शो में। आई नो कि आप सभी ऑन द वे हैं ऑफिस से, यानी कि घर के लिए निकल गए हैं। बहुत सी तैयारियां करूंगी कि भैया घर के लिए निकले ना निकले, लेकिन देखिए अगर आप घर से बाहर यानी कि ऑफिस से घर के लिए रवाना होने वाले हैं या फिर निकल चुके हैं आप, तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हेलमेट और सीट बेल्ट तो आपने लगाना ही लगाना है। साथ ही साथ सावन का महीना है, क्योंकि एक तरफ जो रास्ता है वो कांवड़ियों के लिए है, दूसरी तरफ रास्ता हम सभी के लिए है, जो कि आपको बहुत ज्यादा ट्रैफिक वाला, बहुत ज्यादा क्राउड वाला मतलब जो सफर है शाम का वो दिखने वाला है। और शाम का जो होता है वो बहुत ज्यादा ट्रैफिक ही होता है, क्योंकि उस टाइम हर कोई ऑफिस से घर निकल चुके होते हैं और बहुत कहीं घूमने जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में रहते हैं ऐसे ही, यानी कि 6-7 बजे के पास, यानी कि हमारा खुद का टाइम होता है जहां पर हमें टेंशन नहीं होती है कि वहां पर आपके बॉस की डांट सुननी है या फिर आप लेट जाएंगे ऑफिस में तो सैलरी थोड़ा सा कट होने की संभावना है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। शाम होते होते कहते हैं ना, ये अपना है, शाम अपनी है, रात अपनी है, जो मर्जी करिए एंजॉय करिए, लेकिन कुछ चीजें हैं उसका रूल फॉलो करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप सड़क पर चलते होंगे तो आपने देखा होगा कि येलो व्हाइट पट्टियां होती हैं, तो वो व्हाइट और येलो पट्टियां इसीलिए होती हैं कि जब तक वो येलो और व्हाइट पट्टियां आपको दिख रही हैं तब तक आप यूटर्न या टर्न नहीं ले सकते, मोड़ नहीं सकते, बल्कि आपने सीधा सिक्वेंस में ही गाड़ी चलाना होता है। ठीक है श्रोताओ, तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। और आप सोच रहे होंगे कि इस टाइम तो देखिए कैमरे की निगरानी में तो है ही, साथ ही साथ पुलिस और फौजी भी आपको सड़क पर पूरी तैनात में दिखने वाले, क्योंकि एक तो कांवड़ियों के लिए सुरक्षा के लिए उनको वो हमारे सुरक्षा के लिए है, साथ ही साथ आप सभी के लिए भी है, क्योंकि इस टाइम सभी के लिए साथ रहना उनके लिए अनिवार्य है। वो तो हमेशा हम सभी के साथ रहते हैं और जो भी कोई दिक्कत आती है वो हमारे साथ निभाते हैं। तो इस चीज का इसमें ये नहीं कि उनका भी जो वो पूरे दिन रात वो हमारे लिए खड़े रहते हैं, ट्रैफिक पुलिस रहती हैं, वो हर गाइड करती रहती है कि अभी रुको, अभी यहाँ से यूटर्न लेना है, ये करना है, वो करना है, तो हमें उनका भी सम्मान करना है। और कभी कभी आप रास्ते से निकलते हुए कहते हैं ना कि किसी की आप थोड़ा सा भी तारीफ कर दो तो खुश हो जाते हैं, बट आप तारीफ मत कीजिए, लेकिन उनके लिए एक पानी की बोतल जरूर रखिए, उनको एक पानी की बोतल डिस्ट्रीब्यूट करिए, क्योंकि इतनी धूप में भी वो सड़क पर खड़े रहते हैं, तो एक पानी तो डिस्ट्रीब्यूट करना बनता ही है श्रोता। चलिए फिलहाल लौट कर आएंगे, और भी बातें करेंगे, और भी बातें हैं मेरे पास, बस बने रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

J.

0: बैग से करेंगे सबका स्वागत।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
4: हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है आज रीना के साथ एफ एम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं श्रोताओं, तो समय हो चुका है 5:33 और आप आज रीना के साथ कनेक्ट हैं इवनिंग मस्ती शो में। देखिए, अगर आप हैं बिग बॉस देखने के दीवाने तो बिग बॉस यानी कि सीजन 20 बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये 6 सितंबर 2026 से कलर्स और जियो हॉट स्टार पर ये शुरू होने वाला है। यानी कि सीजन अब की बार यानी कि इस सीजन में चेंज कर दिया गया है। आपने मूवी देखी होगी करण अर्जुन, जो कि सलमान खान और शाहरुख थे उस मूवी में, तो अब उसी की तरह इसमें भी कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं। बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस होगा जो पहले थे।

0: बस आप सभी से यही कहेंगे कि आपने कहीं नहीं जाना है जी, आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहना है ऑल न्यू ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
1: हमको कहते सुपरमैन, ऑन कर लो हैंडी कैम, फ्रॉम AM टू PM, बंदे एक्चुअल सर्विसमैन।

0: और एक मैसेज की बात करूं तो ये विक्की सागर जी कनेक्ट हो गए हैं हमारे साथ, गुड इवनिंग पहुंचाते, वेरी गुड इवनिंग जी। रीना जी, एक छोटा सा मेरा सवाल है, बच्चों के स्कूल जरूरी है या फिर काम जरूरी है, बताइए आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए सर, स्कूल भी जरूरी है, मतलब स्कूल तो जरूरी जरूरी है ही, साथ ही साथ काम भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि देखिए हर टाइम कोई पढ़ नहीं सकता है। आप सोचेंगे कि भाई सुबह से लेकर रात तक पढ़े जाओ तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी इतना आज तक ऐसा हो ही नहीं सका है कि रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा ही नहीं कि भाई सुबह से लेकर रात तक बस दिन रात पढ़ते जाओ। उसको भी थोड़ा रिलैक्स चाहिए, माइंड फ्री रखना चाहिए, और जितना स्कूल का काम और स्कूल जाना हमारे लिए जरूरी है, उतना और भी काम जरूरी है, कुछ घर का भी काम जरूरी है, तो दोनों काम इक्वल है। जरूरी नहीं है कि आप स्कूल ना जाए घर का काम करें, और आप घर का काम करें स्कूल ना जाए, या फिर स्कूल जाए और घर का काम ना करें, मम्मी पापा की हेल्प ना करें, ये तो गलत बात है। दोनों काम इक्वल है, दोनों काम जरूरी है, लेकिन जब आपके बोर्ड के एग्जाम आते हैं या फिर एग्जाम्स आते हैं, नॉर्मल हो चाहे बोर्ड का हो, तो उस टाइम आपको प्रिपरेशन थोड़ा सा ध्यान से करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो भी आप एग्जाम के टाइम इतना ध्यान देते हैं, इससे पहले जो चैप्टर आपको डेली रीड कराया जाता है, डेली पढ़ाया जाता है, अगर वो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है साथ ही साथ आप घर आकर रीड कर लेते हैं, तो एग्जाम्स के टाइम आपको इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा, आप इतना काम नहीं कर पाएंगे, इतना नहीं पढ़ पाएंगे, इसीलिए जो पढ़ाया जाता है वो आप पढ़िए।
1: तू हॉट लगदी।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
5: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है, आर्जरीना के साथ FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करो श्रोताओं, तो 5:47 हो चुके हैं और अब हम बात कर लेते हैं वेदर की। 5 अगस्त को ये बताया जा रहा है गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका जताई जा रही है, और साथ ही साथ प्रयागराज, बनारस और गोरखपुर, लखनऊ, सीतापुर और साथ ही साथ बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद समेत कई यूपी के जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। हालांकि देखिए, जरूरी नहीं कि मुरादाबाद इस एरिया में बारिश नहीं हो रही, तो कहीं भी नहीं बारिश हो रही होगी। यूपी के 16-17 राज्यों में बारिश की संभावना जताई जा रही है, तो बस सतर्क रहिए और सावधान रहिए। फिलहाल देखिए, गर्मी से ना थोड़ी सी राहत है, वरना पहले अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जहाँ पर तो हवाएं भी ऐसी नमी वाली नहीं चल पा रही थी। लेकिन अब क्या है, हवाओं में नमी भी है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, यानी कि 2-4 बूंदें आ तो रही है ना, पर आ रही है। लेकिन कल का बताया जा रहा है कि बारिश आने की संभावना जताई जा रही है इन इन जगहों पर, तो बस सावधान रहिए और एंजॉय करते रहिए। हर मौसम का एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। और अगला

एक बार सभी प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे रीना और आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। तो दोस्तों, आज हम एक खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि पावन सावन का महीना शुरू हो गया है, यानी कि हम बात करेंगे योगी जी की पाती। सावन का महीना भी अद्भुत है। रिमझिम फुहारे, शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता, जहाँ नजर डालो हरियाली, प्रकृति की सुरमयता क्या होती, सावन में ही पता चलता है। ऐसे में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी की सावन स्पेशल पाती में विशेष संदेश। योगी जी कहते हैं, यहाँ पवित्र माह सेवा, प्राकृतिक और साथ मिलकर आगे बढ़ने का प्रतीक है। प्राकृतिक से जितना ले उतना ही उसे लौटाने का संकल्प भी होना चाहिए। सेवा वाटर, सेवा अर्थ, पानी की एक भी बूंद नहीं हो व्यर्थ। तो इस मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मैसेज के लिए आज जो भी श्रोता मुझे सुन रहे हैं, सभी मेरे साथ बोलिए थैंक यू योगी जी। और सुनते रहे एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बचाते रहे, गुनगुनाते रहे।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं। दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है, यानी कि 6:02 हाजरीना के साथ आप कनेक्ट है। और अब यानी कि बात करने वाले हैं हरि के द्वार, यानी कि हरिद्वार में 5 करोड़ कांवड़ियों के लिए, यानी कि सफाई के लिए, हर एक चीज के लिए यानी कि सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। और साथ ही साथ 1000 सफाई कर्मी यानी कि वहाँ तैनात है, क्योंकि जब नहाने के बाद प्लास्टिक वगैरह भी बहुत सारे जो डस्ट वगैरह फैल जाते हैं, कूड़ा कचरा फैल जाता है, उनको साथ ही साथ सफाई करने के लिए यानी कि 1000 सफाई कर्मी लगाई गई हैं, ताकि किसी भी प्रकार के कांवड़ियों को कोई भी असुविधाजनक फील ना हो। और जब वहाँ पर साथ ही साथ क्लीन कर दिया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार के उन्हें परेशानी ना आए। और जब होता है ना कि जो 5 करोड़ आबादी यानी कि कांवड़िया वहाँ पर जाएंगे, तो पानी पानी ऊपर हो जाता है, देखा होगा आपने, तो इससे फिसलने की भी दिक्कत हो जाती है। इसीलिए सफाई के लिए यानी कि 1000 कर्मचारी वहाँ पर तैनात है, और साथ ही साथ उनके तमाम सुविधाओं के लिए भी वहाँ पर व्यवस्था कर दी गई है, चाहे पानी हो, खाना हो, मेडिसिन हो, किसी को चोट लग जाती है पैर में या फिर पट्टी चाहिए, हर एक चीज़ के लिए यकीन कि उनके सुविधाएं के लिए उपलब्ध है। साथ ही साथ जिस रूट से कांवड़िया जा रहे हैं, वहाँ भी जगह जगह पर इनके लिए सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं, ताकि कोई भी कांवड़ियों को ना परेशानी ना होए। और इतने दिन वो पहले इसलिए जाते हैं क्योंकि एक तो आसानी से वो कांवड़ घर पर ले आए, और बीच में अगर इनको तबीयत थोड़ी ख़राब भी होती है तो 1-2 दिन रेस्ट करें, फिर अपनी यात्रा शुरू करें। इसलिए ये पहले जाते कांवड़ यात्रा के लिए, क्योंकि बहुतों के मन में सवाल आता है ना कि जन्म शिवरात्रि तो अभी लेट है, लेकिन इतने पहले क्यों जाते हैं? वो इसलिए जाते हैं क्योंकि बहुत कोई दूर से आते हैं, कोई नज़दीक से भी आते हैं, तो बीच में कोई तबीयत ख़राब ना हो जाए, इस वजह से वो जल्दी जाते हैं। अगर बीच में कोई तबीयत ख़राब भी हो गई तो थोड़ा 1-2 दिन के लिए विश्राम कर सकते हैं। और यूं ही आर्जेरीना के साथ कनेक्ट रही है। और आगे बात करने वाले हैं, आज यानी कि तारीख की बात करूँ तो 4 अगस्त, और 4 अगस्त को यानी कि क्या खास डे है, क्या मनाया जाता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और कल 5 अगस्त को भैया वेदर अपडेट दे दी गई है कि बारिश आ सकती है। मैं तो कहती हूँ भैया जमकर बारिश आ जाए, बस सावन के पहले दिन तो बारिश आई, उसके बाद तो भैया लग रहा है कि नाराज़ हो गए भगवान जी, अरे भोले भगवान जी प्रसन्न। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं।
1: हर हर

0: हेलो जी, गुरु रंधावा की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया श्रोताओं। और आज उनका भी बर्थडे है जिन्होंने बॉलीवुड को, हम सभी को 2500 से अधिक गाने दिए। आप समझ सकते हैं जिनके गाने सदाबहार होते हैं और हर दिलों में भी वो राज करते हैं, और उनके गाने हर किसी के जुबा पर और हर किसी के फेवरेट है। तो अगर आपको पता है कि आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में किस सिंगर का बर्थडे है तो आप मुझे डेफिनेटली मैसेज करके बता सकते हैं। वेटिंग फॉर यू मैसेज, यानी कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9837896896 पर। फिलहाल तो हम बात करेंगे आज का स्पेशल डे में, यानी कि स्पेशल डे क्या है आज का। जिंदगी में कुछ खुशियाँ ऐसी होती हैं जो छोटी जरूर होती है लेकिन दिल को बड़ी खुशी दे जाती है, और ऐसे ही एक मीठी खुशबू खुशी का जश्न मनाया जाता है आज, यानी कि नेशनल चॉकलेट चिप कुकी डे मनाया जाता है।
1: आजा मेरे लाल,
0: यानी कि चॉकलेट चिप कुकी डे, जिसका नाम सुनते ही ताजगी, बेक हुई कुकी की खुशबू और उसमें पिघलती हुई चॉकलेट का स्वाद याद आ जाता है। चाहे बच्चे का टिफिन हो, शाम की चाय हो या फिर दोस्तों के साथ गपशप, एक चॉकलेट चिप कुकी हर पल को थोड़ा और खास बना देती है। आज का दिन है, खुद को थोड़ा सा यानी कि एंजॉय करिए, खुद के लिए कुकी बनिए, और अगर घर पर कुकीज बना सकते हैं तो परिवार के साथ मिलकर बेक कीजिए, और अगर नहीं तो आप अपने पसंदीदा बेकरी से, यानी कि शॉप से, दुकान से आप खरीद सकते हैं और परिवार वालों के साथ एंजॉय करते हैं, एंजॉय करिए। कहते हैं ना, अपनों के साथ बांटकर खाइए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती हैं, और जब खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं तो मुझे लगता है कि दिल खोल कर बांटना चाहिए जी, है ना। और वैसे भी कुछ भी खाए, अगर आपके पास कोई भी हो, चाहे वो ना भी खाए, पूछना हर किसी के लिए ज़रूरी है, पूछ लेना ही बेटर माना जाता है। आज मीठी मुस्कान के साथ, यानी कि आज का डे है नेशनल चिप कुकी डे, तो इस डे को सेलिब्रेट करिए और एंजॉय करिए। फिलहाल एक और आप सभी के लिए गाना एंजॉय करते हैं श्रोताओं, और लौट कर आते हैं आप सभी के बीच। बात करेंगे आज, यानी कि सदाबहार गाना गाने वाले कौन है वो सिंगर जिनका आज

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

सोचिए दोस्तों, आपको ऑफर मिले कि चलिए किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, किसी डिस्को पार्टी में चलते हैं और एंजॉय करके आए, खाना खाकर, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप, जल्दी बताइए। हाँ कर देंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे पता है, हाँ कर देंगे, क्योंकि मैं भी हाँ कर देती हूँ ना। और आप आरजे रीना के साथ कनेक्टेड श्रोताओं, समय की बात करूँ तो 6:22 हो चुके हैं। और आप, आज का जो हमारा सवाल होने वाला है ना, यानी कि बहुत ही फैंटास्टिक वाला होने वाला है। आज मैं आप सभी से कोई पहेली, कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाली हूँ, बल्कि आज मैं आप सभी के लिए म्यूजिक प्ले करने वाली हूँ, जिनका आज बर्थडे है, बॉलीवुड सिंगर के बर्थडे हैं, हम सभी के चहेते दिलों पर राज करने वाले आज उनका बर्थडे है, सदाबहार गाना गाने वाले आज उनका बर्थडे है। तो ये म्यूजिक मैं प्ले करूंगी, आपने सुनकर बताना है कि किस सिंगर की आवाज और किसने गाया है ये। चलिए रेडी? ओके okay.

हाँ जी हाँ जी, सोचिए सोचिए। गाने, एक तो आपको गाने का नाम बताना है, सेकंड किस सिंगर ने गाना है, गाना गाया है उसका नाम बताना है आपने। जल्दी जल्दी मैसेज करिए, नंबर है 9823789689 कि किस सिंगर की आवाज में है और गाने का क्या नाम है। चलिए एक बार और प्ले करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आई नो, मुझे पता है भैया, हर किसी के दिल के दीवाने हैं।

सोचिए सोचिए और मिसेस क्रिश श्रोताओ, फिलहाल हम बात करेंगे एक ऐसे जीव के बारे में जिसके 32 दिमाग, 10 आंखें, 300 दांत होती है। आखिर वो कौन है जानवर भैया जिसके 32 दिमाग होते हैं? सोचिए 32 दिमाग अगर इंसान एक हो जाए तो क्या करेगा, और ऊपर से 10 आंखें होती है, 300 दांत होती है उसकी, तो कौन सा जानवर है वो, उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आपने मैसेज करना है। वन सेकेंड, एक बार और मैं म्यूजिक प्ले करती हूँ आप सभी के लिए।

0: सच बताओ मुझे ये गाना उनका ना बहुत पसंद है, बेहद पसंद है मुझे। रेट्रो सॉन्ग ही बहुत पसंद है यार, सच बताओ तो। और इनके ये जो ये वाला गाना है, और शाम होए और ये गाना ना सुने तो आपकी शाम बिंदास तो होने से रही, तो ये गाना तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि किस सिंगर का है और इस गाने का क्या नाम है। सोचिए और मैसेज करिए, नंबर है 9837896896। फिलहाल हम यहाँ पर लेंगे एक क्या जी, अरे म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, उसके बाद कनेक्ट होंगे आप सभी के साथ और करेंगे क्या, अरे ढेर सारी बातें।
1: कभी उसे नूर नूर कहता हूँ,
0: कभी
1: कभी मैं हूर हूर कहता हूँ।

गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं। आज रीना के साथ आप कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में, और समय की बात करूँ तो 6:31 हो चुके हैं, और अब हम उस जानवर की बात करने वाले हैं, उस जीव की बात करने वाले हैं जिसके भैया 32 दिमाग होते हैं। दिखने में ये रेंगने वाला एक छोटा सा जीव शारीरिक रूप से बेहद जटिल होता है, और इसको कहते हैं जोक। शरीर में 32 अलग अलग हिस्से होते हैं, और हर हिस्से का एक अपना अलग नर्वस सिस्टम होता है। यही कारण है कि इसके 32 दिमाग वाला जीव कहा जाता है। इसके अलावा इसके मुंह में 3 जबड़े होते हैं, जिसमें कुल मिलाकर यानी कि लगभग 300 बेहद बारीकी और तेज दांत होते हैं। जोक यानी कि जो खून चूसने वाले जीव माना जाता है, यह एक ऐसा रसायन छोड़ता है जिससे इंसान या जानवर को इसके काटने का भी महसूस नहीं होता है। और ये यानी कि इसी को जोक कहते हैं, और इसके 32 दिमाग, 10 आंखें और 300 इसके दांत पाए जाते हैं। और ये इंसान, आप ये सोच रहे होंगे कि एक छोटा सा जीव ये खून चूसता है इंसान के अंदर से, इतनी तेजी से खून चूसता है जो पता भी नहीं चलता है, काटता है तभी भी महसूस नहीं होता है, बहुत देर के बाद जब आपको इचिंग होती है तब महसूस होता है कि हाँ, आपके पैर में, आपके बॉडी में कहीं ना कहीं थोड़ी सी सनसनाहट होती है, थोड़ा सा आपको फील होता है कि आपकी बॉडी के हिस्से में जहाँ पर ये चिपका हुआ है वहाँ से हल्का सा दर्द भी, मतलब एक अलग ही एहसास होगा, तब आप देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि जोक है। लेकिन आजकल ये जोक थेरेपी भी दिया जाता है, जिसको हम एक आम जीव, आम जानवर समझते हैं, ये अब इसका जोक थेरेपी भी दिया जाता है। हॉस्पिटल में आप जाएंगे, अब इंसान के अंदर गंदा खून यानी कि इन्फेक्शन वाला जो खून होता है उसके लिए जोक थेरेपी दी जाती है। और मैं ये जो जोक है भाई, सच बताऊँ मुझे बहुत डर लगता है। एक्चुअली क्या था, जब मैं छोटी सी थी और बरसात के मौसम में ये जोक बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो सड़क पे बस थोड़ा सा पानी इकट्ठा हुआ हुआ था, और बच्चे तो बचपन में होते हैं जो छपा छुप खेलने लग जाते हैं, तो मैं भी खेल रही थी और मेरे पैर में कब वो भाई चिपक गया, कब मेरे को पता नहीं चला। मेरे को पता ही नहीं चला, और जब मेरे को इचिंग होने लगी तब मैंने देखा, ओ माय गॉड, यकीन नहीं करेंगे, मैं इतनी तेज चिल्लाई थी, इतनी तेज चिल्लाई थी कि सड़क पे जो भी ट्रैफिक में जा रहे थे सब रुक गए और उन्होंने भैया मेरे पैर से जोक को हटाया। मुझे सच में बहुत डर लगता है इसे। चलिए, फिलहाल देखिए, जानवर छोटे होते हैं लेकिन बड़े पैकेट वाले धमार वाले होते हैं, पता नहीं चलता हमें, लेकिन ये काम की भी हैं। इंसान के अंदर से गंदा खून निकालता है ये, और इसकी थेरेपी दी जाती है, सोचिए। चलिए, फिलहाल ये गाना उनके लिए है जिनकी लाइफ में यानी कि न्यू किसी की एंट्री हुई है, या फिर आपके लाइफ में एक ऐसा पर्सन है जिसके, मतलब जग घूम लीजिए लेकिन ऐसा इंसान, ऐसा पर्सन आपको नहीं दिखेगा। फिलहाल आज का कड़क म्यूजिक भी है आप सभी के बीच, जो सुनना है आपने और मैसेज करना है आपने, और साथ ही साथ वही विनर बनेंगे जो गाने का नाम भी बताएंगे प्लस सिंगर का नाम भी बताना है। ये नहीं कि सिर्फ आपने गाना बता दिया और एक सिंगर का नाम बता दिया, ऐसा नहीं, दोनों बताना है आपने, तब आप विनर बनेंगे। चलिए मैं आपको म्यूजिक सुनवाती हूँ एक बार आपको, उसके बाद आगे बढ़ेंगे शो में।

क्या बात है जी, इश्क सूफियाना बहुत ही शानदार वाला गाना एंजॉय कर रहे हैं श्रोताओं। और समय की बात करूं तो 6:41 हो चुके हैं और आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है। जैसा कि सभी को पता है इस चीज़ के बारे में कि सावन का महीना है और कांवर यात्रा शुरू हो गई है, यानी कि सावन के पहले दिन से ही। लेकिन एक नियम रखा गया था कि इस बार देखिए आप सभी के लिए सुविधाएं उपलब्ध तो है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि जो लाउड वाले डीजे हैं वो अवेलेबल ना कराए जाए। लेकिन फिर भी जो नहीं माने और बड़े बड़े डीजे वाले कांवड़ यात्रा निकालने लगे उसके साथ ही। अब इससे क्या हो रहा है कि जो सड़क पर लोग निकल रहे हैं और उस डीजे की आवाज़ सुनकर लोगों की जो काने हैं, जो दिमाग है भैया, एकदम काम करना ही बंद कर जाता है उस टाइम। अगर आप उसकी आवाज़ के आसपास भी होंगे ना, तो आपने सुना होगा, महसूस करा होगा, तो एक टाइम के लिए तो लगता है भाई पृथ्वी ही तहस नहस हो गई पृथ्वी की, यानी कि इतनी तेज़ इतनी कड़क उसकी लाउड होती है ना कि समझ नहीं आता है इंसान करे तो क्या करे। कान भी बंद कर लेंगे ना तब भी उसकी आवाज़ कानों में ऐसी गूंजती है जैसे कि आपके कान के पर्दे अभी फटने वाले हो, इस तरीके से महसूस होता है। तो अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि आप प्रशासन ने जो ये नियम रखे थे उसका उल्लंघन हुआ, तो अब इसका क्या किया जाएगा, क्योंकि बच्चे बुजुर्ग सड़क पर होते हैं, जिनके सड़क के किनारे घर है, सोचिए क्या हालत होती होगी। तो अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि देखिए कांवड़ निकालना बहुत अच्छी बात है, एक नॉर्मल डीजे होते हैं जो शादियों में भी आप जाएंगे तो कितना भी बजता रहता है फर्क नहीं पड़ता, फिर भी लोग डांस करते रहते हैं। लेकिन जो ये वाले डीजे हैं उसके आस पास भी अगर आप खड़े हो गए तो सोचिए क्या हो सकता है, यानी कि कान के पर्दे है ना वो फटने की भी संभावना हो सकती है, कान के पर्दे फट भी सकते हैं क्योंकि हमारे कान इतने लाउड आवाज नहीं सहन करती हैं। जब सोचिए ईयरबड्स हम लगाकर 24 घंटे रखते हैं अपने कानों में, जब दर्द होने लग जाता है तो वो तो इतनी लाउड वाली चीज है तो कैसे दर्द नहीं होगा। तो फिलहाल आप सभी से यही विनिवेदन है आप सभी से कि अलाउड वाले डीजे के पास आप ना जाए जितना हो सके, बचिए वहाँ के आसपास से जाने के लिए, बचेंगे उतने ही आप सभी के लिए बेनिफिट रहेगा, अदरवाइज भैया कानों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो तो आपको पता ही है। फिलहाल एक बार और मैं आज का कड़क जो सवाल है, कड़क म्यूजिक है वो मैं प्ले करती हूँ क्योंकि समय हमारे पास अभी है, आई नो, तो आप सभी के मैसेज भी शामिल करने हैं, तो एक बार और मैं प्ले करूंगी आप सभी के लिए, यानी कि आज का जो म्यूजिक है आपने सुनना है और बताना है कि राइट आंसर क्या है, यानी कि सिंगर के नाम भी बताने आपने और साथ ही साथ आपने गाने का नाम भी बताना है। तो चलिए हम म्यूजिक प्ले करते हैं आप सभी के लिए, एंजॉय करिए इसको और सुनिए, गैस करिए कि गाने का क्या नाम है और सिंगर किस सिंगर ने गाया है।

0: ये याद रखिएगा श्रोताओं, आपके आपने दोनों नाम बताने हैं, यानी कि सिंगर का नाम भी बताना है, गाने का नाम भी बताना है, तभी आप विनर बन पाएंगे। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं, एक बहुत ही शानदार वाला, उसके बाद लौट कर आते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM. सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

शानदार गाना है। फिलहाल आरजू रीना के साथ अब कनेक्ट है श्रोता, और समय की बात करूं तो 6:51 हो चुके हैं और अब आप सभी की बारी आ गई है कि आप सभी के जो प्यारी प्यारी मैसेज आए हैं ना भैया, उनको शामिल करने का वक्त आ गया। आज का कड़क म्यूजिक हमने प्ले किया था आप सभी के लिए, जो कि एक बार और रिपीट करते हैं और चलते हैं आप सभी के मैसेज की तरफ।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार। और चलिए देखते हैं किनका क्या मैसेज। मैसेज की बात करूँ तो मंसूरी कलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी, सैयद शारिक अली, गुड इवनिंग रीना जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हैं, आप बताइए कैसी हैं। आपका शो इवनिंग मस्ती हम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच जी कि आपको अच्छा लग रहा है। गाने भी बहुत अच्छे प्ले कर रही हो। और आज किशोर कुमार जी का बर्थडे है। हाँ जी, हमारे रेडियो की टीम की तरफ से उनको हैप्पी वाला बर्थडे है। और ये मैसेज किनका है? इनका कहना है कि मैम हमें आप सर मत बोला करो, हम आपसे छोटे हैं, लेकिन आपका क्या नाम है जी, ये भी तो नहीं पता ना मुझे।

0: ओ हेलो रीना मैम, गुड वाला इवनिंग है। कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं। और ये सुन रहे हैं, इनका कहना कि बिंदास गाने प्ले कर रही हो, ललिता जी कनेक्ट होती हैं। और इनका कहना कि हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जी की, जय भोलेनाथ जी की।
1: अब तेरे
0: और आज आप
1: हवाले
0: परेशान हो गए, क्यों परेशान हो गए बताइए जरा। और इनका कहना कि मैम चाय पी लीजिए, शाम बहुत अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी बात है।
1: मेरा सनम
0: और आज सिंगर किशोर कुमार जी का बर्थडे है,
1: रे,
0: देखा आपने। और इनको शायरी भी लिखती है भैया आज तो।
1: मेरा सनम
0: सावन की रिमझिम फुहार, भोले बाबा का आशीर्वाद, हर कदम पर मिले आपको खुशियों का अनमोल प्रसाद, महादेव की कृपा से जीवन सदा महकता रहे, रीना मैम आपके चेहरे की मुस्कान यूं ही चमकती रहे, हर हर महादेव, सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। सेम टू यू जी, आपको भी सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। और इनका कहना है कि किशोर कुमार जी की आवाज में ये गाना है, और इस गाने का नाम है ये साम मस्तानी। मेरा गाना ही फेवरेट है, सच बताओ। और इनका अगले मैसेज की बात करूं तो इनका कहना है,
1: ये शाम
0: रानी
1: मस्तानी
0: नांगल से रिहाना जी कनेक्ट होती है। गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग जी। और इनका कहना है कि ये शाम मस्तानी और किशोर कुमार की आवाज में। ये शाम मस्तानी, बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से कनेक्ट हो गए हैं। अगले मैसेज की बात करूं तो ये शाम मस्तानी किशोर कुमार की आवाज में कनेक्ट होते हैं हमारे साथ भूपी शर्मा
1: ये
0: जी।
1: जाए।
0: और एक वॉइस मैसेज आए हैं जिनको हम प्ले कर देते हैं आप सभी के लिए, कि ये क्या कहना चाह रहे हैं मधुर आवाज में।
2: भांग रगड़ रगड़ बोले
0: अरे भैया, इनको तो बस गाना सुनना है, भांग डगर डगर। अगले मैसेज की बात करूँ श्रोताओं, तो ये मैसेज आता है ये शाम मस्तानी और किशोर कुमार जी की आवाज हमारे साथ ये कनेक्ट होते हैं नरेंद्र सिंह मुरादाबाद से। अगले मैसेज की बात करूँ तो यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल जी कनेक्ट हो गए हैं। और इनका कहना है कि फिल्म कटी पतंग, ओके, इन्होंने मूवी का नाम भी बताया, किशोर कुमार की आवाज। हाँ,
1: मस्त
0: ये शाम मस्तानी
1: होश किए जा।
0: मत हो। अगले मैसेज की बात करूँ तो राजा कश्यप चौराहा गली से कनेक्ट हो गए हैं। और इनका कहना है कि ये शाम मस्तानी और आवाज है किशोर कुमार।
1: ये शाम
0: अगले मैसेज की बात करूँ तो ये शाम मस्तानी किशोर कुमार की आवाज में ये अंसार हुसैन जी कनेक्ट हो गए हैं दौलत बाग मुरादाबाद। अगले मैसेज की बात करूँ तो बबली अंजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी जी, अब संतोष कश्यप जी हम आपके प्रोग्राम में शामिल हो गए हैं जी। ये शाम मस्तानी और आवाज है किशोर की। चौधरी जी एडवोकेट है और ये मुरादाबाद से कनेक्ट हो गए हैं। गुड इवनिंग रीना जी, वेरी गुड इवनिंग सर। अगले मैसेज की बात करूं तो ओहो, इन्होंने वीडियो भेज दिया है तो सर वीडियो नहीं प्ले कर सकते हैं हम। चलिए और भी मैसेज है श्रोताओं, वो भी शामिल करते हैं और बताते हैं कि सबसे पहले हमारे साथ यानी कि राइट आंसर के साथ कौन कनेक्ट हुए थे। ये टेक्स्ट मैसेज जरा शामिल करना। ये हमारे साथ मुरादाबाद से कनिका जी कनेक्ट हो गई हैं और ये कोई गाना सुनना चाहती है, लेकिन जब तक आप राइट आंसर नहीं देंगे गाना नहीं सुनेंगे। और अगले मैसेज की बात, किशोर कुमार की आवाज और गाने की बोल है ये मस्तानी जी, लेकिन आपका नाम क्या है, आपने ये नाम अपना मेंशन नहीं किया है भैया, ये तो गलत बात है, नाम मेंशन करना बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। और इनके चलिए कोई बात नहीं, हम आपके लास्ट 4 डिजिट नंबर बता देते हैं, 1633।
1: मस्तानी
0: मदहोश रीना जी, मैं आकाश चौधरी मुरादाबाद से कनेक्ट होता हूँ। मानो तो गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, लेकिन फिलहाल सर समय की बात करूँ तो 6:58 हो चुके हैं, यानी कि 2 मिनट और बाकी हैं, उसके बाद तो मैं ही यहाँ से फुर होने वाली हूँ। तो जो आपका ये गाना है कल हम प्ले करेंगे अपने शो में, 6 बजे के बाद प्ले करेंगे। आप डेफिनेटली कनेक्ट होइए और सुनिए, इंस्टा में मैसेज करिए, बताइए। लेकिन अभी के लिए समय बहुत कम पड़ गया है। और सबसे पहले बता दूं कि राइट आंसर यानी कि गाने के साथ साथ मैसेज आया है हमारे पास जी का, ये कनेक्ट हो गई थी भैया, इन्होंने राइट आंसर दिया है। इन्होंने कहा कि किशोर कुमार की आवाज में है, साथ ही साथ ये शाम मस्तानी गाना है। तो एक बार मैं किशोर कुमार जी के बारे में भी कुछ भाई उनके बारे में बोलना तो बहुत ज़रूरी है, यानी कि आज उनका जन्मदिन है, यानी उनका जन्म यानी कि 4 अगस्त 1929 को हुआ था। और साथ ही साथ उनको पहले फिल्म में गाना गाने को मौका मिला था 1946 में, लेकिन उनको दूसरी बार फिर गाना मूवी में गाने गाने का मौका मिला, यानी कि जिद्दी में 1948 में। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, आगे ही बढ़ते रहे अपनी ज़िंदगी में, और बहुत मस्ती भरी आवाज़ और शानदार गाने उन्होंने बॉलीवुड के दिए, और आज हर एक भारतीय के दिलों में ये राज करते हैं। इनके सदाबहार जो गाने होते हैं, हर बच्चे बड़े बुजुर्ग यानी कि जो आजकल की नई जेन जी हैं, उनको भी ये गाने, उनको भी इनके गाने बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इनके गाने जो बहुत बहुत पसंद किए जाते हैं, यानी कि रूप तेरा मस्ताना, मेरे सपनों की रानी, पल पल दिल के पास, ओ मेरे दिल के चैन, जिंदगी एक सफर है सुहाना, एक लड़की भीगी भीगी सी, ये शाम मस्तानी, चला जाता हूँ मैं किसी के धुन में, आय हाय, मतलब एक शाम मस्तानी, चला जाता हूँ मैं किसी के धुन में, मतलब ये दोनों गाने मेरे हमेशा फेवरेट है। मतलब इनके गाने और भी बहुत अच्छे हैं, बहुत मेरे को पसंद भी, लेकिन ये दो गाना मेरे बेहद करीब है। मैं बहुत सुनती हूँ इस गाने को, बहुत ज़्यादा सुनती हूँ जब मैं बालकनी में बैठी रहती हूँ, फिलहाल संडे वाले दिन। अभी तो मैं शाम तो हो ही चुकी है, मैं 7 बजे घर जाऊँगी, 7:30 बजे। तो संडे को मैं इनके जो ये दो गाने हैं जरूर सुनती हूँ, डेली सुनती हूँ, मतलब संडे संडे सुनती हूँ डेली।

0: ही लब।
1: चलिए श्रोताओं, यहाँ पर लेती हूँ मैं जाने की इजाजत, फिर मिलेंगे कल सेम टाइम एंड सेम जगह। बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अपनी जिंदगी में यूं ही खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए और समय जिसको भी दीजिए सोच समझ कर दीजिए, क्योंकि ये समय वक्त दोबारा नहीं आता है। और कहते हैं ना, जिंदगी में जब आपके ख्वाब मिल जाए, जो भी आप सोच रहे हो मिल जाए, तो वो जिंदगी किस काम की। जिंदगी का तो असली अहमियत यही है कि कुछ चीजें आपको मिल जाती है आसानी से, कुछ चीजों के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। तो इस जिंदगी को बस यही सोचकर एंजॉय करते रहिए, अपने काम अच्छे करते रहिए। सबसे बड़ी बात है कर्म अच्छे करिए, क्योंकि कर्मों की HD में दिखाए जाते हैं। ऊपर भगवान जी के पास अब जाएंगे ना, तो HD में दिखाते हैं, इसीलिए कर्म बहुत मायने रखते हैं। चलिए फिलहाल के लिए कुछ कमर्शियल एड ब्रेक, उसके बाद बाय, टाटा, टेक केयर जी, अपनी मुलाकात होगी कल सेम टाइम एंड सेम जगह 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक।
2: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM. DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
3: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B, बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: हेलो जी, नमस्कार। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। श्रोताओं, ये है आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। और मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद और मेरे साथ है मेरी प्यारी दोस्त
2: प्राची।
1: यस, और प्राची आज हम पता है किस चीज की बात करने वाले हैं?
2: हाँ, किस चीज की बताइए?
1: आज हम बात करने वाले हैं गोंडा के दही बड़े और खस्ता कचौड़ी की।
2: अरे वाह, तो शुरू करते हैं जल्दी।
1: बिल्कुल। तो दोस्तों, आप सभी के लिए आज का ये प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं गोंडा की गलियों में, जहाँ की हर सुबह उम्मीद लेकर आती है, जहाँ की परंपराएं आज भी दिलों में बसती है, जहाँ स्वाद में संस्कृति है और विकास में एक नई पहचान, जहाँ छोटे छोटे हुनर बन रहे हैं बड़े सपनों की उड़ान। ये है नया उत्तर प्रदेश, विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद और आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपको रूबरू कराते हैं उत्तर प्रदेश की उन कहानियों से जो सिर्फ विकास का नहीं बल्कि मेहनत, परंपरा, स्वाद और आत्मनिर्भरता की मिसाल है।
2: और मैं हूं आपकी दोस्त प्राची। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का हर जिला अपने भीतर एक अलग रंग, एक अलग खुशबू और एक अलग पहचान समेटे हुए है। कहीं चिकनकारी, कहीं बनारसी साड़ी, कहीं पेड़ा, कहीं इत्र और कहीं ऐसा स्वाद जो बरसों तक रह जाए याद।
1: और आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे ही जिले में जहां की सुबह की शुरुआत होती है गर्मा गर्म खुशबू से, जहां गलियों में स्वाद बसता है और जहां हर निवाला अपने पन का एहसास देता है।
2: जी हाँ दोस्तों, आज का एहसास हमारा खास पड़ाव है गोंडा। और आज यहाँ बात होगी यहाँ के मशहूर दही बड़े और खस्ता कचौड़ी, जो अब एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना के जरिए एक नई पहचान हासिल कर रहे हैं।
1: यानी जो स्वाद पहले सिर्फ गोंडा की गलियों तक सीमित था, आज वह स्वाद पूरे प्रदेश और पूरे देश में अपनी खुशबू फैला रहा है, क्योंकि ये है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
3: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी, नई

0: दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, सुबह का वक्त, हल्की हल्की ठंडी, सड़क के किनारे दुकान से उठती देसी घी की खुशबू और कढ़ाई में छनती हुई खस्ता कचौड़ी
1: और सामने बड़ी से भगौड़ी में रखा मुलायम दही बड़े, ऊपर से ठंडा ठंडा दही, मीठी चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च, भुना जीरा, काला नमक।
0: अरे बस बस, सुनते मुँह में जैसे पानी ही आ गया है।
1: दोस्तों गोंडा का दही बड़ा सिर्फ एक व्यंजन ही नहीं बल्कि यहाँ की मेहमान नवाजी की पहचान है। किसी के घर मेहमान आए हो, कोई त्योहार हो, शादी हो या फिर शाम की छोटी सी दावत, दही बड़े हर खुशी का हिस्सा बन जाते हैं।
0: यह दही बड़ा बनाने की प्रक्रिया बेहद ही खास होती है। उड़द की दाल को घंटों तक भिगोया जाता है, फिर उसे बारीक पीस कर फेटा जाता है ताकि बड़ा एकदम मुलायम बने।
1: और कई दुकानदार तो इसमें ड्राई फ्रूट्स की हल्की स्टफिंग भी करते हैं ताकि स्वाद में आपका रॉयल टच बना रहे।
0: और फिर बड़े को सुनहरा होने तक तला जाता है और बाद में ताजी मलाईदार दही में डुबो दिया जाता है।
1: ऊपर से मीठी इमली की चटनी, हरा धनिया की चटनी, भुना जीरा, चाट मसाला और अनार के दाने।
0: वाह वाह, सच कहें तो जैसे गोंडा के दही बड़े सिर्फ पेट नहीं भरते, दिल जीत लेते हैं।
2: ये बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना ODOC आपके गोंडा जिला में दही बड़ा और कचौड़ी का चयन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में?
3: नमस्कार, हमें इस पता लगा कि हमारे दही बड़े का चयन गोंडा जिला के अंतर्गत और कचौड़ी का चयन हमारे गोंडा जिला के अंतर्गत ODOC योजना में चयन हुआ है। हमें बहुत अच्छा लगा, प्रसन्नता हुई। और इसके बारे में यही कहा जाएगा, जहाँ तक हमको जो जानकारी मिली है, प्रदेश सरकार की एक ऐसी योजना है जो छोटे व्यापारियों को, मझोले व्यापारियों को, जो जिला स्तर पर अच्छा खाद्य पदार्थ बनाते थे उनको सम्मान मिला है, उनको प्रोत्साहित करने की योजना है।
2: चलिए बताइए, इस योजना से आपको व इस व्यापार के लोगों को, जुड़े लोगों को क्या लाभ होगा?
3: इस योजना से हमें तो बहुत लाभ होगा और हमारे साथ जो व्यापार में, इस व्यापार में जुड़े हुए लोग हैं उनको ये लाभ होगा, जिससे कि ये कल्याणकारी योजना है, छोटे व्यापारियों के लिए कल्याणकारी योजना है। और इससे जुड़े हर जिले में जो अहम खाद्य पदार्थ है, जो खाद्य आइटम, मशहूर खाद्य पदार्थ है, उसको सपोर्ट किया जा रहा है, उसकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग, सेलिंग, मतलब जो भी सरकार से हर तरीके का हर संभव मदद मिलती है, लोन संबंधी हो या हर तरीके का, सरकार उसमें मदद कर रही है। और छोटे व्यापारियों को जो अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे थे उनको प्रोत्साहित करके फ्रंट पर ला रही है।
1: और अब बात करते हैं गोंडा की दूसरी पहचान, खस्ता कचौड़ी की।
0: दोस्तों गोंडा पर अवध संस्कृति का गहरा प्रभाव रहा है और अवध की रसोई हमेशा से अपने नसाफत से भरे स्वाद और मसालों के लिए मशहूर रही है।
1: यही वजह है कि यहाँ की कचौड़ी भी साधारण नहीं बल्कि बेहद खास होती है।
0: इसकी भराई में उड़द दाल, हींग, धनिया, सौंफ, काली मिर्च और कई देसी मसालों का इस्तेमाल किया जाता है
1: और फिर इसे धीमी आंच पर तब तक पकाया जाता है जब तक बाहर से कुरकुरी और अंदर से मसालेदार ना हो जाए।
0: गोंडा में सुबह सुबह दुकानों पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं और ये एक आम बात है, कोई चाय के साथ कचौड़ी खा रहा है तो कोई दोस्तों के संग नाश्ते का आनंद ले रहा है।
1: और सबसे मजेदार बात, यहाँ कचौड़ी सिर्फ नाश्ता नहीं बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा भी है।
0: दोस्तों गोंडा में लगभग 100 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयों में 400 से अधिक कारीगर इस कारोबार से जुड़े हैं।
1: यानी ये स्वाद सिर्फ लोगों की पसंद नहीं बल्कि सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी भी है।
0: और अब बात उस पहल की जिसने गोंडा के इन पारंपरिक स्वादों को एक नई पहचान दी है।
1: जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार की ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और ODOC यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन योजना।
0: क्या बात है, इस योजना का उद्देश्य है हर जिले की खास पहचान को आगे बढ़ाना, स्थानीय हुनर को मंच देना और छोटी कारोबारियों को आत्मनिर्भर बनाना।
1: गोंडा की दही बड़ी और खस्ता कचौड़ी को भी इसी योजना के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है।
0: सरकार द्वारा छोटे व्यापारियों को आधुनिक प्रशिक्षण, बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और सपोर्ट और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
1: यानी जूस स्वाद पहले सिर्फ स्थानीय बाजारों तक ही सीमित था, अब वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और बड़े बाजारों तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लगातार स्थानीय कारोबार, पारंपरिक व्यंजन और छोटे उद्यमी को प्रोत्साहित कर रही है
1: और इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। गाँव और कस्बों के लोग अब अपने हुनर से नई पहचान बना रहे हैं।
0: दोस्तों, किसी भी प्रदेश की असली पहचान सिर्फ उसकी इमारतों या सड़कों से नहीं होती,
1: बल्कि वहाँ के लोगों, उनकी मेहनत, उनकी संस्कृति और उनके स्वाद से होती है।
0: गोंडा का दही बड़ा और खस्ता कचौड़ी इसी की पहचान का हिस्सा है। श्रोताओं,
1: एक ऐसा स्वाद जो परंपरा से जुड़ा है और विकास के साथ आगे बढ़ रहा है।
0: बढ़ती लागत, साफ सफाई बनाए रखना, कम सेल्फ लाइफ और कुशल कारीगरों की कमी,
1: लेकिन सरकार और स्थानीय प्रशासन लगातार इन चुनौतियों को कम करने के प्रयास कर रही है।
0: नई तकनीक, बेहतर ट्रेनिंग और मार्केटिंग सपोर्ट के जरिए छोटे व्यापारियों को मजबूत बनाया जा रहा है,
1: ताकि गोंडा का स्वाद सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी खास पहचान बना सके।
0: अगर अभी हमारे सामने गर्मा गर्म कचौड़ी आ जाए ना, तो मैं इंटरव्यू छोड़कर सीधा प्लेट पकड़ लूंगा।
1: और अगर साथ में दही बड़ी भी मिल जाए
0: तो भाई फिर शो खत्म होने तक कोई बात ही नहीं करेगा, सिर्फ खाने की आवाज आएंगी।
1: दोस्तों, अगर आप कभी गोंडा जाए, वहाँ की दही बड़ी और खस्ता कचौड़ी का स्वाद जरूर,
0: और अगर आपने पहले से खाया है तो हमें जरूर बताइए कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया,
1: क्योंकि स्वाद सिर्फ खाने की चीज नहीं, यादों का भी हिस्सा होता है।
0: तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे गोंडा का पारंपरिक स्वाद आज विकास और आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी लिख रहा है,
1: कैसे छोटे कारोबार बड़े सपनों में बदल रहे हैं और कैसे उत्तर प्रदेश का हर जिला अपनी नई पहचान बना रहा है।
0: हम फिर मिलेंगे उत्तर प्रदेश के किसी और जिले की नई कहानी के साथ, नए स्वाद के साथ और नई संस्कृति और नए विकास के साथ।
1: तब तक सुनते रहिए विकास का प्रदेश, उत्तर प्रदेश।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो, और फिलहाल लेता हूँ आपसे जाने की इजाजत। मैं आनंद और मेरे साथ
1: प्राची,
0: जल्दी आपको मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय
1: बाय बाय।
4: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका कम्युनिटी रेडियो और मैं हूँ स्मार्ट से सुजाता। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या पर जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है, कमजोरी, चक्कर आना, जल्दी थक जाना। क्या ये सिर्फ काम की वजह से है या फिर एनीमिया के संकेत हैं? इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर शालू गुप्ता, जो उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद। नमस्कार श्रोता और नमस्कार सुजाता जी।
2: मैम, हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि एनीमिया क्या होता है और ये कितना आम हो गया है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मुझे जुड़ने का मौका दिया अपने कम्युनिटी रेडियो के तहत, जिससे कि मैं लोगों को इस बारे में कुछ बता सकूं। अगर आप एनीमिया का मतलब सरल शब्दों में चाहें तो यह है शरीर में खून की कमी होना। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है हमारे शरीर में, जिसका काम होता है कि ऑक्सीजन को खून के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाए। जब शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो ऑक्सीजन सही तरीके से शरीर में नहीं पहुंच पाती है, जिससे शरीर में कमजोरी, थकान और सुस्ती महसूस होती है। और आयरन की कमी की वजह से और कई कारणों की वजह से इस हीमोग्लोबिन की मात्रा में जब कमी होती है, उसे एनीमिया हम कहते हैं। थोड़ा बदलाव खाने में अब आने लगा है, लोग जंक फूड खाने लगे हैं, जिससे ऊर्जा तो मिलती है लेकिन जरूरी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन है, आयरन है, विटामिन है, ये सब नहीं मिलते हैं। इन वजहों से भी शरीर में खून कम हो जाता है और एनीमिया हो जाता है। इसके अलावा साफ सफाई की कमी, पेट में कीड़े होना, महिलाओं में पीरियड्स अगर बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग अगर ज्यादा हो तो उसकी वजह से भी कारण ये बन सकता है।
2: अच्छा डॉक्टर, हमें ये भी बताएं कि एनीमिया के मुख्य लक्षण क्या होते हैं और आम लोग इसे शुरुआती स्तर पर कैसे पहचान सकते हैं?
3: ये एक बहुत ही अहम प्रश्न है, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं एनीमिया के कुछ लक्षणों को इग्नोर करती हैं, उन्हें नजरअंदाज करती है ये सोच के कि ये तो नॉर्मल सी चीज है। शुरुआती लक्षण ये होते हैं कि इंसान जल्दी जल्दी थक जाता है, चक्कर आने लगता है, कमजोरी महसूस होती है, सांस भी फूल सकती है, चेहरे पे, होंठ पे पीलापन आ जाता है, शरीर पे सूजन आ सकती है, बालों का झड़ना भी हो सकता है। इसकी वजह से लोगों को लगता है और स्पेशली महिलाओं को ये लगता है कि क्या ऐसी खास बात है, शायद ज्यादा काम कर लिया इस वजह से ये परेशानी हमें हो रही है। लेकिन अगर ये सब चीजें कंटिन्यूअस निरंतर बनी रहे तो ये जरूरत है जानने की कि ये किस कारण से हो रहा है, कहीं हमें खून की कमी तो नहीं हो रही है। ऐसे में कमजोरी बार बार महसूस होने पे, सीढ़ियां अगर थोड़ी सी चढ़ने पे सांस फूलने लगे या निरंतर थोड़ा स्पीड में चलने में अगर सांस फूलने लगे तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपने खून की जांच जरूर से करवानी चाहिए।
2: अच्छा, क्या एनीमिया सिर्फ आयरन की कमी से होता है या इसके और भी कारण हो सकते हैं?
3: देखिए, ज्यादातर एनीमिया आयरन की कमी से होता है, भारतवर्ष में भी और उत्तर प्रदेश के राज्य में भी ये। लेकिन ऐसा नहीं है कि एनीमिया सिर्फ आयरन की कमी से होता है, इसके और भी बहुत कारण होते हैं। हम आयरन की कमी, जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको, जंक फूड जब ज्यादा खाया जाता है, जब पोषण संबंधी कारण हो सकता है और गैर पोषण संबंधी कारण भी हो सकता है। अगर हम पोषण संबंधी कारणों की बात करें तो आयरन के साथ साथ कभी कभी विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी से भी एनीमिया होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जिसे हम कहते हैं। और गैर पोषण संबंधी कारणों में जैसे अगर ज्यादा खून बढ़ना, जैसे मैंने बताया ना कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को अगर बहुत ज्यादा पीरियड्स आए, किशोरियों को अगर ब्लीडिंग ज्यादा आने की समस्या हो, इसके अलावा अगर एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, अचानक शरीर में खून की कमी हो जाती है, तथा कुछ बीमारियां जैसे मलेरिया जो शायद लोगों को इतना नहीं पता है, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, कई तरह के इन्फेक्शंस और किडनी की बीमारी और कैंसर, इन सब में भी एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है। लेकिन मैंने जैसा अभी आपको बताया, मुख्यतः भारत में और उत्तर प्रदेश में आयरन की कमी की वजह से ये बीमारी होती है।
2: क्या ये सिर्फ एनीमिया महिलाओं तक सीमित है या पुरुष और बच्चे भी इससे प्रभावित हैं?
3: ये एक बहुत अहम प्रश्न है, क्योंकि हम लोग जैसा देखते हैं महिलाओं में ही ये सीमित नहीं है। जान के आपको हैरानी होगी कि बच्चों में, पुरुषों में, बुजुर्गों में, ये किसी भी एज को नहीं छोड़ता है, सब में ये बीमारी हो सकती है। हालांकि महिलाओं में ये थोड़ी ज्यादा होती है, किशोरियों में ज्यादा होती है, कारण बच्चों में ज्यादा होती है। कारण ये है कि खान पान की कमी और अपने ऊपर थोड़ा लापरवाही करना या पौष्टिक तत्व ना लेना। महिलाओं में आप जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री महिलाएं हैं, किशोरियां हैं, इन सब में संभावना अधिक होती है। बच्चों में क्योंकि उनके शरीर को अधिक पोषण चाहिए, आयरन विटामिन की जरूरत उनके शरीर को ज्यादा होती है जब ये ग्रोइंग फेज होती है। और इसके अलावा गलत खान पान की आदतें, जैसे बच्चे आजकल जंक फूड्स बहुत खाते हैं, बार बार पेट में कीड़े हो जाने, जैसे वर्म इन्फेस्टेशन अगर हो जाते हैं, तो इसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। इसलिए हर एज में और हर सेक्स में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा।
2: अच्छा डॉक्टर, हमें ये भी बता दें कि हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होना चाहिए और कब इसे खतरनाक माना जाता है?
3: WHO की गाइडलाइंस के अनुसार जो महिलाएं और किशोरियां हैं उनमें नॉर्मल जो हम हीमोग्लोबिन का लेवल लेते हैं वो है 12 ग्राम या उसके अधिक, पुरुषों में 13 ग्राम पर डेसीलीटर या उससे अधिक, लेकिन गर्भवती महिलाओं में अगर 11 ग्राम डेसीलीटर या उससे अधिक होता है तभी हम उसे नॉर्मल मानते हैं। 11 ग्राम से कम अगर हीमोग्लोबिन होता है तो हमें उसे फिर एनीमिक कैटेगराइज करते हैं। ये कैटेगरी एनीमिया की माइल्ड भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है और सीवियर भी हो सकती है।
2: तो किन स्थिति में हम जानेंगे कि ये सीवियर एनीमिया है?
3: अगर 7 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन है तो ये सीवियर है, ये खतरनाक है और ये जानलेवा भी हो सकता है।
2: क्या मोटे लोगों को एनीमिया नहीं होता?
3: बिल्कुल हो सकता है। मोटापे का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पोषण आपको मिल रहा है, ओवर ईटिंग अगर आप कर रहे हैं या हिडन हंगर जैसी, अगर जैसे कुपोषण, मतलब जैसे कहते हैं ना, मोटापा इज अ काइंड ऑफ कुपोषण, ये एक नॉर्मल चीज नहीं है। और मोटे लोगों को कई बार वो तला भुना जंक फूड ज्यादा खाते हैं, वो पोषण और जो कि जरूरी पदार्थ हैं, पोषक तत्व हैं, वो नहीं खाते हैं। बेसिकली एनीमिया हमारा आयरन की, विटामिन की, मिनरल्स की कमी की वजह से होता है। इसलिए ऐसे लोगों में एनीमिया होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि उनका जो खाना है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसलिए संतुलित और पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है।
2: अच्छा, रोजमर्रा के खाने में कौन कौन सी सस्ती और स्थानीय चीजें शामिल करें जिससे एनीमिया से बचा जा सके?
3: वैसे तो आयरन फोलिक एसिड की गोली हमारे प्रदेश में हर स्वास्थ्य केंद्र पे, चाहे वो उपकेंद्र हो, चाहे वो PHCs हो, CHCs हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, वहाँ सब जगह ये निशुल्क उपलब्ध है। लेकिन खाने में जो जरूरी चीजें हैं जो कि इंसान अपना सकता है इस बीमारी से अपने बचाव के लिए, वो हैं दालें, अनाज जैसे चना है, मसूर है, मूंग है, सोयाबीन है। इसके अलावा अंकुरित दालें जैसे हैं या मूंग चना है, इनको ले सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक है, मेथी है, सरसों है, और सबसे सस्ता जैसे कहना चाहिए गुड़ और चना, जो कि हर घर में उपलब्ध होगा। इसके अलावा बाजरा है, ज्वार है, मूंगफली है, सेब है, अंडा, मांस मछली, जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं वो इससे भी अपने को आयरन की कमी दूर कर सकते हैं। आयरन के साथ साथ अगर आप विटामिन सी का सेवन करें तो आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, जैसे नींबू है, अमरूद है, आंवला है। अगर ये आप आयरन के जो खाने हैं, आयरन रिच फूड्स जो मैंने अभी आपको बताया, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, चना, दाल, अंडा, मांस, मछली, इसके साथ अगर आप ये वाले फल भी खाएं जो कि सिट्रस फ्रूट्स कहलाते हैं, तो इसमें आयरन का अवशोषण और भी बेहतर हो सकता है।
2: मुझे ये भी जानना है कि आयरन की गोली लेने का सही तरीका क्या है और खाने के साथ या खाली पेट उसे खाया जा सकता है।
3: देखिए, आयरन की गोली लेने का सबसे सही तरीका तो खाली पेट है और ये ज्यादा प्रभावी होता है क्योंकि इसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन बेहतर होता है। लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि खाली पेट लेने पर कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जैसे जी मचलाना, उल्टी आना, पेट में दर्द, ये सब भी महसूस हो सकता है। ऐसे में इसे हल्के भोजन के करीब 1 या 2 घंटे बाद लिया जा सकता है। लेकिन ये चीज का खास ख्याल रखें कि चाय और कॉफी के साथ या उसके तुरंत बाद आयरन नहीं गोली जो है वो कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और प्लस कुछ पदार्थ जैसे टैनन्स होते हैं, फाइटेट्स होते हैं, वो सब नुकसान करते हैं। अगर आप आयरन की गोली को नींबू पानी के साथ या आप संतरे के रस के साथ आप लें तो ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है।
2: अच्छा, हमें ये भी बताएं डॉक्टर कि क्या बच्चों में एनीमिया जब हो जाता है तो क्या उनकी पढ़ाई या मानसिक विकास को प्रभावित करता है?
3: अब बहुत हद तक ये बहुत जरूरी है, इसीलिए कि गर्भवती माताएं और धात्री माताएं स्पेशली अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जैसे कहते थे ना पहले जमाने में लोग कि गर्भवती जब महिलाएं होती हैं तो वो 2 केले खाती हैं, अपने लिए भी खाती हैं, अपने बच्चे के लिए भी खाती हैं। तो ये बहुत गर्भ से ही अगर आप आयरन की कमी आपके अंदर नहीं होगी, आप पूरी तरह से आयरन खाएंगे तो आपके बच्चे पे इसका अच्छा असर पड़ेगा। और बच्चों में तो स्पेशली अगर एनीमिया हो तो उनका वो शारीरिक और मानसिक विकास दोनों पे

0: आय से संबंधित है उनमें सुधार करें, और दूसरा नियमित रूप से आयरन के टेस्ट के लिए अपनी हीमोग्लोबिन की जांच कराएं, जिससे उसे ये पता चल सके कि उसका आयरन का लेवल कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है। साथ में जैसा अभी मैंने आपको बताया कि हर 6 महीने पे हमारे यहाँ प्रोग्राम्स चलते हैं, जिसमें कि डिवॉर्मिंग के लिए हम लोग गोली देते हैं जिससे कि पेट के कीड़े भी मर सकें, तो उसका भी सेवन 6 महीने पे अगर करें तो जो वर्म इन्फेस्टेशन है वो खत्म हो सकता है, जिस जो भी एक कारण होता है एनीमिया करने का। और बाकी तो जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि पौष्टिक तत्व जो है वो खाने में लेने चाहिए। आयरन की गोली जरूरत के हिसाब से दी जाती है। स्कूलों में भी हमारा विप्स का प्रोग्राम चलता है, जिसमें कि स्कूल के बच्चों को हर हफ्ते आयरन की गोली दी जाती है स्कूलों के अंदर। तो इस तरह से भी घर में भी और घर के बाहर भी आयरन की गोली का सेवन करना, खाने में पौष्टिक तत्वों को इंक्लूड करना और समय समय पर हीमोग्लोबिन की जांच कराना।
1: हमारे जितने भी ग्रामीण श्रोता हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी ओर से?
0: देखिए, अनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसे लोग बहुत हल्के में लेते हैं, मगर आपको मैं ये जानकारी देना चाहती हूँ कि यही चीज अगर बढ़ जाए तो वो जानलेवा हो सकती है, और इसीलिए बहुत, और ये बचाव पूरी तरह संभव है, आपके हाथ में है। ऐसा नहीं है कि ये एक लाइलाज बीमारी है। ये बीमारी आप छोटी छोटी अपनी आदतों में सुधार लाके, अपनी जीवन शैली में सुधार लाके आप इस बीमारी पे कंट्रोल पूरी तरह से कर सकते हैं। इसलिए संतुलित आहार, साफ सफाई, नियमित जांच, आयरन की गोली और डिवॉर्मिंग, ये सब चीजें आप, इन छोटी छोटी चीजों को अगर आप अपनी लाइफ में शामिल कर लेंगे तो आप आयरन की कमी से हमेशा के लिए बच जाएंगे।
1: आपने बहुत अच्छी जानकारी दी मैम हमारे श्रोताओं को। तो आगे हम ये जानना चाहते हैं डॉक्टर कि क्या सभी गांवों में नियमित हीमोग्लोबिन जांच की सुविधा उपलब्ध है?
0: हाँ, हमारे यहाँ प्रदेश में सरकार ने ये निशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई है। सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों में, सभी अस्पतालों के माध्यम से हीमोग्लोबिन की जांच होती है, और ये एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है जिसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में, आपके घर के पास जो भी कोई सरकारी अस्पताल है, चाहे वो PHC हो चाहे CHC हो, वहां जाकर आप ये जांच करा सकते हैं और अपने हीमोग्लोबिन का स्टेटस पता कर सकते हैं।
1: अगर किसी को IFA की गोली से दिक्कत होती है, जैसे उल्टी आना, जी मिचलाना, तो इसके लिए क्या विकल्प है, वो क्या करे?
0: देखिए, ये मन में बहुत भ्रांतियां हैं आयरन के दवा को खाने में, और कई बार ये कहा जाता है कि आयरन की गोली अगर खाएंगे तो काले रंग की लेटरिन हो, शौच में जब आप जाएंगे तो काले रंग की लेटरिन हो जाएगी,
1: बच्चे भी काले
0: हो जाएंगे, शायद इसलिए भी कुछ परिवार में ये दवा नहीं खाई जाती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आयरन की गोली को लेने में आपको हल्का फुल्का पेट में दर्द, जी मिचलाना, उल्टी आना है, तो आप इसे घबराएं नहीं। ये कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है। ये सिर्फ हल्के से जो ये सिम्टम्स हैं, इनको अगर आप खाली पेट लेने के बजाय खाने के 1-2 घंटे बाद लें, नींबू के रस के, मैंने बताया ना, नींबू पानी के साथ लें, या आप संतरे के जूस के साथ ले सकते हैं, आंवला आप साथ में अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये साइड इफेक्ट्स कम भी हो सकते हैं। हम लोग वैसे खाली पेट कहते हैं, लेकिन अगर आपको खाने के बाद ये परेशानी आती है तो आप इसे खाली पेट ना लें। इसके साथ पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। चाय, कॉफी का सेवन आयरन की गोली के साथ ना करें, क्योंकि ये आपके साइड इफेक्ट्स को बढ़ा देगी, आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देगी। और जी मिचलाता है अगर, तो नींबू पानी शिकंजी के रूप में आप ले सकते हैं। ORS का पैकेट्स फ्री मिलते हैं, वो भी आप साथ में ले सकते हैं। और अगर आप वो कोई एक पर्टिकुलर सॉल्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि एक कोई खास सॉल्ट जो होती है आयरन की, उसकी वजह से ये लक्षण आते हैं, जैसे कहते हैं ना, कभी कभी कोई दवा किसी को सूट नहीं करती, तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, उस सॉल्ट के बजाय वो आपको कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट करके कोई दूसरी सॉल्ट भी दे सकती है। और अब बहुत तरह के आयरन की दवाएं उपलब्ध हैं, और साथ में आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे प्रदेश में इंट्रावीनस आयरन, जो कि

0: आयरन सुक्रोज के ही फॉर्म में मिलता था, अब हम लोगों ने आयरन एफसीएम एक नई हमने इंजेक्शन भी लॉन्च किया है अपने प्रदेश में, और इसके द्वारा भी, लेकिन ये हर किसी को नहीं दिया जाता, ये तभी दिया जाता है जब सीवियर एनीमिया हो, मॉडरेट एनीमिया हो, तो जरूरत के हिसाब से वो भी दिया जा सकता है। मतलब आयरन की कमी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, तो कोई ना कोई विकल्प तो आपको सूट कर ही जाएगा।
1: अभी आपने इंजेक्शन की बात करी डॉक्टर, तो क्या ये बच्चों को भी दिया जा सकता है कि या सिर्फ गर्भवती महिलाओं को, ये किस एज के सीवियर एनीमिया को दिया जा सकता है?
0: देखिए, अभी आयरन का जो हमारा फिलहाल जो प्रोग्राम चल रहा है, ये जो एफसीएम का इंजेक्शन है, ये अभी हमने गर्भवती महिलाओं को और साथ में धात्री महिलाओं के लिए हमने शुरू किया है, क्योंकि ये तब दिया जाता है जब आयरन की जो हमारा लेवल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तो मॉडरेट और सीवियर एनीमिया में हम लोगों को, और ये एक तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन का विकल्प है। फिलहाल जो हमारा प्रोग्राम जो एफसीएम का है, ये इसमें अभी बच्चों को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन बच्चों के लिए आयरन का सप्लीमेंटेशन सिरप की फॉर्म में, क्योंकि ये इंट्रावीनस इंजेक्शन है, तो इंट्रावीनस से आप समझती है ना, नस में ये सुई दी जाती है, तो ये अभी बच्चों को हम नहीं देते हैं, ये अभी फिलहाल हम लोग गर्भवती महिलाओं को, और इसके अलावा हम लोग किशोरियों को भी दे सकते हैं अगर बहुत जरूरत हो तो, मैंने बताया ना ब्लड के विकल्प की वजह से, लेकिन बच्चों के लिए हमारा आयरन सिरप आता है वो उन्हें दिया जाता है।
1: तो क्या वो हर सीएससीपीएससी पर उपलब्ध?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने, अगर आपको जाने में भी अगर परेशानी हो तो आपके घर के आसपास जो आशा या आंगनवाड़ी सेंटर हो या एएनएम्स हो या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको लाके ये शीशी खुद घर पे भी दे सकती है, दे भी देती है, और आप वो तरीका बता देगी कि किस तरह से आपको उसे देना है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी दी है डॉक्टर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, और मैं, मुझे बहुत खुशी होगी अगर इस जानकारी के जरिए बहुत लोगों को या कुछ लोगों को इसका लाभ मिले और इस बीमारी से उन्हें निजात मिले। थैंक यू।
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
3: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम स्वतंत्री बंधानी, जिला उत्तरकाशी है, उत्तराखंड। मैं जो खेती करती हूँ जिसमें सारे मिलेट्स से हमारे बीमा करना इसलिए जरूरी है, जो किसान बीमा करते हैं, हम लोगों ने खुद बीमा किया है। पिछले साल हमने 40,000 प्रीमियम जमा करा और उसका हमें 4 गुना मिला।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।

0: हम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया। मतदाता सूची का सत्यापन 17 अगस्त तक जारी। दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, अब तक 3,300 से अधिक निक्षय मित्र टीबी मरीजों के सहयोग के लिए सक्रिय रूप से जुड़ चुके हैं। दिल्ली मेरठ मार्ग पर नमो भारत ट्रेन में 3 अगस्त को एक ही दिन में 15 लाख से अधिक यात्रियों ने यात्रा की और युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कॉमनवेल्थ गेम्स में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। और अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारियों द्वारा घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन 17 अगस्त तक जारी रहेगा। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची अब 27 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने बताया कि नागरिक 24 अगस्त से 23 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र को भी भर सकते हैं। दिल्ली की 8वीं विधानसभा का 6ठा सत्र शुक्रवार को सुबह 11 बजे पुराना सचिवालय स्थित विधानसभा सदन में प्रारंभ होगा। इसकी जानकारी आज दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दी। श्री गुप्ता ने कहा कि सदन की बैठकें 7, 10 और 11 अगस्त को आयोजित होंगी और हर बैठक दिन के निर्धारित कार्यों की समाप्ति तक चलेगी। उन्होंने बताया कि सदन के समक्ष उपलब्ध कार्य के अनुसार बैठक की अवधि आवश्यकता अनुसार बढ़ाई जा सकती है। श्री गुप्ता ने कहा कि दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने सत्र के सुचारू और व्यवस्थित संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। साथ ही नियमों के अंतर्गत आवश्यक सभी सूचनाएं नेवा पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से प्रस्तुत की जाएंगी। दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अब शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गीता कॉलोनी स्थित DM कार्यालय में इस योजना के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में दी जाएगी। इसी कड़ी में आज विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपने कार्यालय में योजना की पात्र महिलाओं के आवेदनों का सत्यापन कर उन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये योजना महिलाओं के सम्मान, उनके आत्मविश्वास और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं श्री सिरसा ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य राजधानी की महिलाओं के प्रति सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक संबल को बढ़ावा देना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज दिल्ली सचिवालय में टीबी हारेगा भारत जीतेगा राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत आयोजित जनप्रतिनिधियों की सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप में मुख्य अतिथि के रूप में भाग ले रही थी। इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा टीबी उन्मूलन अभियान से संबंधित विभिन्न सूचना और जागरूकता स्टॉलों का अवलोकन किया गया।
3: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विशेष रूप से निक्षय मित्र अभियान से जुड़े स्टॉल का निरीक्षण करते हुए टीबी रोगियों को उपलब्ध कराई जा रही पोषण सहायता, सामुदायिक सहयोग, जन भागीदारी, मरीजों के पुनर्वास और डिजिटल माध्यम से सहयोग उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने इस अभियान को प्रत्येक वार्ड, विधानसभा और स्थानीय स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि राजधानी में अब तक 3,300 से अधिक निक्षय मित्र टीबी मरीजों के सहयोग के लिए सक्रिय रूप से जुड़ चुके हैं। साथ ही उनके सहयोग से 1,20,000 से अधिक पोषण आहार टीबी मरीजों को वितरित किए जा चुके हैं। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि टीबी का समय पर पता लगने और उपचार पूरा होने पर इसका पूर्ण इलाज संभव है, इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति जांच, उपचार तथा परामर्श से वंचित न रहे। श्री सिंह ने कहा कि जन प्रतिनिधियों, स्वास्थ्य कर्मियों, सामाजिक संगठनों और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों से टीबी उन्मूलन अभियान एक व्यापक जन आंदोलन का रूप लेगा। आदित्य के रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली मेरठ मार्ग पर नमो भारत ट्रेन ने 3 अगस्त को एक ही दिन में 15 लाख से अधिक यात्रियों ने यात्रा की। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये एक दिन में अब तक की सबसे अधिक यात्री संख्या है। इससे पहले इस साल 8 जून को 12 लाख यात्रियों ने यात्रा की थी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम अकादमी ने आज शास्त्री पार्क कैंपस में कंक्रीट संरचना की मरम्मत, पुनर्वास और रेट्रोफिटिंग पर एक दिवसीय तकनीकी कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में रेल इंडिया तकनीकी और आर्थिक सेवा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली जयपुर मेट्रो और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम तथा दूसरे प्रमुख अवसंरचना संगठनों सहित 35 भारी संगठनों ने हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट।
4: दिल्ली मेट्रो ने बताया कि इसमें इंजीनियरों, शिक्षाविदों, इंडस्ट्री के जानकारों और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोफेशनल्स को एक साथ लाकर कंक्रीट की मरम्मत, सुधार और रेट्रोफिटिंग में हुई नई तकनीकी पर चर्चा की गई। साथ ही CSIR, CBRI रुड़की और IIT मद्रास जैसे प्रमुख संस्थानों और उद्योग के बड़े संगठनों के जानकारों ने तकनीकी सत्र लिए। इस सत्र में संरचनात्मक मूल्यांकन, टिकाऊपन बढ़ाने, मरम्मत के आधुनिक और उन्नत पदार्थ, जंग से बचाव और रेट्रोफिटिंग की नई तकनीकों जैसे विषयों पर जानकारी दी गई। दिल्ली मेट्रो ने कहा कि सत्र में तकनीकी जानकारी साझा करने, पेशेवर नेटवर्किंग और उद्योग शिक्षा जगत सहयोग के लिए एक बेहतर मंच प्रदान किया गया, जिससे इंजीनियरिंग शिक्षा में क्षमता निर्माण के प्रति दिल्ली मेट्रो ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन दिल्ली मेट्रो के प्रबंध निदेशक ने किया। इस अवसर पर दिल्ली मेट्रो के निदेशक, कार्यकारी निदेशक, विभागाध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
2: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC, सराय काले खान नमो भारत स्टेशन और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाले फुटओवर ब्रिज पर गंदगी फैलाने वालों के विरुद्ध जागरूकता और प्रवर्तन अभियान चला रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नव निर्मित और आधुनिक सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को स्वच्छ, सुंदर और यात्रियों के अनुकूल बनाए रखना है। एक रिपोर्ट।
5: इस अभियान के दौरान यात्रियों को सार्वजनिक जगहों पर साफ सफाई बनाए रखने के महत्व के बारे में जागरूक किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों के विरुद्ध लागू प्रावधानों के अनुसार जुर्माना भी लगाया जा रहा है। साथ ही 30 जुलाई 2026 तक सराय काले खां FOB पर मेट्रो रेल अधिनियम 2002 की धारा 59 के अंतर्गत कुल 56 चालान काटे जा चुके हैं। NCRTC सतत जागरूकता अभियानों और स्वच्छता नियमों के प्रभावी परिवर्तन के माध्यम से यात्रियों में जिम्मेदार नागरिक व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयासरत है। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
2: दिल्ली नगर निगम के नेता सदन जय भगवान यादव और स्थायी समिति अध्यक्षा सत्या शर्मा ने आज दिल्ली नगर निगम मुख्यालय से दिल्ली परिवहन निगम DTC की एक नई बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये नई बस सेवा निगम मुख्यालय से बांकनेर गांव तक आरंभ की गई है, जिससे इस मार्ग पर यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध होगा। इस अवसर पर नेता सदन जय भगवान यादव ने कहा कि दिल्ली वासियों को सुलभ, सुरक्षित और किफायती सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना सरकार और संबंधित संस्थाओं की प्राथमिकता है। वहीं स्थायी समिति अध्यक्षा सत्या शर्मा ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना एक विकसित और आधुनिक दिल्ली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली नगर निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने ओखला लैंडफिल साइट का निरीक्षण कर बायो माइनिंग कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान निगमायुक्त ने ओखला लैंडफिल साइट कचरे के निस्तारण की प्रगति पर संतुष्टि व्यक्त की। श्री खिरवार ने ओखला लैंडफिल साइट पर बचे कूड़े के शीघ्र निस्तारण के काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने लैंडफिल साइट के प्रवेश मार्ग को पक्का करने के आदेश दिए हैं, जिससे लैंडफिल साइट पर भारी वाहनों का सुगमता से आवागमन होता रहे। आयुक्त संजीव खिरवार ने ओखला लैंडफिल साइट पर हर रोज आने वाले नए कूड़े के निस्तारण कार्य में भी तेजी लाने के आदेश दिए हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत देश भर में 50 लाख से अधिक परिवारों को छतों पर सौर पैनल लगवाने का लाभ मिला है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि यह योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है, ये भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में भी गति प्रदान कर रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि 19 लाख से ज्यादा परिवारों का बिजली बिल अब शून्य हो चुका है। दिल्ली पुलिस ने एक संगठित अंतर्राज्य साइबर धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कहा कि इस मामले में राजस्थान और मध्य प्रदेश से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अभिमन्यु पोसवाल ने बताया कि आरोपी व्हाट्सएप के जरिए संदेश भेजकर लोगों से पैसे कमाने का लालच देकर ठगी करते थे।
6: कंप्लेनेंट ने बताया था कि व्हाट्सएप पे उनके पास मैसेज आता है और कमीशन बेसिस पे अमेज़न के रिप्रेजेंटेटिव की तरह बताते हैं कि इसमें कमीशन बेसिस पे आपको टास्क दिए जाएंगे और आपको इसमें पैसा कमाने का मौका मिलेगा। हमने FIR रजिस्टर करी रेलेवेंट सेक्शंस में BNSS के और डेडिकेटेड टीम बनाई जिन्होंने फाइनेंशियल ट्रेल्स को देखते हुए CCTVs की एनालिसिस करी और UPI ट्रांजेक्शंस को देखते हुए आइडेंटिफाई करा। इस पूरे प्रकरण में 6 मोबाइल फोन की रिकवरी हुई और बाकी इनक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस भी मिले हैं।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में आयोजित एक अभिनंदन समारोह में पदक विजेताओं को स्वर्ण पदक के लिए 30 लाख रुपए, रजत पदक के लिए 20 लाख रुपए और कांस्य पदक के लिए 10 लाख रुपए के नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए डॉ. मांडविया ने उनसे अपने खेल करियर से आगे बढ़कर भारतीय खेलों की अगली पीढ़ी में योगदान देने का आग्रह किया।
7: सरकार ने खेलो इंडिया स्कीम लाया, स्पोर्ट्स के लिए सारी फैसिलिटी व्यवस्था खड़ी करी, लास्ट वीक में 36,000 करोड़ रुपया दिया जो आपके लिए यूज करा जाए। सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी नहीं चलाई। आप जैसे जो एथलीट रिटायर करेंगे, जो स्पोर्ट्स को जीते हैं, मैं आपको कहूंगा कि आप चलाओ, पैसा हम देंगे। देश की आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा है। हमें हर बार नए लक्ष्य को तय करना है और इस लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रयास करना।
2: दिल्ली के शिक्षा और खेल मंत्री आशीष सूद ने नई दिल्ली में रायसीना बैडमिंटन अकादमी और पिकल बॉल एरेना का उद्घाटन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार निवेश कर रही है। राजधानी दिल्ली में आज मौसम अच्छा रहा और राजधानी के कई क्षेत्रों में तेज बारिश भी हुई। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया। मतदाता सूची का सत्यापन 17 अगस्त तक जारी। दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा अब तक 3,300 से अधिक निक्षय मित्र टीबी मरीजों के सहयोग के लिए सक्रिय रूप से जुड़ चुके हैं। दिल्ली मेरठ मार्ग पर नमो भारत ट्रेन में 3 अगस्त को एक ही दिन में 15 लाख से अधिक यात्रियों ने सफर किया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धिविहार, फेस 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा,

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
3: यही जानना चाहते हैं कि अपने नाम के आगे जो आपने उपनाम दिया है, मनोज वर्मा मनु, मनु नाम से क्या तात्पर्य है, मतलब क्या सोच के रखा था मनु?
4: जी छाया जी, ये जो मेरा उपनाम है, ये मेरे दोस्तों की, मेरे घर में, मेरे परिवार की देन है। और इसके बारे में मैं कहूँ तो ये हमारे संस्कृति में आदि पुरुष जो मनु सतरूपा के नाम से आपने सुना होगा, जो कि आदम के इक्विवेलेंट आते हैं, ये उसी नाम से संबंधित है। और मैं सोचता हूँ कि मानवता के लिए ये एक अच्छा नाम है, इसलिए मैंने इसे अपने नाम के साथ जोड़ा है।
3: जी जी जी, तो जैसा कि आप गजल, गीत, दोहे, नज्म वगैरह करते हैं, तो मेरा जो सबसे पहला सवाल है वो यही है कि गजल और शायरी लिखने में आपका कैसे रुझान विकसित हुआ, या कोई विशेष लम्हा या प्रभाव आपकी रुचि को प्रज्वलित किया?
4: बहुत अच्छा सवाल है। दरअसल जिस समय हम अपनी युवावस्था में थे, उस समय और जहाँ से हम बिलोंग करते हैं बेसिकली, वो जगह मुशायरों के लिए बड़ी प्रसिद्ध थी, जनपद रामपुर, जो अदब का शहर कहलाता है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो अक्सर हम जो मुशायरे वगैरह में जाते थे और अपने साथियों के साथ इसको सुनते थे, वहाँ पर उसका एक क्रेज अलग था। तो जब वहाँ पर शायरों को सुना जाता था और उनका अंदाज देखते थे, तो इसी चीज ने धीरे धीरे रुझान पैदा कर दिया। और ये तो एक बात है ही कि किशोरावस्था में अगर आपको गजलों से निस्बत होने लगे, तो यकीनन ये इस बात का सबूत है कि दिल में किसी की चाहत के अंकुर फूट रहे। तो और बंदा अपने दिल की बात बड़े अदब और शाइस्तगी के साथ अपने महबूब तक पहुंचाने की तमन्ना रखता है, तो धीरे धीरे शायरी को जानने और समझने का सलीका भी रुचि पैदा कर देता है। बस इस तरफ थोड़ा रुझान हो गया।
3: चलिए, क्या बात है, बहुत अच्छा आपका जवाब मिला हमें।
4: शुक्रिया
3: जी जी। तो गजल और शायरी लिखते समय आपकी रचनात्मक प्रकृति कैसी होती है? क्या आप कोई निश्चित रूटीन फॉलो करते हैं या कोई विशेष प्रेरणा के स्रोत है?
4: मकतवेश का अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसको सबक याद हुआ।

0: तो छाया जी मैं कहना चाहूंगा कि रचना कर्म से जुड़ने के बाद भी बिल्कुल यही कैफियत लागू होती है। इसका कोई निश्चित रूटीन नहीं होता, ना ही संभव है। ये एक सतत प्रक्रिया होती है जो लगातार जहन को अपनी जद में बांधे रखती है और नेचुरली आसपास के हालात या मन की कैफियत से प्रस्फुटित होकर अपने आप को सृजित करवा ही लेती है। हालांकि उसके शिल्प की तरतीब और उस विधा की बुनियादी जानकारी ये इस बात पर डिपेंड करती है कि हम उसमें कहाँ तक महारत हासिल कर पाते हैं। इसके बावजूद भी शेर कहना, पढ़ना ये एक खुदादाद कैफियत होती है, ईश्वरीय प्रेरणा का स्रोत होती है। क्योंकि कहा गया है, अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान के बस की बात नहीं।
1: अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान के बस की बात नहीं, क्या बात है। अच्छा सर, हमें ये बताइए कि आपका कोई पसंदीदा गजल या शायरी जिसके बारे में आप हमें बता सकते हैं, और आपके लिए वो खास क्यों है।
0: दरअसल छाया जी, बात यह है कि कोई भी शेर, कोई भी गजल अपने आप में हमेशा जो हमारी याद होती है उनसे जुड़ी हुई होती है, या जो परिवेश होते हैं उनसे मिली ही होती है, उनसे प्रेरित होती है। चलिए मैं आपको दो एक शेर के माध्यम से बात बताता हूँ। किसी को ख्वाब की ताबीर मिल गई होती, किसी को ख्वाब की ताबीर मिल गई होती, आप मिलते अगर तकदीर मिल गई होती। किसी को ख्वाब की ताबीर मिल गई होती, आप मिलते अगर तकदीर मिल गई होती, और रांझे ने भला कौन खुदा मांगा था, और रांझे ने भला कौन खुदा मांगा था, वही मिल जाता अगर हीर मिल गई होती, वही मिल जाता अगर हीर मिल गई होती। तो शायरी के कई पक्ष हैं, ये सामाजिकता के लिए भी होती है और अपने दिल के जज्बों को भी समेटे हुए होती है। तो जैसे जैसे हमारी बात आगे बढ़ेगी वैसे वैसे वरक दर वरक पन्ने खुलते चले जाएंगे।
1: वैसे ये जो मुक्तक था काफी अच्छा लगा हमें, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये मुक्तक आपको इतना पसंद क्यों है।
0: जैसा कि मैंने बताया, शायरी अपने आप में कई मकाम समेटे हुए होती है। ये कब कितनी आगे चली जाती है, कब कितनी पीछे चली जाती है, इसका कहना मुमकिन नहीं होता। तो ये सब उन्हीं जज्बों के छोटे छोटे अंश हैं जो हमारे सामने चलते रहेंगे। मैं और आपको रूबरू कराऊं अपने एक कते से कि हिफाजत से रखी हैं अब तलक यादें सभी दिल ने, हिफाजत से रखी हैं अब तलक यादें सभी दिल में, ये क्या रिश्ता है तुझसे, ये समंदर कितना गहरा है। हिफाजत से रखी हैं अब तलक यादें सभी दिल में, ये क्या रिश्ता है तुझसे, ये समंदर कितना गहरा है। नहीं भूला अभी भी मैं नहीं, तुम बदगुमा मत हो, नहीं भूला अभी भी मैं नहीं, तुम बदगुमा मत हो, कि मेरी रूह पे अब तक तुम्हारा लम्स ठहरा है, कि मेरी रूह पे अब तक तुम्हारा लम्स ठहरा है। तो ये सब यादों से जुड़ी हुई चीजें होती हैं जो यकायक आती हैं और फिर पन्नों में सिमट कर हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं।
1: क्या बात है, क्या खूब कथा आपने सुनाई। और इसी के साथ अगर अगले सवाल की तरफ आगे बढ़े तो हमारा अगला सवाल आपसे होगा, कविता और शायरी आपके लिए क्या है, मतलब क्या मायने रखता है, आप इसे कैसे देखते हैं।
0: जी छाया जी, मेरे नजदीक शायरी या कविता में श्रृंगार के साथ सामाजिक और मानविक मूल्य, कुदरत के प्रति संवेदनशीलता, रिश्तों में आत्मीयता और ईश्वर के प्रति आभार, ये संदेश प्रवाहित होकर ही कविता को कालजयी श्रेणी में रखते हैं। और मेरे नजदीक ये केवल लफाजी का एक तरीका नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मात्र लफाजी तुकबंदी ये कुछ समय के लिए तो प्रभावित कर सकती है, लेकिन वो स्थायी नहीं होती। और जो कविता या गजल या शायरी अगर हमारे समाज को संदेश ना दे पाए तो वो व्यर्थ होती है।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने और बहुत अच्छा लगा। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय भी हमारे पास कम है। सवाल अगला करेंगे लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे आपका कोई पसंदीदा गजल जो सुनना चाहेंगे हमारे आज के इस विशेष बातचीत में।
0: देखिए, छोटी छोटी बातों से मैं कविता को अपने नजदीक क्या समझता हूँ उसे बताने की कोशिश करता हूँ। हर हंसी भी खुशी का मज़ाहिर नहीं, हर हंसी भी खुशी का मज़ाहिर नहीं, गम तो ऐसे भी हैं जो कि जाहिर नहीं। हर हंसी भी खुशी का मज़ाहिर नहीं, गम तो ऐसे भी हैं जो कि जाहिर नहीं। जीस्त का मौत से फासला लम्हा भर, जीस्त का मौत से फासला लम्हा भर, इससे बचने में कोई भी माहिर नहीं, इससे बचने में कोई भी माहिर नहीं। हर हंसी भी खुशी का मज़ाहिर नहीं। और गजल में मैं दो तीन शेर आपके बीच रखता हूँ।
1: जरूर जरूर।
0: हाँ तेरी याद चली आई थी कल शाम के बाद, हाँ तेरी याद चली आई थी कल शाम के बाद, और फिर हो गई एक ताजा गजल शाम के बाद। हाँ तेरी याद चली आई थी कल शाम के बाद, और फिर हो गई एक ताजा गजल शाम के बाद। मेरी बेख्वाब निगाहों की अजियत मत पूछ, मेरी बेख्वाब निगाहों की अजियत मत पूछ, अपना पहलू मेरे पहलू से बदल शाम के बाद। हाँ तेरी याद चली आई थी कल शाम के बाद, और फिर हो गई एक ताजा गजल शाम के बाद। और अगला शेर है इसमें कि तू है मसरूफ तेरे दिन के शगल भी होंगे, तू है मसरूफ तेरे दिन के शगल भी होंगे, तू किसी रोज मेरे साथ निकल शाम के बाद, तू किसी रोज मेरे साथ निकल शाम के बाद। और हर नसीहत है बजा आपकी मगर ना से, हर नसीहत है बजा आपकी मगर ना से, हमसे हो पाएगा ना इस पे अमल शाम के बाद, हमसे हो पाएगा ना इस पे अमल शाम के बाद। और फिर गजल का शेर है कि तू नहीं है तो बहारों में कशिश क्या मानी, तू नहीं है तो बहारों में कशिश क्या मानी, कौन देखेगा ये रौनक बेमहल शाम के बाद, कौन देखेगा ये रौनक बेमहल शाम के बाद। और जो ताईद का शेर होता है कि मसाला मेज पे ये सोच के छोड़ आया हूँ, मसाला मेज पे ये सोच के छोड़ आया हूँ, अब ना निकला तो निकल आएगा हल शाम के बाद, अब ना निकला तो निकल आएगा हल शाम के बाद। और हो सियासत की रवायत या मोहब्बत के चलन, हो सियासत की रवायत या मोहब्बत के चलन, रिश्ता बेसाख्ता जाता है बदल शाम के बाद। हाँ तेरी याद चली आई थी कल शाम के बाद, और फिर हो गई एक ताजा गजल शाम के बाद।
1: क्या बात है, आपकी जितनी भी रचनाएं हैं इसका मधुर सौंदर्य हमारे सभी श्रोताओं के हृदय को छू रहा होगा और साथ ही साहित्य जगत को भी प्रभावित कर रहा है। चलिए ये तो रही आपकी शायरी की बात, लेकिन कुछ गीत दोहे जो आप सुनाना चाहते हैं, हम चाहेंगे हमारे श्रोताओं को और मुझे कुछ गीत सुनाएं।
0: जरूर। देखिए गजल और शायरी ये अपना शौक है, लेकिन कविता और गीत ये हमारा कल्चर है। तो मैं आपको एक अंचे के साथ, एक मुखड़े के साथ एक गीत के कुछ अंश रखता हूँ।

0: क्या बात है सर, जितनी प्यारी आपकी रचनाएं उतना ही प्यारा आपका गीत।
1: शुक्रिया, धन्यवाद।
0: वैसे हमारे श्रोताओं को भी बहुत पसंद आया होगा और इसका फीडबैक जरूर लेना चाहेंगे कल के शो में। हाँ जी, फिलहाल तो अपने शो की तरफ आगे बढ़ती हैं और अगला सवाल जानते हैं मनोज मनु जी से कि गजल और शायरी लिखते समय क्या आपने किसी प्रशिक्षण का सामना किया है? कैसे आप लिखने के भेद को समाप्त करते हैं या प्रेरणा प्राप्त करते हैं जब आप लिखने में अटक जाते हैं?
1: देखिए, शायरी की तरफ रुझान होना और शायरी कर पाना दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। हर विधा को निखारने के लिए प्रशिक्षण और सतत प्रयास की आवश्यकता होती ही है। और शायरी के बारे में तो ये कि शेर कह पाने की सोच एक ईश्वरीय वरदान का नतीजा माना जाता है। तो अगर आप में शेर कह पाने की खुदादाद सलाहियत नहीं है तो उसके समूचे व्याकरण आदि को जानने के बावजूद भी आपके शेर में वो बात हरगिज पैदा नहीं हो सकती जो उसको मकबूलियत या उसको प्रसिद्धि प्रदान कर सके। दो लाइनों से मैं अपनी बात रखूं कि अब इश्क हो कि शायरी जज्बाती अमल है, अब इश्क हो कि शायरी जज्बाती अमल है, खैरात सा नहीं ये इनायत सा नहीं है, जिसने लहू दिया है वही पाल सका है, ये शोक रईसों की रवायत सा नहीं है, ये शोक रईसों की रवायत सा नहीं है।
0: क्या बात है, क्या खूब आपकी रचनाएं और बोलने का अंदाज भी बहुत अच्छा है, बहुत पसंद आ रहा है हमें, हमारे सभी श्रोताओं को भी।
1: बहुत शुक्रिया
0: जी। जी, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़े तो अगला सवाल हमारा आपसे होगा कि क्या कोई कवि या लेखक जो आपके काम पर प्रभाव डाले हों, उन्होंने आपकी रचना और लिखने की प्रकृति को कैसे प्रभावित किया है?
1: जी, मेरे विचार से किसी भी विधा के प्रति आकर्षित होने का ये सबसे पहला स्टेप होता है। जिन्हें हम सुनते हैं या पढ़ते हैं उनमें से बहुत से प्रभावित हो जाना एक सामान्य प्रक्रिया है और प्रभावित व्यक्तित्व से रचना कर्म में समानता ही एक सामान्य बात है। शायरी के इस फहरिस्त में जनाब श्री कृष्ण बिहारी नूर साहब, मजाज लखनवी साहब, नरेश कुमार साध साहब और वर्तमान में दादा निजाम हाफतिफ साहब जो मुरादाबाद से ही बिलोंग करते हैं, आदरणीय डॉक्टर कृष्ण कुमार नाथ साहब जो नूर साहब के ही शागिर्द हैं, इन नामों से मैं खासा प्रभावित रहा हूँ। इन्होंने मुझे, इनके रचना कर्म ने मुझे खासा प्रभावित किया है और वो झलक अगर मेरे रचना कर्म में झलकती हो तो इस बात को लेकर मैं अपने आप में गौरवान्वित महसूस करूंगा।
0: अगला सवाल जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। कैसे आप गजल और शायरी के पारंपरिक तत्वों को सच बोलते हुए अपने आप के आवाज और अंदाज को शामिल करते हैं?
1: बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये किसी भी रचना के शिल्प और उसकी अदायगी का प्रश्न है। परंपरागत तौर पर शायरी का अपना ही एक व्याकरण है, बाकी कंटेंट के रूप में सामाजिक और मानविक मूल्यों के उठाए गए सच्चे विषय जब इसमें शामिल हो जाते हैं तो ये बात अंदाजे बयां को एक पुख्तगी और एक स्टेबिलिटी देने के लिए बहुत होता है। मैं समझता हूँ कि इसी चीज से एक पुख्तगी आती है। जब हम सच कहेंगे तो सच के कहने में उस आवाज में जो जोर होता है उसका एक अपना अलग अंदाज हो जाता है।
0: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। सच बोलने की ताकत सब में नहीं होती है, लेकिन जो सच बोलता है ना उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंट दिखाई देता है, हमें एक अलग ही ऊर्जा झलकती है। तो जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि बड़ा अहम सवाल है ये और इसका जवाब बहुत ही अच्छा मिला हमें। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़े। अगला सवाल हमारा आपसे होगा कि आपको लगता है कि आधुनिक लेखों के लिए गजल और शायरी जैसे क्लासिक काव्य के रूप में जोड़ना कितना महत्वपूर्ण है? आधुनिक दुनिया में उनका क्या महत्व है?
1: जी छाया जी, आधुनिक दौर में निसंदेह क्रांतिकारी बदलाव आ रहे हैं, परंतु साहित्य में शायरी से गजल के क्षेत्र में ये बात है कि ये विधा अपनी रवायत के साथ हमेशा से खड़ी रही है और भविष्य में भी इसकी शोहरत कम होने का कोई मतलब ही नहीं उठता है, क्योंकि जब तक इंसान में इंसानियत, रोमानियत और सामाजिकता का जज्बा रहेगा गजल और शायरी हमेशा जिंदा रहेगी।
0: क्या बात है, आपने बहुत अच्छी बात बताई हमें, हमारे श्रोताओं को। अगला सवाल तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए और हमारे लिए भी। हम सभी एक्चुअली जानना चाहेंगे कि आप क्या मानते हैं गजल और शायरी समाज में क्या भूमिका निभाते हैं?
1: जहाँ तक शायरी और गजल की समाज में भूमिका का प्रश्न है तो मैं आपको बता दूं कि इस फन को अदब की संज्ञा दी गई है। यानी कि जब कोई बंदा गजल या शायरी या साहित्य से वावस्ता होता है तो वह अदब के क्षेत्र में आ रहा होता है, और जब अदब से रूबरू होना यानी समाज में सकारात्मक योगदान की भूमिका निभाना है, तो पाठकों और सुनने वालों को आकर्षित करने का मादा शायरी में बिल्कुल इस तरह से है जैसे गर्म चाकू पर मक्खन पेवस्त कर दिया जाता हो। यानी आप देखें कि हम जो बात कहना चाहते हैं, शायर जो बात कहना चाहता है शायरी में, वो बात सीधे ही दिल तक उतरती है। तो ये इसकी अपनी खासियत है और इसको सामाजिकता में एक सकारात्मक सहयोग के रूप में, सकारात्मकता के रूप में ही हम देख सकते हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है। वैसे हमने पहले ही कहा था कि आपकी रचनाएं हमारे श्रोताओं और हमारे दिल को सीधा ही संपर्क कर रही हैं, और इसी के साथ
1: शुक्रिया।
0: लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये पथकों और सुनने वालों के साथ कितना संपर्क रखता है।
1: जी, मैंने बताया कि सुनने वालों को जो इंटरेक्ट करता है, जो संपर्क रखता है, वो अपने आप में विलक्षण होता है। जैसे हम कभी कोई भी बात अगर प्रोज में या गद्य में पढ़ते हैं तो एक निश्चित समय के बाद वो विस्मृत हो सकती है, लेकिन

0: दम तक ही महदूद रह जाती, वहीं दम तोड़ जाती, तब शायद इसका अस्तित्व कुछ और होता। लेकिन चूंकि अब ये सामाजिक और मानविक मूल्यों के चिंतन से भी जुड़ चुकी है, तो उसके बाद इसका श्रृंगारिक पक्ष और भी वसी और भी विशाल हो गया है। इसलिए इसका भविष्य सुरक्षित है और प्रकाशवान है। आने वाले वक्त में इसकी शोहरत, इसकी मकबूलियत हमेशा बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है।
1: आप जैसे कवि और गजल की रचनाएं करने वाले लोग होंगे तो जरूर, और हमें भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। वैसे सर, जाते जाते, क्योंकि हमारे जाने का वक्त हो रहा है, तो जाते जाते हम चाहेंगे कि हमारे उन सभी दोस्तों को, उन सभी यूथ को जो कम उम्र से ही शेरो शायरी करने का शौक रखते हैं, गजल सुनते हैं, सुनाते भी हैं अपनी रचनाओं के तौर पर, तो उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे?
0: जी छाया जी, बहुत बड़ा विषय है। तो यूथ को जो मेरा संदेश है वो मैं अपने अशार के ही माध्यम से कहना चाहूंगा। किसी के जुल्म से तंग आके डर जाने की बातें क्यों, जमाने के चलन पे यूं असर जाने की बातें क्यों। किसी के जुल्म से तंग आके डर जाने की बातें क्यों, जमाने के चलन पे यूं असर जाने की बातें क्यों। अगर एहसास मर जाए तो बाकी कुछ नहीं रहता, जियो जिंदा दिली से घुटके मर जाने की बातें क्यों। जियो जिंदा दिली से घुटके मर जाने की बातें क्यों। और ये भी संदेश कि रवानी है तुम्हारे खून में थमने नहीं देना, रवानी है तुम्हारे खून में थमने नहीं देना, बुरे हालात से डर कर ठहर जाने की बातें क्यों, बुरे हालात से डर कर ठहर जाने की बातें क्यों। और अभी तो शम रोशन है ये जलवा देखना यारो, जवां जब रात बाकी हो तो घर जाने की बातें क्यों। जहां चेहरों पे कायम हो चमक मेहनत कशी की, तो जहाँ चेहरों पे कायम हो चमक मेहनत कशी की, तो पराई रोशनी लेकर निखर जाने की बातें क्यों, पराई रोशनी लेकर निखर जाने की बातें क्यों। रहवा के रुख के जानी भी पलट जाओ मगर सोचो, जिधर से आग भड़की हो उधर जाने की बातें क्यों। और मनु शीरी जुबा में गुफ्तगु करिए जमाने से, मनु शीरी जुबा में गुफ्तगु करिए जमाने से, किसी के दिल में नश्तर सी उतर जाने की बातें क्यों, किसी के दिल में नश्तर सी उतर जाने की बातें क्यों।
1: मनु शीरी जुबा में गुफ्तगु करिए जमाने से, किसी के दिल में नश्तर सी उतर जाने की बातें क्यों, किसी के दिल में नश्तर सी उतर जाने की बातें क्यों। क्या बात है, क्या बात है। एक बार फिर हम चाहेंगे कि आप इस लाइन को दोहराइए।
0: मनु शीरी जुबा में गुफ्तगु करिए जमाने से, मनु शीरी जुबा में गुफ्तगु करिए जमाने से, किसी के दिल में नश्तर सी उतर जाने की बातें क्यों, किसी के दिल में नश्तर सी उतर जाने की बातें क्यों। और ये गजल के दो मिसरे भी इसमें है कि हो आंखें झील सी आंखों में दरिया हो समंदर हो आंखें झील सी आंखों में दरिया हो समंदर हो, मगर ये आंख के पानी के मर जाने की बातें क्यों, मगर ये आंख के पानी के मर जाने की बातें क्यों। जुबा दे दी अगर तो फिर मुकर जाने की बातें क्यों।
1: क्या बात है, जुबा दे दी अगर तो मुकर जाने की बातें क्यों। बहुत ही खूबसूरत सी आपकी ये रचना।
0: जी, जहाँ तक आपने मुझे बताया कि एक यूथ के लिए इसमें क्या संदेश है, तो मैं अपने चंद अशार के साथ ये बात यूथ तक पहुंचाना चाहूंगा आपके रेडियो के माध्यम से कि जमीन पे पांव फलक पे निगाह याद रखो, जमीन पे पांव फलक पे निगाह याद रखो, मियां बुजुर्गों की ये भी सलाह याद रखो, अगर हो गैर से तकरार बात दीगर है, अगर हो गैर से तकरार बात दीगर है, मगर हो भाई से तो बस निबाह याद रखो, मगर हो भाई से तो बस निबाह याद रखो, जमीन पे पांव फलक पे निगाह याद रखो, मियां बुजुर्गों की ये भी सलाह याद रखो, और करी जो नेकियां उनको भुला भी सकते हो, ये मेरा संदेश है, करी जो नेकियां उनको भुला भी सकते हो, मगर गुनाह से तौबा गुनाह याद रखो, और नवाजता है वही मत गुमान में डूबो, नवाजता है वही मत गुमान में डूबो, वही कर देगा कभी भी तबाह याद रखो, वही कर देगा कभी भी तबाह याद रखो, और रहम पसंद बनो ये पसंद है उसकी, रहम पसंद बनो ये पसंद है उसकी, मुआफियों में है रब की पनाह याद रखो, मुआफियों में है रब की पनाह याद रखो, और जमीन पे पांव फलक पे निगाह याद रखो, मियां बुजुर्गों की ये भी सलाह याद रखो।
1: क्या खूब, क्या खूब,
0: शुक्रिया।
1: वैसे जाते जाते मेरे जहन में एक और सवाल आ रहा है, सोच रही हूँ पूछ ही लूँ, किस उम्र से आपने लिखना शुरू कर दिया, किस उम्र में आपका इंटरेस्ट रचनाओं में होने लगा?
0: छाया जी, बात दरअसल ये है कि जो परिवेश मैंने जैसे बताया पहले, ये जो परिवेश

0: देश था मुशायरों का, तो ये टीन एज से ही हमें शौक लग गया था। तो दोस्तों के साथ जब जाते थे, देखते थे, शेर को समझते थे और उस पर शायरों को दाद देते थे, तो वो एक अलग अनुभव महसूस होता था। इसी चीज ने जो रुझान पैदा किया, तो टीन एज से ही ये रोग हमारे साथ है। खैर
1: जी जी, तो वैसे जाते जाते बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन वक्त तो हो गया हमारा जाने का, इसलिए एक आखिरी सवाल जो हम आपसे पूछना चाहेंगे, जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर को समर्पित कोई गीत, कोई रचना आपकी जो आप अभी हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहें।
0: जी, क्या बात है, और वाकई जहाँ हम रहते हैं उसका कर संपर्क होता है, तो मैं जरूर बात रखूंगा। एक गीत के माध्यम से मैं अपने शहर को जो समर्पित करना चाहता हूँ, पंक्तियाँ। शहर मेरा पीतल नगरी है, स्वर्णिम आभा लिए हुए।

लिए हुए। इस गीत में आपको जो इससे संबंधित इतिहास है वो थोड़ा देखने मिलेगा, उसकी झलक मिलेगी। तो मैं रखता हूँ। यहाँ अनेकों रंग समेटे प्रतिभाएं आभामय हैं, विश्व पटल पर धाक जमाने योग्य कुशल हैं तन्मय हैं। यहाँ अनेकों रंग समेटे प्रतिभाएं आभामय हैं, विश्व पटल पर धाक जमाने योग्य कुशल हैं तन्मय हैं। रंग

लिए हुए, ये पीतल लकड़ी कहलाता है, विश्वविख्यात है और नक्काशी यहाँ का मेन वर्क है। तो नक्काशी मीनाकारी अद्भुत है कितनी बतलाएं, हुक्का बर्तन आभूषण प्रतिमाएं क्या क्या दिखलाएं। नक्काशी मीनाकारी अद्भुत है कितनी बतलाएं, हुक्का बर्तन आभूषण प्रतिमा

0: ने शहर मुरादाबाद को अपने बहुत ही प्यारे शब्दों में पिरोया है और इसका वर्णन किया है। बहुत अच्छा लगा हमें भी और हमारे सुनने वाले श्रोताओं को भी। इस एपिसोड का ये हमारा विशेष बातचीत का कार्यक्रम और इसका पहला एपिसोड आप लोग सुन रहे हैं और इसका पुनः प्रसारण आप कल सुनेंगे 9 बजे से सुबह 10 बजे तक। तो इसका फीडबैक मैं अपने शो यानी छाया गीत के
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: मुरादाबाद जिला सहकारी बैंक आपका अपना बैंक, सचमुच आपका। जरूरत जब हो पैसों की, फैसला हो भरोसे का।
3: व्यक्तिगत ऋण कम ब्याज दर के साथ,
2: और अगर आपका सैलरी अकाउंट हमारे बैंक में है
3: तो पर्सनल लोन पर कम ब्याज दर,
2: 0 प्रोसेसिंग फीस,
3: बस एक कदम
2: और सपनों को नई रफ्तार।

0: का अपना बैंक सचमुच आपका। विया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या डीएम द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के कई निर्देश भी जारी किए गए हैं। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मंत्रालय ने कहा कि 2014 से पहले भारत के केवल 37 देशों के साथ प्रत्यर्पण समझौते थे और आर्थिक भगोड़ों से निपटने या उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए कोई समर्पित कानून भी नहीं था। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह दिखावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इस तरह के खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते।
3: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: सितंबर महीने में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के निमंत्रण पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को इस साल फरवरी में पदभार ग्रहण करने पर भारत की द्विपक्षीय यात्रा का औपचारिक निमंत्रण दिया गया था। उन्होंने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संबंध में भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के जनसंपर्क सत्र में शामिल होने के लिए अलग से निमंत्रण दिया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाताओं से संवाद पर प्रवक्ता ने कहा कि यह संवाद एक निजी मीडिया संस्था ने आयोजित किया है।
3: वो एक प्राइवेट मीडिया संस्थान उसका आयोजन कर रहा है। भारत सरकार का इस आयोजन से कोई लेना देना नहीं है और साथ ही साथ वहां पर इस मंच से उठाए गए विषय या उस मंच से बोले गए शब्दों का कोई समर्थन हम नहीं करते हैं, ना हमारा कोई उससे कोई रिश्ता नहीं है।
0: पंजाब पुलिस ने ISI समर्थित दो सीमा पार आतंकी मॉड्यूल के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुरक्षा प्रतिष्ठानों की निगरानी में भी शामिल थे। उन्होंने रेलवे ट्रैक के पास निगरानी कैमरे लगाए थे और फुटेज विदेशी एजेंटों के साथ साझा कर रहे थे। जांच जारी है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम को 17 अगस्त तक बढ़ा दिया है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची अब 27 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने बताया कि नागरिक 24 अगस्त से 23 सितंबर तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा तक मार्च निकालने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति को गठित करने का निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले की CBI जांच की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाया है।
4: झारखंड में हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं? कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है। पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरेज है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप NewsOnAIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देशभर में 50 लाख से ज्यादा परिवारों को छतों पर सौर पैनल लगवाने का फायदा मिला है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है, ये भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 19 लाख से ज्यादा परिवारों का बिजली का बिल अब शून्य हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में ग्लाव झील को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे जैव विविधता संरक्षण, जल और जलवायु सुरक्षा तथा सतत आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि पूर्वी हिमालय में स्थित ये कमलांग बाघ अभयारण्य और वन्य जीव अभयारण्य के भीतर बसा हुआ स्वच्छ मीठे पानी की झील जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र है। UPI ने पिछले महीने 236 करोड़ 60 लाख रुपए का लेन देन किया है। वित्त मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान को अपनाने और इसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया है। मंत्रालय ने लोगों से देश में लेन देन के तरीके को बदलने की इस यात्रा को जारी रखने का आह्वान किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 210 अंक घटकर 78,429 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक नीचे आकर 24,615 पर दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 4 पैसे कमजोर होकर 95.38 रूपए पर बंद हुआ।
0: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रूपये के पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि 36,000 करोड़ रूपये की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा।
6: सरकार ने खेलो इंडिया स्कीम लाया, स्पोर्ट्स के लिए सारी फैसिलिटी व्यवस्था खड़ी करी, लास्ट वीक में 36,000 करोड़ रुपया दिया जो आपके लिए यूज करा जाए। सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी नहीं चलाई। आप जैसे जो एथलीट रिटायर करेंगे, जो स्पोर्ट्स को जीते हैं, मैं आपको कहूंगा कि आप चलाओ, पैसा हम देंगे। देश की आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा है। हमें हर बार नए लक्ष्य को तय करना है और लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रयास करना।
0: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोरापोल थोंगसानगा और चालो एम्पोन चारोएन कितामोर्न को हराया। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2379 में उड़ान के दौरान अत्यधिक ऊंचाई पर विमान में कुछ समय के लिए झटके महसूस किए गए, जिसके कारण विमान के सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को नई दिल्ली में सुरक्षित उतारा गया। विमान में 137 यात्री और 8 चालक दल के सदस्य सवार थे। 13 यात्रियों और 4 चालक दल के सदस्यों को मामूली चोटें आईं। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दिन में 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना है। केरलम, माहे, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 से 3 दिनों में ऐसी ही स्थिति रह सकती है। सुरों के जादूगर किशोर कुमार की जयंती पर उनकी जन्मस्थली खंडवा में पूरे दिन उत्साह का माहौल रहा। देशभर से पहुंचे हजारों प्रशंसकों ने उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। समाधि परिसर में दिन भर किशोर कुमार के सदाबहार गीत गूंजते रहे। बड़ी संख्या में संगीत प्रेमियों ने बॉम्बे बाजार स्थित उनके पैतृक निवास का भी भ्रमण किया। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अखिल और आप सुन रहे हैं दिल से दिल तक, एक ऐसा शो जहां दिल की बातें होती हैं बिल्कुल सीधे डायरेक्ट से। और कहते हैं ना, जब जब आते हैं तब तब गाने भी बढ़िया बजाते हैं। तो जो भी आपकी फरमाइश हो, जो भी आपका आज मन कर रहा हो, बिल्कुल खुली छूट है साहब, जो भी दिल के पास गाना हो वो हमें मैसेज करें या कॉल करें 9837896896 पे। और सारी बातें ना आज हंसते हंसते होनी है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही हंसने के ऊपर है, हंसने के फ़ायदे और हमें रोज़ क्यों हंसते रहना चाहिए। दोस्तों, ज़िंदगी में प्रॉब्लम सबके पास होती है, लेकिन जो मुस्कुराना जानता है ना, वही हर मुश्किल को आसान बना लेता है। तो अगले एक घंटे हम सब बातें करेंगे सिर्फ हंसने की, मुस्कुराने की और उन खूबसूरत लम्हों की जो ज़िंदगी को और हसीन बना देते हैं। हमारे साथ आज हमारे पहले कॉलर जुड़े हैं मिस्टर ध्रुव। ध्रुव को तो अब आप जान ही गए होंगे कि ये हमारे होते हैं हमेशा पहले कॉलर, या फिर कभी कभी थोड़ा लेट भी हो जाते हैं मगर बात ज़रूर करते हैं। स्कूल से छुट्टियां चल रही हैं तो मस्ती भी घर पे पूरी चल रही होगी, पढ़ाई भी बिल्कुल एकदम सही तरीके से चल रही होगी। तो पता करते हैं आज क्या क्या किया जनाब ने। हेलो दिल से दिल तक, कैसे हो ध्रुव? मैं बढ़िया हूँ। आपके पीछे थोड़ी सी आवाज नॉइस आ रहा है, उसे थोड़ा सा कम करना।
1: हाँ, कर दिया मैंने।
0: और क्या किया आज पूरे दिन?
1: आज कल तो मैं बता रही थी कि मेरे फ्रेंड्स आएंगे, एक भी नहीं आया।
0: कोई भी नहीं आया आज फ्रेंड?
1: हाँ।
0: तो आज सिर्फ आपने घर में मस्ती करी अपनी? सही है, सही है। तो आज हम जो बातें कर रहे हैं ना, आज हम बातें करेंगे, आज का हमारा टॉपिक है हंसने के फायदे। तो पहले एक बार अपना लाफ्टर सुनाओ, कैसे हंसते हो तुम? जब भी तुम्हें एकदम हंसी आती है तो कैसे जोर जोर के हंसते हो, आज हंस के दिखाओ पहले। तो एकदम से उत्पन्न होती है। क्या बात है, आज तो बिल्कुल एकदम शुद्ध हिंदी में बात कर रहे हो। तो अब एकदम से कोई उत्पन्न होगी तो कैसे उत्पन्न होगी ये तो हमें पता चले ना। कुछ तो थोड़ी बहुत तो लाफ्टर आज रावण वाली हंसी सिखा दो। आज रावण जैसे रावण हंसता था। ये सब शैतान हो पूरे, मतलब रावण का नाम लिया तो एकदम हंस के दिखा दिया है ना। तो हंसना बिल्कुल जरूरी है ना, बिल्कुल हंसते रहते हो नहीं रहते हो? कभी मम्मी डांटती है तब भी हंसते हो क्या? हाँ, ऐसे हंस मत देना, पता चला हाथ में अगर बेलन हुआ ना तो तुम्हारी हंसी जो है बिल्कुल एकदम 9-2-11 वाली हो जाएगी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ कि स्कूल में डांट पिट रही हो, क्लास टीचर तुम्हें डांट रही हो और तुम जो हो सर मतलब अपना हेड डाउन करके हंस रहे हो? ऐसी होता है, कभी किसी और की डांट पिट रही होती है तो भी हंसी आ जाती है ना।
1: हाँ, लेकिन उस टाइम पे हंसना नहीं चाहिए।
0: हाँ बिल्कुल सही बात, हंसना जरूरी है मगर ऐसा नहीं कि आप हर बात पे हंसते रहो और किसी की डांट पिट रही हो फिर भी हंसते रहो।
1: हाँ।
0: थोड़ी सी हंसी पे कंट्रोल भी करना चाहिए।
1: हाँ।
0: तो चलिए आज मगर खूब सारा हंसना है आज, जब जब हमारे गाने प्ले होंगे तो एकदम हंस के गुनगुनाना है, ठीक है?
1: हाँ।
0: चलो थैंक यू धैर्य आज कनेक्ट करने के लिए और बहुत अच्छा लगा। और अगली बार जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले अपना लाफ्टर, हंसने वाला लाफ्टर चाहिए होगा मुझे आपसे, ठीक है?
1: ठीक है।
0: प्रैक्टिस कर लेना आप, एकदम से उत्पन्न नहीं हो मगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना।
1: ठीक है।
0: ओके जी, बाय बाय।
1: बाय।
0: तो दोस्तों ये थे हमारे साथ धैर्य, हमारे कहते हैं ना परमानेंट लिसनर, कुछ तो होते हैं फ्रिक्वेंटली वाले, मगर ये हमारे परमानेंट लिसनर हैं और बहुत ही अच्छी बातें हमसे करते हैं। कह रहे थे कि हंसना जो है ना वो एकदम उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हंसी जो एकदम अचानक ही आती है कभी कभी, कभी किसी की बातें सुन के, कभी किसी की डांट सुन के, कभी खुद की डांट पिट रही होती है, मगर कह तो रहे हैं कि अंदर से हंसने का मन है मगर हम हंस नहीं पाते, छुपाना पड़ता है। तो कहीं कहीं हंसी को रोक भी लिया करो, पता चला थोड़ी सी डांट पिटनी थी ज़्यादा ही डांट पिट गई। मुस्कुराहट की कीमत कोई क्या जाने, ये तो वो दौलत है जो सबको खुशियाँ बांटे। चेहरे पर हंसी तो गम भी शर्मा जाता है, चेहरे पर हंसी हो तो गम भी शर्मा जाता है और ज़िंदगी के रंग और भी निखार जाता है। तो दोस्तों आज एक प्रॉमिस करिएगा, चाहे दिन कितना भी मुश्किल हो, चाहे कितनी भी टेंशन हो, चाहे सामने बिल्कुल ही एकदम कहते हैं ना पंगे वाला बंदा खड़ा हो, मगर दिल खोल के ज़रूर हंसना। एक बार तो दिल खोल के एकदम हंस के दिखा देना, अरे साहब सारी टेंशन सारी कहते हैं ना मुश्किलें एकदम दूर कर देंगे। तो चलिए सुनते हैं एक बढ़िया सा गाना, उसके बाद आते हैं म्यूज़िकल ब्रेक के बाद, खूब सारी दिल की बातें करेंगे, खूब सारी हंसने वाली बातें करेंगे और पता करेंगे जी कब कब आपको लाफ्टर आ जाता है। हमें करिएगा मैसेज, और हमारे पास अभी अभी एक मैसेज भी आया हुआ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इन्होंने फिर से इतने सारे प्लीज़ कर दिए हैं कि भैया मैं तो खुद ही प्लीज़ हो जाता हूँ उनके सामने। दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, ये ज़रूर हम गाना आपके लिए प्ले करेंगे। नाम है शंकरलाल यादव, नमन निरांशी, ऋतु यादव, अमित यादव, लाइन पार मुरादाबाद, प्रकाश नगर चौराया। पूरा एड्रेस देते हैं साहब, पूरा का पूरा जो है बंदा पहुंच ही जाएगा एक बार। मेहंदी रंग देती है सूख जाने के बाद, हमें नींद आती है आपके प्रोग्राम सुनने के बाद। क्या बात है, क्या बात है यादव जी, बहुत ही बढ़िया लिखा है आपने, और हम आपकी पसंद का गाना ज़रूर प्लेंगे। और मगर जैसे ही आपके पसंद का गाना प्ले होना, बढ़िया सा लाफ्टर ज़रूर चाहिए, एक चेहरे पे मुस्कान ज़रूर चाहिए आपकी। चलिए साहब मिलते हैं इस म्यूज़िकल ब्रेक के बाद। दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, हम नहीं बहने देंगे, दिल के अरमान जो भी हैं उसे पूरे करके।

0: एक बार फिर से स्वागत है FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। तो जी दोस्तों, बिल्कुल कहते हैं ना, गाड़ी जो है स्पीड से जा रही है, हॉर्न बिल्कुल नहीं बजाना है। आज जाम जहां भी मिले बहुत आराम से मुस्कुराते हुए निकल जाना है और हमें भी अपडेट कर देना है। कहीं कहीं फंस जाती है गाड़ी तो ज़रूरी है बताना है कि भैया मैं हो रहा हूँ लेट। कभी पता चला घर पे गुस्सा हो जाए आपकी नारी तो ज़रूर हमें बताएं, हम आपकी बात पहुँचा देंगे। अगर कहीं रास्ते में फंस रहे हैं तो हम यहीं से FM से आपकी आवाज़ उनके पास तक पहुँचा देंगे, कह देंगे आज लेट है भाई साहब क्योंकि स्टेशन पर है बहुत जाम। चलिए जानते हैं हंसने के कुछ कमाल के फ़ायदे। एक, जो स्ट्रेस कम कर देती है, दिल को थोड़ा सा हेल्दी भी रखती है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाती है, पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ा देती है, रिलेशनशिप को मजबूत कर देती है, चेहरे पर नेचुरल ग्लो आ जाता है साहब। थोड़ा सा सैलून पे जाना आपका कम हो जाता है, मगर नहीं, सैलून पे तो आपको जाना ही है, ग्लो के साथ एक्स्ट्रा ग्लो जो चाहिए, और जो मूड है ना इंस्टेंटली फ्रेश हो जाता है। इसलिए कहते हैं स्माइल इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू हार्ट्स। हमारे एक लिसनर हमसे जुड़े हैं, चलिए करते हैं उनसे कुछ बातें। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, अपना नाम बताइए और बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार जी, नमस्कार, कहाँ से सर आप?
1: मैं सोनीपुर असम से बात कर रहा हूँ सर।
0: सोनीपुर असम से
1: जी।
0: कैसे हैं सब?
1: पहली बार आपसे बातचीत हो रहा है, बहुत अच्छे हो। अभी बारिश का मजा ला रहा हूँ, बारिश आ रहा है हमारे यहाँ में।
0: आपके यहाँ बारिश हो रही है?
1: गर्मी चल रहे थे। बारिश हो रहा है
0: वहाँ तो, बाढ़ भी है सुनने में आया है वहाँ पे। क्या आपके आसपास है बाढ़?
1: हाँ हाँ, मेरे आसपास नहीं है, यहाँ से तो 300 किलोमीटर दूर में बाढ़ हुई थी, जैसे कि शिव सागर में हुई थी, जोरहाट में हुई थी, और ऐसे गोलाघाट छोड़ाईदेव ऐसी जगह में बाढ़ हुई थी, और अभी भी कहीं कहीं जगह में अभी बाढ़ की स्थितियाँ चल रही है।
0: ओके, तो आप सुरक्षित रहें, और उधर अगर ज्यादा हो तो ध्यान रखें अपना।
1: हमारे यहाँ में तो बाढ़ होने का ज्यादा चांस नहीं है, हमारा ये ऊंचा जगह है इसलिए।
0: अच्छा, थोड़ी सी ऊंचाई पे है?
1: हाँ ऊंचाई पे है, हमारे सामने में नदी वगैरह भी ज्यादा नहीं है इसलिए।
0: चलिए चलिए साहब, तो आज आज हमारी जो बातें हो रही हैं आज वो हंसने के ऊपर हो रही है, तो एक सबसे पहले अपना लाफ्टर दे दीजिए। आप कैसे हंसते हैं जरा सबको पता चले हमारे श्रोताओं को यूपी में, कि भैया आसाम के जो हमारे साहब हैं वो कैसे हंसते हैं।
1: असम में जो, असम में तो आपके प्रोग्राम जो आज पहली बार पता चला है, तो आज प्रोग्राम में कॉल लगाने के लिए शुरू कर दिया, तो आज के बाद प्रोग्राम में सुनती रहूंगा। और किसने तो कब कब क्या क्या प्रोग्राम होता है इसके बारे में भी जान सकता है क्या सर आपसे?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, आप जो हैं हमारे पास, हमारे दिन में ही प्रोग्राम होता है। हमारे साथ आरजे खुशी हैं जो दिन में हेलो फरमाइश करती हैं, तीन से पाँच उनके हेलो फरमाइश चलता है। फिर आरजे रीना है हमारे, उनका शो होता है जिसमें वो भी अपनी बातें रखती हैं आपके साथ, 7 बजे तक वो भी अपना प्रोग्राम करती हैं, 5 से 7। तो आप ज़रूर उसका पार्ट बन सकते हैं, और जैसे आज आपने कॉल किया आज हमारे शो में, तो उनके शो में भी आप उनसे बात कर सकते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। तो आपका एप्लीकेशन के माध्यम से आपने प्रोग्राम को चालू कर रखा है?
0: हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया। और आपने एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करी, ये सब कुछ कैसे प्रोसेस में, क्या हमें बताइए आज जरा।
1: प्ले स्टोर में जाके तो आपकी ये प्रोग्राम रेडियो का जो प्रोग्राम होता है आपका एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लिया जो राकेश ने बताया था।
0: हमारे एप्लीकेशन का नाम क्या है?
1: रेडियो
0: FM मुरादाबाद 89.6 लिखा हुआ आएगा, रेड कहाँ, रेड कलर का
1: रेडियो, रेडियो मुरादाबाद के जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करते हैं।
0: चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपसे हम अब ऐसे ही जुड़ते रहेंगे, और आप के हर बार आपकी हंसी भी ऐसी सुनेंगे, कोई कहानी कोई
1: दे,
0: कोई ऐसी तो कोई स्टोरी है।
1: जुड़ते हो, हम एक युवा है और हमारे घर पे खेत किया जाता है, धान का खेत और चाय का बगान है हमारे। असम में तो चाय का बगान बोलते हैं तो बहुत फेमस हो जाता है।
0: सर आपने बस चाय का बगान बोला, मुझे ना चाय बहुत पसंद है, और चाय की खुशबू अपने आप ही ऑटोमेटिक आ गई।
1: चाय का बगान
0: आपके घर में भी है? चाय का बगान
1: दे।
0: तो जब भी आसाम आएंगे तो अब की बार आपके घर पे ही आके चाय पियेंगे।
1: ओके जरूर आ जाना।
0: पक्का। और आप जब हमारे पास आए तो हमारे हाथ की भी चाय पिए।
1: हाँ, जो खेत के जो फ्री में रहता हूँ तो मैं बांसुरी भी बनाता हूँ और बांसुरी बजा के भी बजाते हैं और बांसुरी बेचते हैं भी हम।
0: तो आपके पास अभी बांसुरी रखी हुई है?
1: हाँ अभी तो नहीं, अभी रात चल गए तो भोजन करके अभी कुछ हमारे घर वालों ने सोने लगा है तो अभी इसे बांसुरी बजाएगा तो हमको नाराज कर देगी मतलब।
0: तो हाँ तो पता चला
1: दिन पर जो प्रोग्राम आपको प्रोग्राम होता है तो आपको जरूर सुनाया
0: जाएगा। अभी तो आप बांसुरी बजाना खतरे से खाली नहीं है, पता चला आपके आप ही को बांसुरी बजा दी, आप ही को डांस करने पे मजबूर कर दिया घर वालों ने कि बेटा बांसुरी बजा रहे तो डांस भी करो।
1: जी
0: चलिए कोई नहीं साहब,
1: तो ये प्रोग्राम के बारे में राकेश ने बहुत अच्छी तरह से बताया था हमको, नंबर भी दिया उन्होंने और हम तो हर रोज रेडियो के जरिए मैं जुड़ता हूँ, जो आकाशवाणी का जो प्रोग्राम होता है इसको भी जुड़ता हूँ, जो जो रेडियो का जो फरमाइशी प्रोग्राम मुझे सबसे ज्यादा पसंद होता है, जो गानों का रिक्वेस्ट सुन के दूसरों को दिल की बात उस गानों के जरिए पता चल जाता है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है।
0: तो आप अपनी जो दिल की बात है कौन से गाने के से कहना चाहेंगे और किसको डेडिकेट करना चाहेंगे ये भी बताएं।
1: फिल्म का नाम रहेगा आप लौट चले और इसे गाने के बोले ये किसे मुलाकात है, तो गाता है कुमार शानू और अलका याग्निक ने और मैं इस गाने को मेरे दोस्त राकेश जी को खास कर डेडिकेट करना चाहूंगा और आपको और कश्मीर से जम्मू कश्मीर से हमारे दोस्त रहते हैं जिसका नाम है पुष्करनाथ शर्मा और पुरुषोत्तम कुमार है, शिवा लोहार है और विमल बसुमतारी हमारे
0: से, वो
1: भी सुन रहे प्रोग्राम।
0: चलिए साहब, आपने जिन जिन के सभी को जिनके भी नाम लिए हैं सभी को हमारी तरफ से नमस्कार और पूरी पूरी उम्मीद है कि वो भी लोग एंजॉय करें शो को, अपने दिल से निकली हुई बातों को बताएं और जैसे आपने आज अपने दिल से निकाल के बात उनके तक पहुँचाई है तो वो भी अपने दिल से कुछ बातें निकालें और आप तक जरूर पहुँचाएं।
1: सभी रेडियो सुनने वाले प्रोग्राम सुनने वाले दोस्तों को मैं कहना चाहूंगा शुभ संध्या और आपको भी
0: धन्यवाद साहब, धन्यवाद आपको भी, गुड नाइट और जरूर अब आपसे हम मुलाकात और बातें करते रहेंगे।
1: जी जी जी
0: धन्यवाद साहब। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े थे आज आसाम से अमल जी और अमल जी ने इतनी सारी बातें करी हैं आज, बिल्कुल एकदम दिल खोल के बातें करी हैं कि पहली बार मैंने आपका शो सुना है और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और कहते हैं ना जब कनेक्शन बनते हैं तो कोई बॉर्डर और कोई सरहद कोई भी ऐसी दूर दराज की जगह भी आपको रोक नहीं पाती है, लोग तो पता नहीं कहां कहां से सात समुंदर पार भी एक दूसरे से मिल लेते हैं, तो ये तो हम अपने ही देश में हैं। तो बहुत बहुत अच्छा लगा कि आसाम से हमारे एक लिसनर ने हमें कॉल करी और कहा कि वो रेडियो के एक तरीके से बहुत ही प्रशंसक हैं और आकाशवाणी भी सुनते रहते हैं। तो साहब रेडियो तो एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं दिल जोड़ी देती है आपको, पहले भी और आज भी जो सुनने वाले बंदे हैं ना रेडियो वो सुनते ही हैं, चाहे गाड़ी में आपकी यूएसबी लगी हो या ब्लूटूथ से कनेक्ट हो, जिसे एक बार बटन पहुँच ही जाता है ना। आजकल तो होता क्या है सब कुछ सिस्टम ऑटोमेटिक है, आप बैठे आपने स्टार्ट का बटन दबाया और गाना अपना आप ही प्ले होने लगे, मगर कुछ लोग होते हैं खुराफाती आपके जैसे ही होते हैं, हाँ हाँ जो आप मुस्कुरा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एफएम की फ्रिक्वेंसी ढूंढते रहते हैं कि आसपास कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा गाना जो है ना लग जाए, कोई तो एफएम चैनल लग जाए जहाँ पे बढ़िया से गाने आते रहें। तो साहब बिल्कुल आएंगे साहब, आपका अपना मुरादाबाद है तो और भर के आएंगे, बस आपको भी हमें मैसेज करना है, हमें कॉल करते रहना है और अपने दिल की बातें हमसे शेयर करते रहें, वो भी हंस के, क्योंकि आज हंसना मना नहीं है, खूब हंसेंगे और खूब बातें करेंगे इस गाने के बाद आ आप लौट चले, जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक जी ने और फिल्माया गया है ऐश्वर्या राय और अक्षय खन्ना जी की, दोनों ही अपने कहते हैं ना एक तरीके से सुपरस्टार हैं, ऐश्वर्या राय जी आपको पता ही है मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं और अक्षय खन्ना जी को तो आप बच्चा बच्चा जानता है आजकल, बता दीजिए कौन सी आपकी मूवी उनकी फेवरेट है, हमें भी मैसेज करिए, हम भी जानना चाहेंगे आपको अक्षय खन्ना जी कौन से रूप में ज़्यादा अच्छे लगे।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

सात अजूबे इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी, सात अजूबे इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी। अरे तो

अपना जो कुछ है सब आधा आधा है, दुख सुख के हम साथी है ये वादा है, अपना जो कुछ है।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। तो खूब सारी बातें हुई हैं आज हंसी टिटोलों की, और कितना बढ़िया गाना भी चल रहा था धर्मवीर मूवी का, सात अजूबे इस दुनिया में। दोस्तों दोस्ती ऐसी ही होती है जहाँ यहाँ पे ना ये देखा जाए कि कौन कितना ताकतवर है और कौन कितना कमज़ोर है। जो फिल्माया गया है धर्मेंद्र जी और जितेंद्र जी पे, अगर आप देखा जाए तो आज की तारीख में उनके बेटे सनी देओल और उनके बेटे तुषार कपूर, जितेंद्र जी के बेटे पे फिल्माया जाए तो कैसा लगेगा ये गाना, इमेजिन भी कर सकते हैं कितना अच्छा पिक्चराइज किया है। और अगर ये मूवी नहीं देखी है ना तो एक बार ज़रूर देखना, आपको ही कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे पल याद आ जाएंगे जो पुराने समय के, कहेंगे कि क्या मास्टरपीस और क्या एक्टिंग होती थी और क्या मज़ेदार स्टोरी होती थी। हमारे पास मैसेज आया है संगीता जी का, संगीता जी बुद्धि विहार से, कि ऑफिस का स्ट्रेस बहुत रहता है, हेलो अखिल जी, लेकिन अब रोज सुबह मिरर के सामने स्माइल करती हूँ और फैमिली के साथ हंसने की कोशिश करती हूँ। सच कहूँ तो लाइफ पहले से बहुत बेटर लगती है। क्या बात कही आपने संगीता जी, बहुत ही प्यारी बात कही आपने ये। कभी कभी बस एक छोटी सी स्माइल पूरे दिन को बदल देती है। और स्ट्रेस का क्या है साहब, इसे ना लेना नहीं है बिल्कुल भी, इसे तो स्ट्रेस को एकदम उतार फेंको अपने पास से। नई नई ड्रेस पहनो मगर स्ट्रेस बिल्कुल मत लो। अभी एक हाल ही में एक घटना हुई थी जहाँ अपने मुरादाबाद में एक बैंक कर्मचारी थी, उन्होंने भी स्ट्रेस के चलते ही अभी एक गलत कदम उठा लिया था। मगर मैंने कहा ना आपसे कि ये छोटी छोटी बातों के लिए अपना जो जीवन है वो कहीं ज़्यादा बड़ा है। इन स्ट्रेस को, इनको साइड में रख के कभी हम ये भी सोच सकते हैं कि हाँ, हम अपनी लाइफ में अपने साथ और भी अगर कुछ होता है तो इसे कैसे अच्छे से निभा सकते हैं, या थोड़ा सा समय और अपने आप को दे सकते हैं। मगर ये जो फैसले होते हैं जल्दबाजी वाले ना, ये बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। अब हम बात करेंगे अपने लिसनर से और पूछेंगे कि क्या मस्ती कर रहे हैं वो, बहुत देर से बिचारी हमारे साथ होल्ड पर हैं। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, क्या नाम है आपका?
1: हेलो
0: हेलो बेटा, क्या नाम है?
1: गुंजन नाम है मेरा।
0: गुंजन, क्या कर रही हो इस समय आप?
1: कुछ नहीं, मैं तो बैठी।
0: तो गुंजन एक बार पहले जोर से हंस के दिखाओ, आज कैसे हंसती हो जोर से आप? हेलो
1: हेलो,
0: हंस के दिखाओ गुंजन जी, आपकी हंसी से घर वाले डरते तो नहीं है?
1: नहीं।
0: तो कैसे हंसती हो? हा हा हा हा हा, ऐसे करके?
1: नो।
0: तो बताओ ना फिर कैसे हंसती हो आप?
1: धीरे से बहुत।
0: अच्छा, धीरे से कैसे, मतलब आवाज आएगी धीरे से हंसने में या नहीं?
1: नहीं।
0: कोई जोक सुनाओगी आज हमें?
1: No.
0: कोई जोक याद नहीं है आपको? हमें कैसे हंसाओगी? अच्छा चलो, गाना कौन सा सुनना चाहती हो ये बताओ।
1: अब अपने शादी के दिन नहीं दूर है।
0: अरे अभी तो बहुत दूर है शादी के दिन, शादी के दिन वाला गाना नहीं, कोई दूसरा गाना बताओ। अभी कौन सी क्लास में हो आप?
1: तो नागर सीरीज़।
0: चुरा के दिल मेरा सुनना, चुरा के दिल मेरा?
1: ना।
0: चुरा के दिल में सुनाएंगे हम तो, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली।
1: तो नागर सीरीज़।
0: चलो ठीक है, अगर वो वाला गाना होगा तो हम जरूर सुनाएंगे। और क्या करती हो आप पूरे दिन, कौन कौन सी बातों पे हंसती हो बताओगी, नहीं बताओगी कुछ? कभी ऐसा तो नहीं कि हंसने के ऊपर डांट खाई हो मम्मी से?
1: नहीं।
0: पक्का?
1: पक्का।
0: क्या कह रही है मम्मी पीछे से? कह रही है बोलती बहुत है। अरे आज तो पोल खुल गई हमारी गुड़िया की।
1: हेलो।
0: हाँ
1: भैया, क्या कह रहे थे?
0: मम्मी पीछे से कह रही हैं कि ये लड़की बोलती बहुत है।
1: नहीं, कुछ और कह रही
0: थी। कुछ और कह रही थी। चलो ठीक है। शर्मा रही हो आज आप बोलने में बहुत, बस गाना सुनना है अपनी पसंद का, है ना?
1: भैया नहीं मेरी पसंद का।
0: चलो ठीक है, आज मैं अपनी पसंद का भी गाना सुनाऊंगा आपको। थैंक यू हमें कॉल करने के लिए, और बढ़िया से खूब हंसते रहना, ठीक है? पक्का। तो ये है हमारे साथ गुंजन जी, जो कह रही हैं कि भैया मैं ना हंसती बहुत कम हूँ, बहुत साइलेंट हंसती हूँ। सच कह रहे हैं, साइलेंट भी हंसी होती है बिल्कुल, ये अंदर अंदर अपनी जो है ना हंसी गुपचुप गुपचुप तरीके से गायब हो जाती है। हमारे पास एक और हमारे पास मैसेज आया है और हम पढ़ते हैं उसको। हेलो अखिल सर, गुड वाला इवनिंग है जी। अच्छा अब तो हमें पता चल गया किसका मैसेज है फिर तो ये। और दिल से दिल तक में वेलकम है आपका, धन्यवाद। आपका भी वेलकम है दिल से दिल तक में। आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। ललिता कश्यप नवीन नगम मुरादाबाद से। ललिता जी हम पहचान गए थे जैसे ही आपने वो पहली लाइन लिखी ना, हेलो अखिल सर गुड वाला इवनिंग है जी, तो वो पता चल गया था कि ललिता जी ही हमें ऐसे मैसेज करती हैं। सर धमाकेदार एंट्री सॉन्ग बिंदास सुनाया आपने। सर सेहत के लिए हंसना बहुत ज़रूरी है, हंसकर अपना सब दुख दूर हो जाता है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ऐसे ही झटपट हो जाता है, जितनी देर हंसी रहती है ना उतनी देर में सारा गायब हो जाता है। अखिल सर FM मुरादाबाद 89.6 MHz रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते हैं और सबको हंसाते रहें अखिल सर के साथ। क्या बात, आपने इतना बढ़िया पूरा पूरा टेक्स्ट किया है, पूरा मेगा हर्ट्ज करके जो लिखा है ना वो अलग ही, उस पर देख के हंसी अलग आ रही है। सॉन्ग सुना देना, हम सॉन्ग ज़रूर सुनाएंगे आपको। अखिल सर की बातें हैं बड़ी कमाल, हंसी से भर देते हैं हर एक को। जहाँ भी बैठ जाएं दो यार, वही बन जाता है हंसी का दरबार। क्या बात है, बहुत अच्छी कोशिश करिए, हंसी आई है हमें बहुत ही। कहते हैं ना कभी कभी मैसेजेस देख के खुशी हो जाती है, तो वो वाली हंसी एक अलग ही हंसी है। तो दोस्तों अब करते हैं थोड़ा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम लेंगे एक लास्ट कॉल, देखते हैं कौन है जिसके साथ करेंगे थोड़ी सी हंसी वाली बातें। और हम पे एक शायरी आई है अख्तर जी की हरतला कॉलोनी से। गम कितने भी हों मुस्कान मत खोना, हर मुश्किल में अपना हौसला मत खोना, कल फिर एक नई सुबह होगी यकीन रखना, बस जिंदगी जीने का अंदाज मत खोना। क्या बात है अख्तर साहब, इतनी अच्छी जो है आपने शायरी लिखी है, मज़ा आ गया। और एक पहेली हमारे पास, मतलब हम पूछते हैं पहेली, आज उल्टा हो गया। हमारे पास एक लिसनर ने हमसे ही पहेली के लिए कहा कि सर एक पहेली मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ऐसी कौन सी चीज़ है जितना बांटो उतनी ही बढ़ती जाती है। ठीक है ठीक है ठीक है, आपको हम इसका जवाब ज़रूर देंगे। आपने पहेली जो है ना आज के ही टॉपिक से पूछ ली है, तो ये इसका जवाब 100% मुस्कान होगा, और आप ज़रूर हमें रिप्लाई करिएगा कि हमने सही जवाब दिया है नहीं दिया है। और हमारे लिसनर से भी हम कहेंगे कि आप भी जरा रिप्लाई करें और बताएं कि ये साहब ने जो हमसे पहेली पूछी है प्रणव जी ने, तो इसका जवाब क्या होना चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ है जितना बांटो उतनी ही बढ़ती जाती है। तो दोस्तों चलिए आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। 9837896896 पर आप कॉल करें और बात करें दिल से दिल तक।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

नाम लिख लिया, बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया। बिन पूछे ये काम किया,

एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। जो अभी चांदनी चांदनी चल रहा था ना, वो हमारे उस्मान साहब की फरमाइश पे था। उस्मान साहब को तो आप जानते हैं, कौन से मोहल्ले और कौन से गली में रहते हैं ये ज़रूर हमें मैसेज करिएगा। और कहते हैं ना कि हंसी जो है ना रुकनी नहीं चाहिए, तो आज इतनी हंसी हमें, इतनी हंसी आई है शो में, इतना मस्त मज़ा आया है। चाहे धैर्य हो, चाहे रंजनी जी हो, चाहे असम से अमल जी हो, सब ने अपने दिल की बात हंस के बोली है और बहुत बढ़िया सुंदर सुंदर हमें बातें कही है। तो कहते हैं ना, जाने से पहले इतनी मस्ती करिए आज इस शो में कि आगे भी कल भी हम इसे कंटिन्यू करेंगे। और साहब कहते हैं ना, हमारी लाइन में हंसना बिल्कुल ही मना नहीं है, तो हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, खूब नाच गाते भी रहेंगे। दोस्तों बिल्कुल याद रखिएगा, हंसना सिर्फ एक आदत नहीं, सेहत और खुशी की चाबी भी है। आज घर जाकर कम से कम एक इंसान को तो दिल से हंसाइएगा, चाहे भाई हो, चाहे पापा हो, चाहे माँ हो, चाहे बीवी हो। अगर बीवी को ज़्यादा मत हंसा देना भाई साहब, कहीं खुद भी हंसते रहो बाद में, मगर हंसाना ज़रूर है। बच्चों के साथ भी थोड़ी सी हंसी ठिठोली करते रहें। जब छोटा सा एक बच्चा होता है ना, जब घर में आगे पीछे घूमता रहता है वो, और उसके साथ जो हंसी ठिठोली होती है उसकी तो हंसी रुकती नहीं है। हल्का सा गुदगुदाओ, कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा, वरना खिलखिला के हंसता रहेगा। तो साहब हंसी वैसे ही हंसना छोटे बच्चे की तरह, कोई हल्का सा गुदगुदा देना, एकदम वैसी हंसी निकल जानी चाहिए। तो मैं हूं आपका दोस्त अखिल, और अब चाहता हूं आपसे इजाज़त। जो भी कॉल होंगी और जो भी आपके मैसेजेस होंगे, अब हम कल खूब उसके साथ मटरगस्सी करेंगे, मैसेजेस को बात करेंगे, कॉल को दिल से दिल तक जोड़ेंगे साहब। तब तक के लिए मिलेंगे आप कल, और एक नए सफ़र के साथ होगी कल की आगाज़, नए मुस्कुराती बातें हो के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहें, खुश रहें और सुनते रहें दिल से दिल तक अखिल संग एफएम मुरादाबाद 89.6, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। तो गाने की एंडिंग करेंगे मस्सी, उसके बाद भी आपके पास खूब बढ़िया वाले वाले गाने आते रहेंगे, हम उन्हें बजाते रहेंगे। अगर कोई भी फरमाइश होती है तो ज़रूर हमें आप मैसेज कर दें, जिससे कम से कम हम आपकी उस तरीके से फरमाइश को पूरी करें और गाने बजाते रहें। तो टिल टेन, बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: गाने का रीमिक्स कर देते हैं सर, सर हमारी जनरेशन को कुछ बोलो यार।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

राजकुमारी चुल्ली ग्लोरिया, दोनों देसी रानियों को पेश किया जाए।

0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।
3: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
4: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
5: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
4: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
6: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: Ready to master AI?
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना, आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।

जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।

आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।